फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 अगस्त सन 2026। सुबह के 5:58 हो चुके हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है।

0: आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। 6 बजे हैं, समाचारों के लिए दिल्ली केंद्र चलते हैं।
1: स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और

0: हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
1: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
0: उधर झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में कथित हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, सीखना कभी बंद ना करें, हर दिन एक नया पाठ सिखाता है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

इसी के साथ आज का वंदनवार कार्यक्रम संपन्न होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए जानते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 279। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा। कलाकार हैं गायिका शुभा मुगदल। सुनिए इस श्रृंखला का 13वां भाग। प्रस्तुति है कांचन प्रकाश संगीत की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे की। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर कार्यक्रम पेश होगा आज के फनकार। कार्यक्रम आधारित है अभिनेत्री वैजंती माला पर। प्रस्तुति रमेश गोखले की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। सुबह 10 बजे पिटारा में आप सुनेंगे आज के मेहमान में लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का 2वां भाग। संपादन सहयोग है मनीषा सिंह का। प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 पर सुनिए सदा बहार नगमे। 3 बजे सखी सहेली। 4 बजे हेलो फरमाइश में। संवादन है मंदाकिनी जोशी का। प्रस्तुति राघवेंद्र नेकी की। 99 पुराने कार्यक्रम सुनिए 5:30

मिनट पर। 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन, 7 बजे जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए इनसे मिलिए, साउंड इंजीनियर और वॉइस आर्टिस्ट रूपाली सुरवे से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। आठ बजे सुनिए हवा महल में झलकी तमाशा, लेखन निर्देशन है गुरमीत रामल मीत का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए और 10 बजे सुनिए छाया गीत। और 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

सीता की खोज में जाने को उद्यत पवन पुत्र हनुमान ने बार बार श्री राम का नामस्मरण करके सागर के समीप स्थित पर्वत पर से जो छलांग लगाई तो पर्वत पाताल में जा धंसा। प्रभु के अमोघ वाणों की भांति उन्हें लंका की ओर बढ़ते देख देवताओं ने उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेनी चाही और इसके लिए उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को भेजा। मार्ग रोक कर सुरसा ने अपना विकराल मुंह खोल दिया और बोली, बहुत दिनों बाद देवताओं ने मेरा आहार भेजा है। हनुमान बोले, हे माता, मैं श्रीराम का कार्य करके लौटकर स्वयं तुम्हारे मुंह में आ जाऊंगा, अभी मुझे जाने दो। किंतु उनकी विनती की अनसुनी कर सुरसा ने चार योजन में अपना मुंह खोल दिया। पवन पुत्र ने अपना आकार 8 योजन कर लिया। सुरसा ने 16 योजन में मुंह खोला तो हनुमान 32 के हो गए। उत्तरोत्तर बढ़ता सुरसा का मुंह 100 योजन का हुआ कि पवन पुत्र अत्यंत लघु रूप धारण करके उसके मुंह में जाकर बाहर आ गए और नतमस्तक होकर सुरसा से विदा मांगी। सुरसा ने पवन पुत्र के बलबुद्धि की था पाली थी। आशीष देकर

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 279।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओ नमस्कार। वर्षा चौमासा श्रृंखला में आज की कड़ी है 13वीं कड़ी। कल मैंने कहा था कि कजरी को लेके मन में एक सवाल है। आइए शुभा जी से पूछती हूँ, आप भी सुने और क्या कहती हैं मैं भी सुनूं। शुभा जी, कजरी कहने से जो कुछ अर्थ का बोध होता है
1: जी,
0: तो क्या क्या है इसका जो भावार्थ?
1: अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कजरी जो शब्द है उसका सीधा संबंध कजरा या काजल से है, और जिस प्रकार वर्षा ऋतु में उमड़ने वाले बादल कजरे के समान काले होते हैं, वैसे ही उसी प्रकार का साहित्य कजरी में आपको मिलता है, इसलिए कजरी या कजली भी कहा जाता है इसे। और कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि मिर्ज़ापुरी कजरी बहुत प्रचलित है, लोकप्रिय है, तो मिर्ज़ापुर जिले में विंध्यवासिनी देवी का स्थान है, जिनको कजली देवी भी कहा जाता है
0: जी।
1: और श्याम वर्ण की देवी हैं वो, उनके लिए ये चीज़ें गाई जाती हैं, इस कारण
0: कजली देवी।
1: जी, कजली देवी।
0: हाँ, हाँ।
1: तो उसका भी एक संबंध
0: जी
1: इसके नामकरण से है। तो ये अनेक ऐसी चीज़ें मिलती हैं।

0: कुछ कथा, कुछ किंवदंती कि कैसे इसका नाम कजरी
1: जी,
0: पड़ा।
1: काले बादल जब आकाश में छा जाते हैं तो पूरा वातावरण ही कैसा स्याह स्याह सा, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है
0: जी
1: ना। और वाकई मन में फिर हूक उठने लगती है। फिर वो संयोग श्रृंगार हो, वियोग श्रृंगार हो, उसकी जो मिठास है
0: जी
1: वो
0: बिल्कुल
1: मिठास मुझे लगता है कि इस कजरी में
0: जी, जरूर
1: घुल
0: जरूर
1: जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आज आप क्या फिर से एक आध कजरी और सुनाएंगी?
0: एक कजरी का चयन किया है मैंने, भोजपुरी की कजरी है ये। और इससे मुझे जो एक बात याद में आई वो ये कि हर ऋतु के लिए अलग जो परिधान है वो भी बदलता है। अब अगर ग्रीष्म ऋतु में हम रेशमी कपड़ा पहन लें तो बहुत गर्मी लगेगी, या
1: जी
0: बहुत मोटा कुछ कपड़ा पहन लें, शॉल इत्यादि पहन लें तो गर्मी लगेगी। उसी प्रकार जब वर्षा ऋतु है तो किस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, ये भी इन गीतों में, हमारे भारतीय संगीत में ये भी आपको पता चलता है।
1: कितनी अनूठी बात है।
0: जी
1: हाँ
0: हाँ, पूरी एक संस्कृति का चित्रण होता है। तो कौन सा पकवान, कौन सी चीज़ किस ऋतु में खाई जानी चाहिए, कैसी चीज़ें बननी चाहिए, क्या रीति रिवाज हैं, वो सब इनसे पता चलता है। तो इस कजरी में ये कहा गया है कि रंग दे गुलाबी मोरी साड़ी रंगरेजवा।
1: मतलब ये परिधान का संबंध प्रकृति से जुड़ा गया है
0: बिल्कुल
1: इसमें। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है।
0: बिल्कुल।
1: जी
0: तो वो कहती है कि रंग दे गुलाबी मोरी साड़ी रंग रेजवा, बीचे बीचे रंगी है गुलाबी रंग रेजवा। मतलब साड़ी का जो जो बीच का जो हिस्सा है उसे तो गुलाबी रंगिएगा, लेकिन धानी रंग रंगी है किनारी रंग रेजवा। उसमें धानी किनारी होनी चाहिए,
1: हाँ
0: बॉर्डर जो है वो
1: जी
0: धानी रंग का होना
1: जी
0: चाहिए। सरिया पहर हम बगिया में गईली, जब साड़ी पहन के बाग में बगीचे में गए, पड़े लागल सावन के फुहारी रंगरेजवा।
1: वाह
0: भीग गई चुनरी वर्षा में, रिम झिम बरसे बदरवा, लागेला हिंडोला डारी डारी रंगरेजवा।
1: बहुत खूब।
0: झूले भी पड़े हैं,
1: वो भी डाली डाली।
0: हाँ हर डाली
1: हाँ
0: पे झूल झूल झुलवा पर गावे कजरिया। उस पे झूले पे बैठ के कजरी गाई जाती है। झूली झूली झुलवा पर गावे कजरिया, पिया संग सुंदर नारी रंगरेजवा।
1: वाह
0: तो ये
1: वाह।
0: चीज आपको सुनाना
1: वो
0: चाहती
1: नारी तभी सुंदर होती है जब वो पिया के संग
0: हूँ।
1: होती है।
0: सही हो
1: शुभा जी, आप मुझे ये तो कजरी हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मिर्जापुरी और बनारसी कजरी के बीच जो भेद है, कुछ गाने का भेद है?
0: भाषा का ज्यादा भेद है। जैसे कि आप जानती हैं कि हर कुछ किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, तो बनारसी बोली और मिर्जापुरी बोली,
1: जी
0: और उसी तरह भोजपुरी की भी कजरा, इनमें भाषा का ज्यादा,
1: चार कोस पे पानी बदला, आठ
0: हाँ
1: कोस पे
0: भाषा भी
1: बानी,
0: बदली
1: इस
0: बदली,
1: तरह से।
0: और धुन भी जो है वो पारंपरिक जो धुन है
1: जी
0: वो अलग अलग बदली बदलती
1: तो
0: जाती है।
1: अभी ये जो कजरी आपने सुनाई है,
0: जी
1: जो शब्द बताए हैं, वो मिर्जापुरी?
0: ये भोजपुरी कजरी है।
1: जी
0: जी

0: शुभा जी, मैं श्रोताओं के साथ कल के लिए इंतजार करूंगी। आज यहीं रुकते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।
3: साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
4: हाँ भाई समझा।
3: तो संयम, वफादारी और कॉन्डोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाए, और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
5: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: एक मिनट में आप क्या कर सकते हैं? एक मैसेज भेज सकते हैं, एक कॉल कर सकते हैं, एक रील देख सकते हैं।
7: यही नहीं, अभी और सुनिए।
6: लेकिन क्या आपको पता है कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने में भी एक मिनट या उससे भी कम वक्त लगता है, 60 सेकंड से भी कम, और इसका असर सालों तक रह सकता है। कम कचरा लैंडफिल में जाएगा, ज्यादा वेस्ट रिसाइकल होगा, गीले कचरे से कंपोस्ट बनेगा, हवा, पानी और जमीन का प्रदूषण कम होगा।
8: बड़े बदलाव अक्सर छोटी आदतों से ही शुरू होते हैं, तो आज एक मिनट निकालिए और एक नई आदत डालिए, आने वाली पीढ़ियों को भी एक बेहतर भविष्य दें।
9: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
10: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
11: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
12: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
11: बन गया बजट?
12: हाँ,
11: 5,000 बच गए।
12: तो नई साड़ी ले ले।
11: ना,
12: पिछले महीने तो ली थी।
11: एक और
12: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
11: बढ़िया,
12: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
13: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: आज सुबह घर साफ करते वक्त आपने जो कचरा डस्टबिन में डाला, कभी सोचा उसका सफर कहाँ तक जाता है?
8: सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, प्लास्टिक की बोतलें, कागज, रैपर्स, सब एक साथ मिल जाए तो बारे को समस्या से संसाधन बना सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत किसी बड़े प्रोजेक्ट से नहीं, आपके घर के 2 डस्टबिन से होती है।
6: गीला और सूखा कचरा अलग रखिए, स्वच्छ और सस्टेनेबल शहर बनाइए, और एक खुशहाल फ्यूचर के लिए भी अपना योगदान दीजिए।
14: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती। वीको वज्रदंती, मजेदार नहीं असरदार, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
15: वीको टर्मरिक।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

आप सुन रहे थे नास्तिक फिल्म से इस गाने की झलकी, लेकिन इसके पहले आप सुन रहे थे शबाब फिल्म का गाना, शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ों में शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संगीत। आइए अब सुनते हैं नास्तिक फिल्म से वो गाना जिसकी झलकी आपने सुनी थी, लता मंगेशकर की आवाज़ में प्रदीप के बोल सी रामचंद्र का संगीत।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के सुनिए बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गाना बूट पॉलिश फिल्म से मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में शंकर जयकिशन के बोल, संगीत है शैलेंद्र का।

0: अभी आप सुन रहे थे बूट पॉलिश फिल्म से ये गाना। इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे थे और शंकर जयकिशन का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे अमर फिल्म से ये गाना, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे आर पार फिल्म से ये गाना, मजरू सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती। वीको वज्रदंती मजेदार नहीं असरदार, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
1: एक मिनट में आप क्या कर सकते हैं, एक मैसेज भेज सकते हैं, एक कॉल कर सकते हैं, एक रील देख सकते हैं,
2: यही नहीं अभी और सुनिए।
1: लेकिन क्या आपको पता है कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने में भी एक मिनट या उससे भी कम वक्त लगता है, 60 सेकंड से भी कम, और इसका असर सालों तक रह सकता है। कम कचरा लैंडफिल में जाएगा, ज्यादा वेस्ट रिसाइकल होगा, गीले कचरे से कंपोस्ट बनेगा, हवा पानी और जमीन का प्रदूषण कम होगा।
3: बड़े बदलाव अक्सर छोटी आदतों से ही शुरू होते हैं, तो आज एक मिनट निकालिए और एक नई आदत डालिए। गीला और सूखा कचरा अलग अलग कीजिए, शहर साफ रखिए। रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट से अपने आज के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी एक बेहतर भविष्य दें।
4: आज सुबह घर साफ करते वक्त आपने जो कचरा डस्टबिन में डाला, कभी सोचा उसका सफर कहाँ तक जाता है?
3: सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, प्लास्टिक की बोतलें, कागज, रैपर्स, सब एक साथ मिल जाएं, तो बाद में उनका सेग्रीगेशन मुश्किल हो जाता है। ना तो ठीक से रिसाइकल हो पाता है, ना ही बायोडिग्रेड हो पाता है।
4: लेकिन अगर गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखा जाए तो गीला कचरा खाद बन सकता है और सूखा कचरा रिसाइकल होकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।
3: एक छोटा सा कदम कचरे को समस्या से संसाधन बना सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत किसी बड़े प्रोजेक्ट से नहीं, आपके घर के दो डस्टबिन से होती है।
4: गीला और सूखा कचरा अलग रखिए, स्वच्छ और सस्टेनेबल शहर बनाइए और एक खुशहाल फ्यूचर के लिए भी अपना योगदान दीजिए। आज सुबह घर साफ करते वक्त आपने जो कचरा डस्टबिन में डाला, कभी सोचा उसका सफर कहां तक जाता है?
3: सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, प्लास्टिक की बोतलें, कागज, रैपर्स, सब एक साथ मिल जाएं, तो बाद में उनका सेग्रीगेशन मुश्किल हो जाता है। ना तो ठीक से रिसाइकल हो पाता है, ना ही बायोडिग्रेड हो पाता है।

0: लेकिन अगर गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखा जाए तो गीला कचरा खाद बन सकता है और सूखा कचरा रिसाइकल होकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: एक छोटा सा कदम कचरे को समस्या से संसाधन बना सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत किसी बड़े प्रोजेक्ट से नहीं, आपके घर के दो डस्टबिन से होती है।
0: गीला और सूखा कचरा अलग रखिए, स्वच्छ और सस्टेनेबल शहर बनाइए और एक खुशहाल फ्यूचर के लिए भी अपना योगदान दीजिए।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गाना हसरत जयपुरी के बोल, संगीत शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

हम हेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं संगम फिल्म से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं गंगा जमुना, इस फिल्म से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संगीत।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे नया दौर फिल्म से ये गाना, साहिर लुधियानवी के बोल और संगीत ओपी नैयर का। इसी के साथ आज का हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपरली के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
6: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
5: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी

0: पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
1: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
2: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
3: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश पे बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
4: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।

0: भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
2: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक हैं, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्र पत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुँच गया है।
3: 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
1: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
4: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोच्चि में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्णाकुलम के लुलु मॉल में और एजीमाला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चोबा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
5: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों में प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है। रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने, बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी।

0: दैनिक जागरण ने सीबीएसई द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, सीबीएसई 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और सीबीएसई की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती। भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर एक से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश। साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट, उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्ते दोस्तों, आज की त्रिवेणी में संकल्प की बातें होंगी। कई बार जब हम अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं तो हम किसी काम को करने या किसी काम को नहीं करने का संकल्प लेते हैं। इनमें से कुछ संकल्प पूरे होते हैं, कुछ टूट जाते हैं और कुछ संकल्प आंशिक रूप से पूरे हो पाते हैं। हो सकता है हमारे संकल्प बहुत मामूली हों, लेकिन इतना तो तय है कि गंभीरता से इन्हें निभाने पर ये कोई न कोई उपहार हमें जरूर देते हैं। संकल्प हमारे जीवन को बदलने की कवायद रखते हैं। वे आंतरिक बदलाव लाते हैं, वे जीवन की नई शुरुआत करते हैं। चाहे हम अपनी किसी पुरानी आदत को छोड़ना चाहते हों या नया अपने भीतर कुछ विकसित करना चाहते हों, जब हम संकल्प ले लेते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उस ओर हमारे प्रयास शुरू हो जाते हैं। इसलिए कुछ अच्छा करने का संकल्प तो लीजिए, फिर देखिए क्या होता है।

संकल्प का अर्थ ये नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा ही करना है। छोटी छोटी बातों का या छोटे छोटे कामों का संकल्प भी लिया जा सकता है, जैसे वजन कम करना, कर्ज चुकाना, पैसा बचाना, बेहतर नौकरी पाने की कोशिश करना, फिट रहना, पौष्टिक भोजन करना, बेहतर शिक्षा पाने की कोशिश करना, नशे की आदत को छोड़ना, तनाव को कम करना, पैदल घूमना, परिवार को समय देना, ऐसा कोई भी संकल्प हो सकता है। बेशक सभी संकल्प सफल हो जाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके साथ एक विश्वास भी छिपा होता है कि हम अपनी बेहतरी के लिए कुछ सोच तो रहे हैं या कुछ कर तो रहे हैं। हर संकल्प अपने आप में अच्छा होता है क्योंकि इसके साथ सकारात्मक संभावनाएं जुड़ी होती हैं।

छोटे संकल्प अक्सर बड़े बदलावों की नींव रखते हैं। हर दिन 10 रुपए की बचत करना या हर महीने एक पौधा लगाना, ये बातें हमारे जीवन में बहुत भारी बदलाव तो नहीं ला पाएगी, लेकिन सफलता की ओर ये पहला कदम तो जरूर होगा। संकल्प अगर वास्तविक हो तो उनके सफल होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जबरदस्ती किसी काम के पीछे पड़ने से अच्छा है हम सहज और सरल संकल्प पहले लें। आज के व्यस्त दौर में किसी काम का संकल्प लेना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं। ये संकल्प हमारी उन ख्वाहिशों से जुड़े होते हैं जिन्हें हम पूरा तो करना चाहते हैं, पर समय की कमी और समर्पण के अभाव में अनदेखा कर देते हैं। सकारात्मक संकल्प मानसिक संतुष्टि में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए हो सके तो किसी सकारात्मक बदलाव का संकल्प लीजिए।

0: सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
0: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष। वंदे मातरम, एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक

नमस्कार, चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की मॉर्निंग को गुड बनाते हैं एक दीवाना था इस फिल्म के गाने के साथ। लियोन डिसूजा, सुजैन डिमेलो की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

आज हम याद कर रहे हैं बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी को। इन्होंने सदमा, नागिन, मिस्टर इंडिया, चांदनी और लम्हे जैसी कई फिल्मों में आइकॉनिक रोल्स किए। पद्मश्री से सम्मानित श्रीदेवी का आज याद का दिन है।

आप सुन रहे हैं उनकी हाल ही की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से ये गाना सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे की आवाजों में, स्वानंद किरकिरे के बोल अमित त्रिवेदी का संगीत।

आप सुन रहे हैं धड़क फिल्म से ही गाना, अजय गोगावले और श्रेया घोषाल की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीत है अजय अतुल का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं बचना ए हसीनो, इस फिल्म से लकी अली और श्रेया घोषाल की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: आप सुन रहे थे ये गाना बचना ए हसीनो इस फिल्म से। वैसे इस फिल्म के कई गाने, खास तौर से इस फिल्म का टाइटल ट्रैक बॉलीवुड रेट्रो से बहुत इंस्पायर्ड है, इसीलिए इस फिल्म के कुछ गानों में आपको राहुल देव बर्मन के गानों की झलकी सुनाई देगी। खैर, इस गाने को के म्यूज़िक को तैयार किया था विशाल शेखर ने और इस गाने को लिखा है अन्विता दत्त ने।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: होता है, शाम को बारूद में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
3: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं दोस्ताना फिल्म से। विशाल ददलानी और श्रेया घोषाल की आवाजों में अनविता दत्त के बोल और म्यूजिक है विशाल शेखर का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

भारतीय सिनेमा की नामचीन अदाकारा वैजयंतीमाला बहुआयामी प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं। अभिनय के अलावा भरतनाट्यम, कर्नाटक संगीत गायन और नृत्य निर्देशन में अपनी कामयाबी साबित करने के बाद जन प्रतिनिधि के रूप में भी अपनी एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने शानदार अभिनय और नृत्य में अपनी दक्षता के रहते वैजयंतीमाला ने फिल्म जगत में बनाई अपनी विशिष्ट पहचान।

सिने जगत में वैजयंती माला ने 16 बरस की आयु में अभिनय की शुरुआत जिस फिल्म से की वो थी 1949 में आई तमिल फिल्म वजकई। अगले ही बरस 1950 में उन्होंने तेलुगु फिल्म जीवितम में काम किया। अपनी प्रतिभा से वैजयंती माला ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में तो कामयाबी के शिखर छुए ही मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा की भी वो बेहद लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री साबित हुई।

13 अगस्त सन 1933 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी के ट्रिप्लिकेन में जन्मी वैजयंतीमाला की शुरुआती फिल्म मंगामा सबाथम बहुत सफल रही। सन 1951 में रिलीज हुई वैजयंतीमाला की पहली हिंदी फिल्म बहार।

फिल्म बहार के 3 बरस बाद वैजयंतीमाला की यादगार फिल्म आई नागिन। राजेंद्र कृष्ण के गीतों और हेमंत कुमार के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

0: सन 1955 में आई शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की अमर कृति देवदास पर इसी नाम से बनी बिमल रॉय द्वारा निर्देशित फिल्म, जिसमें वैजयंतीमाला ने निभाई चंद्रमुखी की भूमिका।
1: इतने कपड़े लगते, पेटी बिस्तर की जरूरत तो नहीं थी मुझे।
2: जरूरत थी या नहीं, ये मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ।

0: में एक दासी की तो जरूरत होगी, मुझे भी साथ ले चलो।
1: ये हो ही नहीं सकता चंद्रमुखी, दुनिया तुम पर उंगलियां उठाएगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा।
0: मगर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, परदेश में अकेले कैसे जाओगे, कैसे रहोगे?
1: मैंने धर्मदास को खत लिख दिया है, वो स्टेशन पे मुझे मिल जाएगा।
0: मुझे एक वरदान दोगे?
1: क्या?
0: अब कभी शराब नहीं पियोगे?
1: वादा तो नहीं करता चंद्रमुखी, लेकिन तुम्हारी बात याद जरूर रखूंगा।
0: सुनो, जहां भी रहो, अगर तुम्हारा शरीर जरा भी खराब हो तो इस दासी को जरूर खबर दे देना।
1: अच्छा चंद्रमुखी, देखो ये रख लो अपने पास।
0: नहीं, अभी इसकी जरूरत है।
1: जरूरत है या नहीं ये तो मैं जानता हूँ। देखो चंद्रमुखी, जीने का तो कोई भरोसा नहीं, तुम क्या मझदार में डूबोगी? ये अपने पास रख लो और कुछ मत कहो।
0: मिलना होगा,
1: कौन जाने, पर जब तक मैं जिंदा हूँ चंद्रमुखी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा, तुम्हें देखने की प्यास कभी नहीं बुझेगी। न जाने पाप और पुण्य के विचार करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करें, लेकिन अगर मरने के बाद मेल होता है तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह पाऊंगा।
0: उसी जन्म के इंतजार में जिंदगी गुजार दूंगी।
2: शरद बाबू की जैसी कालजयी कृति है देवदास, उस पर बनी फिल्म भी उतनी ही खूबसूरत है।

देवदास के लिए वैजयंतीमाला को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार देने की घोषणा हुई, लेकिन वैजयंतीमाला ने यह कहकर पुरस्कार अस्वीकार कर दिया कि उनकी भूमिका सह अभिनेत्री की नहीं बल्कि मुख्य भूमिका जैसी ही थी। फिल्म फेयर पुरस्कार अस्वीकार कर देने वाली वो पहली कलाकार थीं। इसके बाद वैजयंतीमाला की कई कामयाब फिल्में आईं। ये थीं न्यू दिल्ली, नया दौर और

1958 में वैजयंतीमाला की दो चर्चित फिल्में आईं, जिन्हें दर्शकों और फिल्म समीक्षकों की भरपूर सराहना मिली। इनमें से एक थी फिल्म साधना।

पुनर्जन्म की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में वैजयंतीमाला के नायक थे दिलीप कुमार। मधुमति अपनी कहानी, कलाकारों के अभिनय के अलावा अपने सुमधुर संगीत के लिए भी सराही गई।

0: वैजयंतीमाला तमिल सिनेमा में वापस लौटी और उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। सन 1961 में मूल रूप से दक्षिण भारतीय सिने कलाकार वैजयंतीमाला ने गंगा जमुना में काम किया, जिसमें उनके संवादों में भोजपुरी का रंग था। उन्होंने इस फिल्म में बहुत समर्पित होकर काम किया। गंगा जमुना को फिल्म समीक्षक उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनते हैं। फिल्म गंगा जमुना में अपने शानदार अभिनय के लिए वैजयंतीमाला को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार।
1: बीच रस्ते में हुड़दंग मचा रहे गुंडे कहीं के।
2: अरे देख रही धनु, हम अपने मुन्ना के लिए फाउंटेन लावा है।
1: फाउंटेन लावा है, चल ना ही सारे से की निकाल दे हो एक मिनट में।
2: अरे बाहरी महारानी, बाह फोकट का माल लूट के लाई रही बजरिया से का।
1: फोकट का ना ही इकन्नी दिए हूँ, इकन्नी चार पैसे खून पसीना एक करके। हाँ
2: अरे इकन्नी देखी है कौन दिन।
1: हाय हाय, तेली का तेल जले मसालची की छाती फटे। तोरी छाती का है फटे रे, एक को समझाए दियो
2: नहीं तो का तोप दम कर देगी।
1: ये हाथन में कांच की चूड़ियां नहीं, लोहे के कड़े हैं, कड़े दिखा।
2: तो ये हाथन में भी मेहंदी नहीं लागी है देखा।
3: अरे ज्यादा चिपड़ चिपड़ लग कर हटे।

0: सन 1964 में भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर लेकर आए अपनी फिल्म संगम। इस फिल्म में राज कपूर और वैजयंती माला के अलावा राजेंद्र कुमार ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेम त्रिकोण पर आधारित इस फिल्म में वैजयंती माला जी को किस तरह अभिनय के लिए राजी किया गया, इस बारे में एक दिलचस्प प्रसंग का जिक्र करते हुए अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर के अभिनेता पुत्र ऋषि कपूर।
1: संगम में मुझे एक किस्सा बताया गया था कि जब वैजयंती माला जी को साइन करने की इच्छा थी उन्हें, तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा वैजयंती माला जी को कि बोल राधा संगम होगा कि नहीं, यानी कि ही वांटेड हर टू प्ले द लीड इन संगम। उन्होंने टेलीग्राम वापस भेजा होगा होगा होगा।

फिल्म संगम में अपने अविस्मरणीय अभिनय के लिए वैजयंतीमाला ने तीसरी बार पाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार।

फिल्म संगम के बाद वैजयंतीमाला की एक और महत्वपूर्ण फिल्म आई आम्रपाली। आम्रपाली में वैजयंतीमाला के नायक बने सुनील दत्त। इस फिल्म के गीतों को यादगार धुनों से सजाया शंकर जयकिशन ने।

गीत संगीत अभिनय हर तरह से बेहतरीन होने के बावजूद फिल्म आम्रपाली को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म आम्रपाली का संगीत आज भी कालजयी है।

अपने करियर के ढलान में भी वैजयंती माला ने कई खूबसूरत फिल्मों में काम किया। ये थी सूरज, ज्वेल थीफ, प्रिंस और संघर्ष।

सन 1968 में वैजयंतीमाला ने चमनलाल बाली से विवाह किया। विवाह के बाद 1968 से 1970 के बीच उन्होंने अपनी कुछ फिल्मों की शूटिंग कर उन्हें पूरा किया। इन फिल्मों के नाम हैं प्यार ही प्यार, गंवार और प्रिंस।

वैजयंती माता जी का एक बेटा है जिसका नाम है सुचेंद्र बाली। स्थायी रूप से चेन्नई में बस चुकी वैजयंती माला ने सहयोगी लेखिका ज्योति सबरवाल के साथ मिलकर लिखी अपनी जीवनी बॉन्डिंग। वैजयंती माला जी की फिल्मों से, उनके अभिनय से दर्शकों की जो बॉन्डिंग है वो अटूट है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला पर। कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: एक मिनट में आप क्या कर सकते हैं, एक मैसेज भेज सकते हैं, एक कॉल कर सकते हैं, एक रील देख सकते हैं,
1: यही नहीं अभी और सुनिए।
0: लेकिन क्या आपको पता है कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने में भी एक मिनट या उससे भी कम वक्त लगता है, 60 सेकंड से भी कम, और इसका असर सालों तक रह सकता है। कम कचरा लैंडफिल में जाएगा, ज्यादा वेस्ट रिसाइकल होगा, गीले कचरे से कंपोस्ट बनेगा, हवा पानी और जमीन का प्रदूषण कम होगा।
2: बड़े बदलाव अक्सर छोटी

0: आदतों से ही शुरू होते हैं। तो आज एक मिनट निकालिए और एक नई आदत डालिए। गीला और सूखा कचरा अलग अलग कीजिए। शहर साफ रखिए। रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट से अपने आज के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी एक बेहतर भविष्य दें।
1: आज सुबह घर साफ करते वक्त आपने जो कचरा डस्टबिन में डाला,
0: कभी हो जाता है ना, तो ठीक से रिसाइकल हो पाता है ना ही बायोडिग्रेड हो पाता है।
1: लेकिन अगर गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखा जाए तो गीला कचरा खाद बन सकता है और सूखा कचरा रिसाइकल होकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।
0: एक छोटा सा कदम कचरे को समस्या से संसाधन बना सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत किसी बड़े प्रोजेक्ट से नहीं, आपके घर के दो डस्टबिन से होती है।
1: गीला और सूखा कचरा अलग रखिए।
2: आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। जिले की चिट्ठी के लिए चलते हैं भोपाल केंद्र।
3: वाचन स्वर दीपा सिंह। अनूपपुर जिले में इन दिनों हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैलियों की धूम है। जिले के पहाड़ी क्षेत्र पवित्र नगरी अमरकंटक से लेकर कोयलांचल क्षेत्र और जिले की सीमा में बसे बनगवा, डोला, डुमरकछार, बिजरी, कुतमा, पसान सहित जिला मुख्यालय अनूपपुर में तिरंगा रैलियां जोश और उत्साह के साथ निकाली जा रही हैं। रैलियों के दौरान भारत माता की जय के घोष से पूरा वातावरण देशभक्ति से भर गया है। जिले के विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा रैली निकालकर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जा रहा है। देशभक्ति के नारों और गीतों से वातावरण राष्ट्रभक्ति से उद्भूत हो रहा है। कलेक्टर रत्नाकर झा ने हर घर तिरंगा अभियान की गतिविधियों को निरंतर आयोजित करने तथा कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिले में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। 15 अगस्त को सुबह 9 बजे जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के कुटीर और ग्रामोद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिलीप जायसवाल होंगे। वे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान भी 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित निराकरण तथा शासकीय सेवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार को पूर्व निर्धारित स्थान पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 14 अगस्त को ITI कैंपस अनूपपुर में द्वितीय शिविर आयोजित होगा। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 अगस्त 2026 कर दी गई है। उप संचालक कृषि अजित कुमार ने जिले के किसानों से विस्तारित अवधि का लाभ उठाते हुए बिना विलंब अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है। वहीं नवागत कलेक्टर रत्नाकर झा पदभार ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने जिले के चारों विकासखंड अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ और जैथरी स्थित अस्पतालों का निरीक्षण किया और मरीजों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर रत्नाकर झा ने 10 अगस्त को कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक को लेकर विभागवार लंबित प्रकरणों और प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी में प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदक से संवाद कर उसकी समस्या का समाधान करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिकारियों को अपनी टीम को सक्रिय रखते हुए कार्यों की नियमित निगरानी और दैनिक प्रगति रिपोर्ट साझा करने के निर्देश दिए। 11 अगस्त को कलेक्ट्रेट कार्यालय से NIC सभागार में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और समग्र पेंशन योजना के अंतर्गत हितलाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समग्र पेंशन योजना के अंतर्गत जिले के 24,130 हितग्राहियों के खातों में 1,44,78,000 रुपये की राशि अंतरित की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव के संबोधन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा प्रसारण देखा और सुना गया। वर्षा ऋतु में मौसमी और जलजनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। सीएमएचओ डॉ. अलका तिवारी ने बताया कि बारिश के मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार, वायरल संक्रमण, दस्त, उल्टी और टाइफाइड सहित जलजनित और खाद्य जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही नहीं बरतनी और स्वयं दवा लेने के बजाय निकटतम शासकीय स्वास्थ्य संस्था में चिकित्सीय परामर्श लेकर उचित उपचार लेने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, जिला पुरातत्व, पर्यटन और संस्कृति परिषद तथा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय

पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 आयोजित की गई। इसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों, संस्कृति, नदियों, झरनों, मंदिरों, किलों और महलों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लपटा की टीम ने प्राप्त किया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अजीत मिश्रा का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का।
1: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। लीजिए सुनिए आज सुबह प्रसारित किए गए प्रादेशिक समाचार की रिकॉर्डिंग।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में आज भोपाल के बड़े तालाब में निकाली जाएगी नौका तिरंगा यात्रा। अहमदाबाद निवेश संवाद में प्रदेश को 8635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश को 2 राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। और प्रदेश में लगातार मानसून सक्रिय, शिवपुरी और श्योपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 आगे समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक को व्यापक परामर्श संसद दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया। इस समिति में अध्यक्ष द्वारा नामित लोकसभा के 21 सांसद, सभापति द्वारा नामित राज्यसभा के 10 सांसद शामिल होंगे। समिति शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। भोपाल के बड़े तालाब में आज नौका तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में सुबह 11 बजे से बोट क्लब से यात्रा शुरू होगी। इसमें 100 से अधिक नावों पर युवा खिलाड़ी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर शामिल होंगे। यात्रा की तैयारियों का मंत्री विश्वास सारंग ने कल जायजा लिया और सुरक्षा, यातायात, नाव संचालन और गोताखोरों तथा SDRF की तैनाती के निर्देश दिए। गुजरात के अहमदाबाद में कल हुए निवेश संवाद में प्रदेश को 8635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 5785 से अधिक रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद कर मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
1: मध्य प्रदेश और गुजरात ये परस्पर एक दूसरे के साथ कई प्रकार के क्षेत्रों में अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों के बलबूते पर अपनी साथ में प्रगति के लिए चलने के लिए प्रतिबद्ध है। मां नर्मदा के कारण से गुजरात की भी समृद्धि है। यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन समय जब CM थे उसी का लाभ गुजरात को भी मिला, मध्य प्रदेश को भी मिला। अपने राज्य के गुजरात के में व्यापारियों को जो गुजरात में भी व्यापार व्यवसाय करे, साथ ही समान रूप से मध्य प्रदेश में भी वो व्यापार व्यवसाय को बढ़ाए।
0: उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेशकों को हर संभव सुविधा, सुरक्षा और सहयोग दिया जाएगा। संवाद में 500 से अधिक उद्योगपतियों और निवेशकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने गुजरात के उद्योग जगत को 2027 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने का भी आमंत्रण

0: दिया। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित पदक अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राष्ट्रपति के विशिष्ट और सराहनीय सेवा पदक प्रदान करेंगे। इनमें पुलिस के 9 विशिष्ट सेवा और 33 सराहनीय सेवा पदक जबकि होमगार्ड के 3 सराहनीय सेवा पदक शामिल हैं। इसके अलावा 2 सर्वोत्कृष्ट जीवन रक्षा पदक भी प्रदान किए जाएंगे। समारोह में मरणोपरांत मंदसौर के स्वर्गीय मनोहर सिंह चौहान को भी सर्वोत्कृष्ट जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता बाधक नहीं बने। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए ताकि सभी पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सीपीसीटी परीक्षा के कारण किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित या उनका डिमोशन ना किया जाए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। प्रदेश को सभी 6 लक्षित लाभार्थी समूहों में आयरन और फॉलिक एसिड अनुपूरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश में 3रा स्थान मिला है। वह एनीमिया नियंत्रण और जन जागरूकता के लिए तैयार उत्कृष्ट IEC सामग्री को बेस्ट IEC डिस्प्ले सम्मान दिया गया। ये सम्मान भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रदान किए गए। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कहा है कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में करीब 1,33,00,000 रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और समारोह को संबोधित कर रही थीं। इनमें सड़क, नाली और सामुदायिक भवन निर्माण के कार्य शामिल हैं। श्रीमती गौर ने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने के भी निर्देश दिए। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को गति देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का गठन किया है। उज्जैन विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल को प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने कल इस संबंध में आदेश जारी किया। प्राधिकरण का गठन मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम 1955 के तहत किया गया है। इसके गठन से सिंहस्थ से जुड़े विकास, अधोसंरचना और प्रशासनिक कार्यों को संस्थागत स्तर पर आगे बढ़ाने में तेजी आने की उम्मीद है। भोपाल में आज से हर घर तिरंगा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से श्यामला हिल्स स्थित क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन आज सुबह 10:30 बजे महापौर मालती राय करेंगे। इसमें देशभक्ति, विभाजन की त्रासदी से जुड़ी तस्वीरें और जानकारियां प्रदर्शित की जाएंगी। प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन के इतिहास से अवगत कराना है। भोपाल में भारी बारिश के बीच जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। कलेक्टर प्रियांक मिश्रा ने बताया है कि बारिश से पहले ही नगर निगम, SDRF, ट्रैफिक, राजस्व और सड़क से जुड़े विभागों के साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्य योजना तैयार की गई थी। उन्होंने कहा है कि जलभराव वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और टीमें लगातार काम कर रही हैं।
2: बहुत सी जगह हैं जिनकी मुझे भी सूचना मिली है, मुझे भी जो फीडबैक मिला है, जहां पूर्व वर्षों में पानी ज्यादा भरता था बट इस बार जो है वहां साफ सफाई से वहां उतना तेज पानी नहीं भरा और निकला भी, समय पे निकल भी गया। शायद ही कोई शहर हो ऐसा देश का, आप चेन्नई ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, हर जगह ये अर्बन फ्लड्स जो है वो एक सच्चाई है शहरों की। हम ये सोच लें कि पानी कहीं पर एक बूंद भी नहीं रुकेगा, ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन वो किस गति से निकल रहा है और जो भी स्थानीय प्रशासन है वो किस गति से काम कर रहा है, यही हमारा रोल है।
0: वहीं कम दबाव के कारण प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तटों से होते हुए उत्तर पश्चिमी की ओर पड़ रहा है, जिसके चलते विभाग ने आज शिवपुरी और श्योपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम सहित प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना जताई है। बीते 24 घंटों में खरगोन, खंडवा, कुनावती बारिश दर्ज की गई।

अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर जिले के शासकीय महाविद्यालय दलौदा में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में नशा मुक्ति युवा भारत थीम पर जिला स्तरीय विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतना में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कटनी में आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में नीति धारा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डिंडौरी में एड्स के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से कल जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एक मिनट में आप क्या कर सकते हैं, एक मैसेज भेज सकते हैं, एक कॉल कर सकते हैं, एक रील देख सकते हैं।
2: यही नहीं, अभी और सुनिए।
1: लेकिन क्या आपको पता है कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने में भी एक मिनट या उससे भी कम वक्त लगता है, 60 सेकंड से भी कम, और इसका असर सालों तक रह सकता है। कम कचरा लैंडफिल में जाएगा, ज्यादा वेस्ट रिसाइकल होगा, गीले कचरे से कंपोस्ट बनेगा, हवा पानी और जमीन का प्रदूषण कम होगा।
3: बड़े बदलाव अक्सर छोटी आदतों से ही शुरू होते हैं, तो आज एक मिनट निकालिए और एक नई आदत डालिए। गीला और सूखा कचरा अलग अलग कीजिए, शहर साफ रखिए। रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट से अपने आज के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी एक बेहतर भविष्य दें।
4: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
5: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
4: बन गया बजट?
5: हाँ, 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले।
5: ना, पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और?
5: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया,
5: जाओ भाई।
6: RBI कहता है,
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: आज सुबह घर साफ करते वक्त आपने जो कचरा डस्टबिन में डाला, कभी सोचा उसका सफर कहाँ तक जाता है?
3: सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, प्लास्टिक की बोतलें, कागज, रैपर्स, सब एक साथ मिल जाए तो बाद में उनका सेग्रीगेशन मुश्किल हो जाता है। ना तो ठीक से रिसाइकल हो पाता है, ना ही बायोडिग्रेड हो पाता है।
11: लेकिन अगर गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखा जाए तो गीला कचरा खाद बन सकता है और सूखा कचरा रिसाइकल होकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।
3: एक छोटा सा कदम कचरे को समस्या से संसाधन बना सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत किसी बड़े प्रोजेक्ट से नहीं, आपके घर के 2 डस्टबिन से होती है।
11: गीला और सूखा कचरा अलग रखिए, स्वच्छ और सस्टेनेबल शहर बनाइए और एक खुशहाल फ्यूचर के लिए भी अपना योगदान दीजिए।
12: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जबलपुर का यह विविध भारती केंद्र है। आज है गुरुवार और इस दिन इस वक्त आप सुनते हैं कार्यक्रम एक कलाकार। एक कलाकार कार्यक्रम लेकर मैं आपकी रेडियो दोस्त साबनी राजू आज आपके साथ। हमारे आज के एक कलाकार एक ऐसी आवाज जिनके गाए गीत सुनकर दिल में देशभक्ति का जज्बा और तेजी से उछाल मारने लगता। आज के एक कलाकार एक ऐसी आवाज जो भारत कुमार की आवाज बन गई। आज के एक कलाकार

एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपने गाए गीत, ख़ास तौर से वो अपने देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों के लिए जाने जाते थे, लेकिन जब उन्होंने प्यार मोहब्बत के गीत और नगमे गुनगुनाए तो वो भी लोगों के दिलों में घर कर गए। आज के एक कलाकार, पार्श्व गायक महेंद्र कपूर।

महेंद्र कपूर जी का जन्म 9 जनवरी 1934 को हुआ। एक भारतीय पार्श्व गायक, दशकों तक उन्होंने अपने लंबे करियर में चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, नील गगन के तले जैसे लोकप्रिय गीत उन्होंने गाए। महेंद्र कपूर जी की यह खासियत थी कि देशभक्ति गीतों में उनका नाम सबसे ऊपर, सबसे पहले आता था। महेंद्र कपूर मोहम्मद रफ़ी को अपना गुरु मानते थे। 1972 में महेंद्र कपूर जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुनील दत्त और मनोज कुमार की अधिकतर फिल्मों में उन्होंने, यानी कि महेंद्र कपूर ने ही स्वर दिया। ये गीत फिल्म गुमराह का।

एक कलाकार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जबलपुर के विविध भारती केंद्र से, आपके अपने रेडियो दोस्त सावनी राजू के साथ। आज के एक कलाकार हैं पार्श्व गायक महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ की रेंज बहुत विस्तृत थी। उन्हें भारत की जीवंत आवाज़, जैसा कि आपसे अभी पहले कहा कि देशभक्ति गीतों का पर्याय महेंद्र कपूर। अंग्रेजी में गाना गाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। महेंद्र कपूर ऐसे पहले भारतीय पार्श्व गायक थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में गीत रिकॉर्ड किया। बोनी एम समूह ने उनसे पाकिस्तान की मुसर्रत के साथ हिंदी गाने गाने का अनुरोध किया और उन्होंने एक उन दोनों की आवाज़ में एक एल्बम बना। उस पॉप एल्बम का नाम M3 रखा। महेंद्र कपूर साहब ने मोहम्मद रफ़ी के साथ भी एक युगल गीत गाया। कपूर साहब ने कई भारतीय भाषाओं में गीत गाए, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, मराठी फिल्मों में उन्होंने सबसे अधिक गायन किया।

फकीरा फिल्म का ये गीत आपने सुना। ये गीत फिल्म आई थी 1975 में। अगला गीत फिल्म हमराज से 1957 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। साहिर ने इनके गीतों को लिखा था, रवि ने संगीतबद्ध किया था। महेंद्र कपूर के गाए सुपर डुपर हिट गीतों में से एक ये गीत।

महेंद्र कपूर साहब ने कई भारतीय भाषाओं में गाने गाए। सभी फिल्मों में उनकी आवाज़ हर रूप में बहुत लोकप्रिय हुई, लोगों ने पसंद किया। मराठी भाषा में भी उन्होंने गायन जारी रखा। महेंद्र कपूर को लोग पसंद करते थे उनकी आवाज़ की रेंज के कारण। देशभक्ति गीत यानी कि महेंद्र कपूर। 27 सितंबर 2008 को महेंद्र कपूर जी का मुंबई में उनके घर में हृदयाघात से निधन हो गया। महेंद्र कपूर के गाए गीत, उनकी ये कलाकारी, उनकी ये देशभक्ति से ओतप्रोत लंबी रेंज की आवाज़ हमेशा हमारे आपके सबके दिलों में हमेशा यूं ही गूंजती रहेगी।

0: श्रोताओं, ये था कार्यक्रम एक कलाकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायक महेंद्र कपूर पर। आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस।
1: वी ब्रिंग यू अ टॉक ऑन मेंटल हेल्थ एंड एक्सेस टू जस्टिस केयर एंड ह्यूमन डिग्निटी। दिस टॉक वाज पार्ट ऑफ अ वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।
2: जब तक एक इंडिविजुअल ये नहीं समझता कि मुझे मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना है या मुझे किसी से कनेक्ट करना है, तब तक नेक्स्ट स्टेप आता ही नहीं है। वी डू नॉट टेन टॉक अबाउट व्हाट राइट्स ही हैज और व्हाट वेयर ही कैन गो। जब भी हम अक्सर स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ, वेदर ही इज हेल्दी और नॉट, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं कि नहीं, एंड वी यूजुअली इग्नोर that the mental health aspect and the social. So WHO has identified that mental health is integral to health. So when we are talking about mental health, what is mental health? It's a complex process. क्या हम समझ पा रहे हैं मेरे साथ जिंदगी में क्या हो रहा है, लाइफ में कितने सारे पड़ाव पड़ते हैं, are we able to cope up with those things, are we productive despite having to face various challenges in life. So if we are able to do so, we would say that I'm mentally healthy, I'm able to deal with my mental health adequately. There are various situations in life, whether it is at workplace, family, with how we are connecting with other individuals, whether we are facing some legal battle or we are having shortage of funds, someone in the family is ill, or home environment or the school environment or the workplace is having problems. So in sab cheezon ko leke hum some individuals may feel stressful, some individuals may feel that this is part of life. To hamare reactions alag alag hote hain, and at the same time we need to understand that some amount of stress is important to drive us to face those challenges. Agar hamare paas ek bacche ke samne exam ho hi nahi to wo padhega hi kyun? तो एग्जाम एक तरह से उसके लिए स्ट्रेस भी क्रिएट करता है, पर दूसरे पर्सपेक्टिव से उसको एक चैलेंज भी मिलता है कि मुझे आगे सीखना है। बट एट द सेम टाइम आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस वी बिकम डिसफंक्शनल, जिसको हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए एंग्जाइटी देता है, घबराहट देता है, एक helplessness की feeling देता है। दैट इज द टाइम when वी नीड टू सीक हेल्प। इफ वी आर एबल टू फेस द स्ट्रेस adequately, we are fine, but if we are not able to face the coping, we are not able to face those challenges, then we start having headache ho raha hai, mujhe bahut thakan lagti hai, mere ko neend nahi aa rahi hai. So these are some of the signs and commonly reported symptoms, whether they are in the form of physical issues, kyunki aksar hum mental health issues ko bhi physical ka naam dete hain. Hame

0: महसूस यही होता है कि हमारे शरीर में थकान है, बट एक्चुअली द कॉज मे बी एट द मेंटल लेवल। ये कहना कि कब उदासीपन डिप्रेशन मतलब एक क्लिनिकल डिसऑर्डर बन जाता है, एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है, बहुत कोई डिमार्केशन नहीं है। जनरली वी से दैट इफ इट इज परसिस्टेंट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ सैडनेस डिप्रेशन व्हिच इज वेरी कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, एंड इट इज सैडनेस या डिप्रेशन इज कॉमनली यूज्ड वर्ड अमंग द पब्लिक। सो हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दीज साइंस? जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम शारीरिक कंप्लेंट्स देते हैं, मेरे हेडेक हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा नहाने का, मेरा कोई नींद ठीक से नहीं आती, या मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है, या मेरा मन नहीं करता है खाना खाने को। सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल सोमेटिक कंप्लेंट्स दैट इफ वन इज फीलिंग दैट और वन इज रिपोर्टिंग, वी नीड टू टेक इट सीरियसली। सम ऑफ द बिहेवियरल साइंस इंक्लूड, देयर इज अ सडन, पेरेंट्स आके कहते हैं कि कई बार पता नहीं बिना प्रोवोकेशन के, बिना कोई किसी कॉन्टेक्स्ट के इरिटेबल हो जाता है, वापस जवाब देता है, या अननेसेसरीली शॉपिंग आजकल हो रही है, एक्सट्रीम्स ऑफ बिहेवियर विच वॉज नॉट देयर अर्लियर। सो एनी चेंज ओवर द टाइम विच इज नॉट देयर, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द फैमिली, दैट मीन्स देयर इज सम दिस बिहेवियर नीड्स टू बी attended to. At a social level, we don't want to interact with people, we don't want to respond to people, respond to family members. छोटी छोटी चीजों को लेके हम nervous हो जाते हैं. Sometimes we say that मुझे लग रहा है कि बस जिंदगी का अंत आ गया है. So these kind of emotional responses also are a matter of concern and may be an indication for mental illness. So, मोटे तौर से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो इररिस्पेक्टिव, दे कैन बी, दीज साइंस कैन बी ड्यू टू सम फिजिकल इलनेस एंड दीज कैन ऑल्सो बी साइन फॉर सम मेंटल इलनेस। हमारे रोज के रोजमर्रा का जो रूटीन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, कॉलेज जाने में छुट्टी अक्सर आ रही है, हम वर्क प्लेस से कोई ना कोई बहाना लेके जल्दी वापस आ जाते हैं, वी आर नॉट ईटिंग वेल, आई गेट अप इन बिटवीन एट नाइट, और देर इज अ चेंज इन माई इंटरेक्टिव, पहले बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन होती थी, अभी मेरा मन नहीं करता है। सो दीज आर ग्रॉस साइंस विच मे बी ड्यू टू एनी रीजन, बट दे आर इम्पॉर्टेंट टू बी पिक्ड। सम साइंस आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर, ये सब कॉमन बीमारी है, बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत गंदा हूँ तो बार बार नहाते हैं, या बहुत ज़्यादा हैंड वॉशिंग होती है, तो OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बच्चों में अक्सर स्कूल से रेफरल आते हैं कि बच्चे में बहुत ज़्यादा, वो 7th क्लास में पढ़ रहा है पर उसको अभी तक सेंटेंस बनाना नहीं आता, उसकी स्पेलिंग में एरर्स बहुत हैं, या मैथ्स में वो 2nd क्लास का परफॉर्मेंस है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। तारे जमीन पर हम सब ने देखी है, एंड दैट इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस इज अबाउट। मेनी टाइम्स अनलाइक अदर इलनेसेस, पीपल डू रिपोर्ट मेरे को बहुत डिप्रेशन रहता है, इट शुड बी टेकन सीरियसली, इट्स अ क्राई फॉर हेल्प दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल। अक्सर देखा गया है कि इंडिविजुअल्स हु डू ट्राई टू कमिट सुसाइड, दे डू से, दे वर्बलाइज देयर problems, their helplessness, and they seek help, which we most often in our peer groups we do not recognize. Later on, अरे उसने तो ऐसा कहा था। Sometimes individual report मुझे कुछ सुनाई देता है, हम हंस के उड़ा देते हैं बात को, these may be signs for psychosis. Sometimes we say that बहुत anxiety, बहुत घबराहट हो रही है, तो मुझे लगता है कुछ मिनट को लगा कि मेरा तो अंत आ गया, it may be a panic attack. So we need to seek help rather than face that मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे तो मैं नहीं जाता हूँ दिखाने। At times if it is possible तो teachers setting में या parents जो educated हैं, we have small self-administered questionnaire which can actually tell you कि ये इस 10 items में से इतना cut off 2 के ऊपर है, that means you need to consult a mental health professional. PHQ, GAD, 7 items, 9 items, it's hardly anything. Very simple items which can be used in community.
1: You had been listening to a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. We slip into a short break.

सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य मां हर हर हर हर हर हर महादेव।

सुगंधिम पुष्टिवर्धक।

काशी फिल्म का गीत अभी आपने सुना नई फिल्मों से कार्यक्रम में। और श्रोताओं, इन दिनों श्रावण मास में हर कहीं कांवड़ियों की, बम बम भोले के जयकारे की गूंज है। बस जब ये कांवड़िए रास्ते से निकलते हैं तो जितना हो सके इनकी मदद कीजिए। और हाँ, जाहिर सी बात है कि जब हम इन्हें खाने पीने का सामान देंगे तो ये तो चूंकि रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये तो खाने पीना, आपने जिस भी सामान, जिस भी बर्तन में उनको दिया है वो वहीं छोड़ेंगे। उसके बाद यदि हम उनकी सेवा का भाव लेकर रास्ते में खड़े हैं शंकर जी की उपासना करने के लिए, ओम नमः शिवाय तक अपना भक्ति की भावना पहुंचाने के लिए, तो कांवड़ियों के आगे जाने के बाद रास्ता साफ स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आखिर हम ही रखेंगे, हम ही रचेंगे अपना शहर सुंदर। केदारनाथ का गीत आप तक।

नई फिल्मों से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जबलपुर के विविध भारती केंद्र से आपके अपने रेडियो दोस्त सावनी राजू के साथ। अब आपको सुनवाते हैं डंकी फिल्म का गाना। डंकी, जिसमें कहानी थी कि किस तरह लोग जब भारत से बाहर विदेश जाने का मोह रखते हैं और किस तरीके से वो बिल्कुल मुश्किलात के साथ मुश्किल भरे रास्तों से बाहर जाते हैं, उनके घर में वो पीठ पीछे बहुत सारे सपने अपने घर वालों के लिए छोड़ जाते हैं, तो वहाँ कई बार वो बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं पर स्वदेश वापस सोचने के लौटने के बारे में नहीं सोचते। ये कहानी डंकी में फिल्म में इसी बात की बात की गई थी। डंकी फिल्म में थे शाहरुख खान, थे इसमें विकी कौशल थे और बहुत से सितारे थे। डंकी फिल्म यूँ तो ठीक थी, अच्छी थी, लोगों ने इसे पसंद किया था, इसका जो स्टोरी थी वो पसंद की थी और इस फिल्म के कुछ गीत बेहद चले थे, जैसे कि आपने सुना था एक गीत लुटपिट गया और मैं तेरा रास्ता देखूँगा, लेकिन आज हम लोग सुन रहे हैं इसी फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

नई फिल्मों से कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बॉर्डर 2 से अरिजीत सिंह, सोनू निगम और साथियों की आवाज़।

अंतिम पेशकश फिल्म ओरी से, ओरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म के इस गीत में आवाज है यासिर देसाई और शाश्वत सचदेव की।

पूरी फिल्म के इस गाने के साथ ही नई फिल्मों से कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत आपके अपने रेडियो दोस्त सावनी राजू को। आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के विषय में बता दें, दोपहर 2:30 पर सुनिए सदाबहार नगमे, सखी सहेलियों से मुलाकात कीजिए 3:00। फौजी भाइयों के पसंद का कार्यक्रम जयमाला प्रसारित किया जाएगा 7:00 से। इंद्रधनुष कार्यक्रम में इनसे मिलिए 7:45 पर। आज के फनकार कार्यक्रम सुनिए 9:30 और उद्घोषक के पसंद के फिल्मी गानों का कार्यक्रम छाया गीत प्रसारित किया जाता है 5:00 और 10:00। अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से और 12:05 पर सुनिएगा यादों की महफिल। सजाने के लिए चलेंगे विविध भारती मुंबई, पर फिलहाल चलते हैं दिल्ली केंद्र, सुनते हैं हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास

0: और विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुईं। इस दौरान लोक परीक्षा, अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, अधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधि संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई में बार बार बाधा आई। भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
1: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल MZP ने मिजोरम लोक सेवा आयोग में सुधारों की मांग को लेकर चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। संगठन के नेता ने बताया कि सरकार द्वारा आयोग में सुधार के लिए एक समिति गठित किए जाने के बाद ये आंदोलन समाप्त कर दिया गया। संगठन ने 6 अगस्त को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अपना आंदोलन शुरू किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्यवस्था के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। ये राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को दी जाएगी। ये वितरण जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
2: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। आज वे हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 124 अंक गिरकर 77,843 जबकि निफ्टी 78 अंक घटकर 24,358 पर था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। उधर महिला सिंगल्स में कोको गोफ और ईगा स्वियातेक ने फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के बोल, शिवहरी का संगीत चांदनी फिल्म के इस गीत में। आज है अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्मदिन और यादों के महफिल कार्यक्रम में आज उन्हीं के फिल्मों के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। सुनते हैं खुदा गवाह फिल्म से ये गीत।

खुदा गवाह फिल्म का ये गीत आपने सुना अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज अभिनेत्री श्रीदेवी के फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: लम्हे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहां से हुजूर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिनमें आज आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन।

0: चालबाज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: और आ रही हूँ।
1: गुलजार के शब्द आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज में। इलैयाराजा का संगीत सदमा फिल्म के इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, जिसमें आज अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: तोहफा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, इंदिवर के बोल, बप्पी लाहिरी का संगीत, और इससे ठीक पहले आपने सुना हिम्मत वाला फिल्म का गीत जिसमें आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी, इंदिवर के बोल बप्पी लाहिरी का संगीत।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में नागिन, माफ़ कीजिएगा, नगीना फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए सुनते हैं मिस्टर इंडिया फिल्म से ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ें, जावेद अख्तर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: हवा हवाई।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आप सभी हमसे जुड़ते हैं फेसबुक पेज के जरिए, और अगर आप अब तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो www.facebook.com/vbsmumbai इस पते पर जाकर आप हमें आपको मिल जाएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का फेसबुक पेज, और वहां आपको हर कार्यक्रम से संबंधित जानकारी भी मिलेगी। और आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि हर दिन हम एक इबारत आपके सामने रखते हैं और उनमें ही शब्द छुपे होते हैं जिनसे गीत सुनवाए जाते हैं कार्यक्रम में, और आज की इबारत है सरगम मन की धुन में बसने लगी है। फिर से, सरगम मन की धुन में बसने लगी है, गाता है मन मेरा तो बजती है सितार कहीं, डोलती है डालियां, सरसराती हवा छेड़ती है रागनी, गरजते हैं बादल जैसे दे रही हो ताल तबले पर, सुनकर उसे उतरती हैं अप्सरा सी बूंदें धरा पर, घुंघरुओं से थिरकती नाचती हैं हो मगन, झूमकर गाने लगती हैं नन्ही चिड़िया कहीं कोमल स्वरों में, सुना है कभी इनका गीत, मन में बसने लगा है प्रकृति का जीवन संगीत। तो इससे आपने अंदाजा लगाया है कि प्रकृति के जादू या प्रकृति के जो अलग अलग तरह से संगीत किस तरह से होता है, किस तरह से हम महसूस करते हैं, उसके विषय में आज हम बातें करने वाले हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कि प्रकृति के बीच आप कैसा महसूस करते हैं, या आपने कोई ऐसी प्राकृतिक यात्रा की हो जो आपका मन के भाव कुछ अलग रहे हों, मान लीजिए नकारात्मकता रही हो या कुछ उदासी रही हो, और ऐसे समय में जब आपने प्रकृति की यात्रा की हो और प्रकृति का प्रभाव आपके मन पर पड़ा हो, तो उन किस्सों को आप हमसे साझा कर सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि क्या कभी जलाशय जो होते हैं प्राकृतिक जलाशय, नदी, तालाब, झरने, ऐसे प्राकृतिक जल के संसाधनों का उपयोग आपने कभी किया है, वहाँ का पानी पिया हो, या वहाँ पैर ही बस थोड़ी देर डुबाकर अगर हम बैठ जाते हैं तो कितना सुकून मिलता है, कभी अगर हम वहाँ जाकर उस ठंडे ठंडे पानी में नहाते भी हैं, तो ऐसा कुछ अगर आपने किया है तो भी हमें बताइए। हमारे एक साथी कहते हैं कि प्रकृति स्वयं एक अद्भुत संगीतकार है, जब मन के सरगम जागती है तो हवाओं की सरसराहट रागिनी बन जाती है, डालियां लय में झूमने लगती हैं और बादलों की गर्जना में मानो तबले की थाप सुनाई देती है, फिर बारिश की बूंदें घुंघरुओं की तरह धरती पर उतरकर नृत्य करने लगती है, नन्ही चिड़िया की मधुर चहचहाट इस संगीत में अपनी कोमल तान जोड़ देती है। सच है, प्रकृति के सानिध्य में बिताया हर पल मन को शांति से भर देता है। तो आप इस शांति का उल्लेख हमसे कीजिए और हम तब तक आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म से हमने लिया।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे सरगम फिल्म का ये गीत, और आपने बिल्कुल सही जवाब हमें दिया। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब मनुष्य मानसिक तनाव और शोर से घिरा है, तब प्रकृति की ये संगीतमयता एक औषधि की तरह काम करती है। कुछ क्षण प्रकृति की गोद में बिताकर उसके इस मूक संगीत को सुनना हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करता है। आज प्रकृति को निहारने भी ये कहीं गए हुए हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये इबारत प्रकृति को केवल देखने नहीं बल्कि उसे सुनने महसूस करने का निमंत्रण देती है। प्रकृति जब गुनगुनाती है तो उसके हाथ में कोई वाद्य नहीं होता, फिर भी उसकी हर आहट में संगीत जन्म लेता है। हवा की सरसराहट, बादलों की थाप, बारिश की बूंदों की रुंझुन और दूर बैठी कोई चिड़िया कोमल स्वर में उस अनदेखे गीत की एक पंक्ति गुनगुना देती है और मन जाने कब उस अनसुनी धुन का हिस्सा बन जाता है। शायद सुकून भी यही है, जब बाहर प्रकृति अपना संगीत बजाती रहे और भीतर कोई खामोश सुर देर तक मुस्कुराता रहे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज का कार्यक्रम संगीतमय होने वाला है। हम देखते हैं हमारे आजू बाजू चारों ओर संगीत बसा है। शहरों के चकाचौंध में, वाहनों में, रेलगाड़ी में, लोगों की बातों में, यहाँ तक कि शोर में भी संगीत बसा है। संगीत हर चीज में विद्यमान है। अगर जंगल, पहाड़ों और शांत जगह की कल्पना करें तो फिर क्या कहने। हरियाली, पहाड़, नदी, पगडंडी सभी अपनी लय में है और संगीत का निर्माण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये दुनिया ही एक संगीत है, बस उसके साथ हमें एकाकार होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि सभी जगह का तो नहीं, लेकिन पहाड़ों पर जाने पर, खासकर दार्जिलिंग सिक्किम के पहाड़ों से पतली पतली झरने नुमा पानी आता रहता है, तो हमने उस पानी को पिया है और बेहद ठंडा और मुंह से निकला वाह। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के टेक्स्ट में स्वर्ग से लेकर धरती, प्रकृति और प्राकृत के जीवों से लेकर सुरों को भी शामिल किया गया है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि आपने प्रकृति का संगीत कभी महसूस किया है? उसके हर रंग संगीत में समाया हुआ है, जो अपनी थाप पर बजता है। उसका निर्देशन कभी हवा करती है तो कभी बादलों की गड़गड़ाहट उसे मीलों तक पहुंचा देती है। आजकल के सावन के मौसम में रात में झिंगुर की तान, मेढकों का लय ताल आवाज करना मन को भाता है, कानों को अच्छा भी लगता है। रात के सन्नाटे में पपीहे की बोली तो विरहिणियों के लिए जैसे जहर का प्याला लगता है, क्योंकि अभी प्रियतम दिवाली का वादा करके गया और ये पक्षी पी कहाँ बोलते बस बेचैनी बढ़ा रहा है। रही सही कसर झूमती पुरवाई भी निकाले, जिसने काले बादल घुमड़ कर आ रहे हैं और घर आंगन को तर कर दे रहे हैं। ऐसे में आधी रात में कड़कती बिजली तो जान ही निकाल देती है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गीत जीवन की बहार है और जब बारिश का मौसम हो तो चारों ओर झमझमा करके रागिनी की बहार आ जाती है। गीत नदी की धारा के समान है। संगीत कठिन वक्त के लिए औषधि की तरह है। कितना भी कठिन वक्त हो, संगीत मन और दिल के लिए राहत की तरह है। तो ऐसी ही एक राहत, यानी ऐसा ही गीत आपके पास पहुंचा रहे हैं। हमें बताइए कि इस गीत में आवाज किसकी है और फिल्म का नाम क्या है। और हाँ, ये भी बताते रहिए कि क्या आपने प्राकृतिक जलाशयों में कभी कुछ नहाने नहाने या फिर पानी पीने या सिर्फ पैर डुबाकर उस पर जल को महसूस करने का कोई काम किया है? किया है तो वो किससे हमसे बताइए। और कौन से प्राकृतिक जगहों की आपने यात्रा की है जब आपके मन को ऐसा लगा कि यहाँ से वापस जाना ही नहीं है?

लड़की फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाज़ें। और हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में खेतों में बहुत ही घूमे हैं, खूब हरियाली होती थी, नहरों का पानी पिया है, तालाब में बहुत नहाए हैं। तो हम ये कहेंगे कि आपको प्रकृति का बड़ा ही सुकूनदायक एक साथ मिला है हमेशा। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गीत का बता रहे, संगीत के बगैर जीवन अधूरा लगता है। बच्चों के रोने हंसने बात करने समय हवा से सरसराते पेड़ पत्तों की आवाज़, गाय भैंस के रंभाने में भी कुछ संगीत का पुट होता है। जब कभी मन बहुत उदास हो, किसी भी काम में मन ना लगे, तो खूबसूरत गीत सुनने से मन हल्का महसूस करने लगता है। संगीत सुनते रहने से अनेक रोग भी कम होते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, संगीत से तो कई रोगों का इलाज भी होता है। संगीत पद्धति भी इसके लिए काम आती है। हमारे एक साथी कह रहे हैं, हमें तो प्रकृति के साथ रहना बड़ा ही अच्छा लगता है। यदि हमें काम ना हो तो हम बस प्रकृति के साथ रहना चाहेंगे, पर हम घर में रहकर ही इसका अनुभव कर लेते हैं। वो ऐसे कि पक्षियों की आवाज़ों में भी संगीत और पत्तियों पर पड़ती बारिश की बूंदों में भी अद्भुत संगीत महसूस किया है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न सुरताल का अद्भुत संगम है। आज ऊंचे ऊंचे घने जंगलों और ऊंचे पर्वत से पहाड़ों को चीरती हुई झरनों का अद्भुत शोर और संगीत पूरे प्रकृति से लोगों के मन मोह लेती है। और हरे हरे पेड़ों और उसकी शाखाओं से बारिश की बूंदें प्रकृति के सौंदर्य को अलग से खुशनुमा बना देती है। पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो थपथपाहट से एक तालबद्ध संगीत सुनाई देता है। एक हल्की सी नरम आवाज पैदा होती है जिससे पक्षी भी शांत हो जाते हैं। बस पानी के बरसने का प्राकृतिक शोर ही सुनाई देता है। छोटे छोटे तालाबों में पानी की बूंदें गिरने से एक तालाबों में गोल घेरे बनते हैं, तो अजीब तरह का एक संगीत इससे उत्पन्न होता है। वहीं हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि प्रकृति का संगीत शब्दों का मोहताज नहीं होता, सीधे दिल से बात करता है। सुबह की पहली किरण के साथ चिड़ियों की चहचहाट जैसे कोई राग अलापती है, पत्तों की सरसराहट में बांसुरी की तान सुनाई देती है और

बहती नदी की कलकल में तबले की थाप, बारिश की बूंदें जब छत और मिट्टी पर गिरती है तो लगता है धरती खुद कोई करुण गीत गा रही है, जिसमें खुशी भी है और विरह भी। जंगल की गहरी रात में झिंगरों की झंकार और हवा का सन्नाटा मिलकर ऐसा सन्नाटा रचते हैं जो सबसे ऊंचा संगीत बन जाता है। ये संगीत ना किसी सभा में बजता है, ना किसी स्टेज पर जहां हम रुक कर सुने। जिस दिन हम सच में सुन लेते हैं, उस दिन समझ आता है कि प्रकृति हमें हर पल बिना मांगे सुकून का सबसे पुराना राग अलाप रही है। तो ऐसी बहुत सी बातें हमारे साथी कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक स्थान पर अगर आप जाते हैं तो कुछ देर अगर आप शांति से वहाँ रुकते हैं तो इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं कि आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। हालांकि जब हम किसी प्राकृतिक जगह पर जाते हैं तो अपने अंदर इतना शोर भर कर ले जाते हैं कि उसकी खूबसूरती देखकर ही कभी कभी हमारे मुंह से कुछ बातें निकल जाती हैं, कभी हम बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचने के चक्कर में रह जाते हैं और उसका आनंद नहीं ले पाते। तो फ़ोटोज़ भी लीजिए यादों के लिए, लेकिन कुछ देर शांति से बैठकर उस वक्त को महसूस कीजिए। कुछ ऐसी ही बात कर रहा है ये गीत, हमें बताइए आवाज़ किसकी है और फिल्म का नाम।

मिशन कश्मीर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें बिल्कुल सही पहचाना हमारे सभी साथियों ने। और हमारे एक साथी बता रहे हैं कि आज मैं महाराष्ट्र के हरिहरेश्वर की बातें बताती हूँ। वहाँ हम लोगों को सुकून देता पल मिला। रात में समुद्र इतना शोर मचा रहा था कि मन वहीं रहने को कह रहा था और दिन में गजब का समा था। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि शिमला उन्हें बहुत पसंद है क्योंकि वो उनका नेटिव प्लेस है और वहाँ की प्रकृति उन्हें बहुत अच्छी लगती है। अगर वो खिड़की खोलकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बादल ही कमरे के अंदर आ जाएंगे और साथ में ठंडी हवा के झोंके। और रात में बारिश की जो बूंदें होती है वो छत की जो टीन की छतें होती हैं उस पर धीरे धीरे जब बरसती हैं तो एक अलग ही अनुभव देती हैं। वहाँ की लाइफ ही अलग ही पीसफुल है, ऐसा इनका कहना है। वहीं मारिक साथी ने एक दूसरी बात बताई। वो कह रहे हैं कि गंगटोक की वो रात घनघोर बारिश रात भर हो रही थी और सुबह सुबह फ़ोन आया कि उनके भाई सीरियस हैं, आईसीयू में हैं, तो मन सन्न रह गया। आनंद फानन में हवाई टिकट करके पहले दिल्ली और फिर दिल्ली से भुवनेश्वर और वहाँ से सड़क मार्ग से आगे जब गए तो हाथ पाँव जोड़कर सबको अलग अलग, क्योंकि भूस्खलन से जाम था तो किसी तरह से वो आगे बढ़े। और बेटी ने एयरपोर्ट से फ़ोन करके मेडिकल इमरजेंसी वजह करके बोर्डिंग पास की सुविधाएं करवा दी थी और आधे घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे। शाम तक वो अस्पताल पहुंचे, भाई तो ठीक हो गए, लेकिन इस प्राकृतिक प्रकोप के बारे में जो ये जो अनुभव था वो उन्हें अब तक याद है। वहीं हमारे एक साथी ने बताया कि कनाडा के नाइग्रा फॉल में वो प्रकृति का अनुभव जो उन्होंने किया, समझ नहीं आ रहा उसे कैसे बयां करें क्योंकि ऐसा अद्भुत नज़ारा हमने पहले कभी नहीं देखा था। पानी की बूंदें, हवा के रुझान, नाव में बैठे हम, वो लहरें, वो इंद्रधनुष के रंग जब पानी पर पड़ रहे थे और जो झरने बह रहे थे हवा के साथ, उनका संगीत इतना मधुर, इतना सुंदर नजारा हमने देखकर कुछ देर अपनी आंखें बंद कर ली ताकि बाद में उसे महसूस कर सकें। आंखें भी चलक पड़ी खुशी के मारे। वाकई जब प्रकृति के साथ हम एकाकार हो जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं उसमें, तो आंखों से आंसू बहना वो इतना भाव ज्यादा हो जाता है, कहते हैं भाव विवल हो जाते हैं और खुशी के मारे जो आंसू आते हैं ना वो एक अंदर से आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो ज़रूर महसूस करना चाहिए। जल्द ही वो महसूस नहीं होता, कभी कभी अचानक से ऐसा लगता है कि प्रकृति के साथ जुड़ाव हो गया। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि नदी नाले, नर्मदा नदी से पचमढ़ी तक सुंदर झरने, मन को लगे हरने, दार्जिलिंग की यादें ताज़ा हुई। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हेलो फरमाइश में उनका कॉल लग गया है, आज शाम वो सुन सकते हैं सभी साथी, ऐसा उनका कहना, हम उन्हें बधाई देते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सह्याद्री और हिमालय में जब भी गिर्यारोहण को जाता हूँ हमेशा झरनों का ही पानी पीता हूँ, संग साथियों को भी इसका महत्व समझाता हूँ। बिल्कुल सही बात है कि इस तरह से झरनों और झीलों को जब हम जाते हैं, प्राकृतिक स्थानों का पानी इतना शुद्ध होता है कि आप उसे जब महसूस करते हैं तो बड़ा ही अनोखा वो अनुभव होता है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि प्रकृति में जो संगीत व्याप्त है उसे नाद ब्रह्म या ईश्वरीय वाणी कहा जाता है। प्रकृति के अलग अलग तत्वों में सजीव संगीत को महसूस किया जाता है। नदियों में बहता कलकल करता जल और झरनों से नीचे गिरता जल तरंग तो कभी वीणा के तारों से छेड़ी सरगम सुनाता प्रतीत होता है। सनसन करती हवाएं जब पेड़ों के पत्तों से गुजरती हैं तो कभी बांसुरी या शहनाई की सुर लहरियां छिड़ती हुई सुनाई देती हैं। बारिश की बूंदों में घुंघरू और पायले के रुनझुन के स्वर सुनाई देते हैं। सभी प्रकृति में समाहित होते ऐसे सुर और ताल हैं जो प्रकृति के नाद सौंदर्य को पारिभाषित करते हैं। और आपने भी बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी इस बात को अलग अलग तरह के शब्दों के साथ पिरोया है, तो अब तो मन कर रहा है कि क्यों ना एक गीत सुना जाए। और आपको ये बताना है कि इसे लिखा किसने है और फिल्म का नाम।

लता मंगेशकर की आवाज़ में हनीमून फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम बहुत पहले नैनीताल गए थे, वहाँ के झील में नाव से सैर करने गए थे। उस पानी में पैर डुबोकर मज़ा लिया, लेकिन हमारे केवट ने ऐसा करने से मना किया क्योंकि वहाँ मगरमच्छ का खतरा था। हाँ, तो ये बातें जानना भी बहुत ज़रूरी है कि किस जगह पर आप पानी में पैर डाल सकते हैं या नहा सकते हैं, क्योंकि बहुत से जीव जंतु वहाँ वास करते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक बेहद खूबसूरत प्रकृति के बीच बसा है, जिसकी यात्रा हमेशा याद रहेगी। ऊंचे विशाल वृक्षों से घिरे रास्ते, चारों ओर फैली हरियाली, कल कल बहते झरने और शाम को नर्मदा जी की आरती मन में एक अनोखा सुकून और शांति भर देती है। ऐसा लगता है बस वहीं के होके रह जाएं। हमारे एक और साथी ने एक बात कही कि प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगहों पर आजकल लोग ज्यादा जाने लगे हैं, इससे उन जगहों के प्रारूप में विक्षेप आता है। लोग अक्सर उन जगहों को प्रदूषित करते हैं। भाई, ये जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी किसी जगह पर हम जाते हैं, हमें वहाँ जाकर इतना अच्छा लगता है मिलकर, वहाँ जाकर लोगों से मिलकर, लेकिन जो प्रकृति के साथ सानिध्य हमारा होता है, लेकिन फिर आते आते वो जो कचरे हम वहाँ छोड़ आते हैं, वो इस हमारे बाद जो लोग आएंगे वहाँ देखने, उन्हें कितना बुरा लगेगा। या हो सकता है उन्हें लगे कि वहाँ कचरे ही डाले जाते हैं उस जगह पर, और हमारा देखा देखी वो एक तरह से वो काम बन जाए और सब लोग वही करने लगे। तो इससे अच्छा है कि आप साफ सफाई रखें, जिस तरह की सफाई पर आप जाते हैं उसी तरह से उसे ध्यान रखें। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि सरगम पर सब थिरकने वाले हैं। हमने सुना है चिड़ियों का चहचहाना, उसे महसूस भी किया है, उसकी बातों को समझने की कोशिश भी की है, थोड़ा असफल रहे। कभी कभी इस दिल ने उनकी बातें समझी। आपको पता है, कभी कभी यूं भी लगा मानो कह रही हो कि इन पेड़ों को मत काटो ना, हमारा यहाँ बसेरा है। हमने कई बार छोटी चिड़िया को दाना भी खिलाया है। सुबह सुबह इनका चहचहाना बहुत प्यारा लगता है। हालांकि चिड़िया क्या कह रही है वो तो चिड़िया ही जानती है। और हमारे साथी कह रहे हैं कि संगीत सात सुरों में बंधा नहीं होता, अगर महसूस करें तो दैनिक जीवन में संगीत ही संगीत भरा है। कोयल की कूक, पानी की कलकल से लेकर हवा के सरसराहट तक, हर जगह संगीत ही तो है। आवश्यकता है इसे अनुभव अनुभूत करने की, और प्रकृति का अनुपम वरदान है संगीत। यहाँ अनादिकाल से विद्यमान है संगीत के आदि स्रोत। भगवान शंकर माने गए, उनके डमरू और श्री कृष्ण की बांसुरी में संगीत के सुर निकले हैं। माँ सरस्वती के कर कमलों में वीणा की उपस्थिति संगीत की महानता की कहानी कह जाती है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि इस तरह से संगीत हमारे कण कण में बसा हुआ है और देवी देवताओं के साथ भी उसे जोड़ा गया है। हमारे एक साथी एक किस्सा लिख भेजे हैं, जो आज ही का एक किस्सा वो कह रहे हैं, छोटी गिलहरी की कहानी। लेकिन उससे पहले, जब संगीत के कण कण में होने की बात हमारे साथियों ने कही तो ये गीत हमें याद आता है। बताइए कि इसमें आवाज किसकी है और फिल्म कौन सी है।

सपने फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। हिमासर देसाई और मलेशिया की आवाज़ उम्मीद, जावेद अख्तर ने इसे लिखा, ए आर रहमान का संगीत। और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी बहुत सी बातें हम तक भेज रहे हैं, लेकिन हमने कहा था कि एक गिलहरी की बात जो हमारे साथी ने भेजी, वो कह रहे हैं कि आज इबारत पढ़कर कुछ शब्दों से सजी गीत सोच रहा था कि अचानक छत के मुंडेर पर एक नन्ही सी गिलहरी आई, डरी सहमी सी, कभी नजर आती तो कभी छिप जाती। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाह रही। तभी मन में विचार आया कि हो सकता है, देखिए ये तो बातें इन्होंने बनाई हैं कि गीतों के बारे में बताने आई है, लेकिन ख्याल आया कि इस ननी गिलहरी को कुछ नाश्ता पानी करवाया जाए। तो तूने नीचे गया, चने बिस्किट लाया, बारीक चूरा करके वहां रख दिया। तो फिर क्या, कुछ ही सेकेंड्स में नन्ही गिलहरी आई तो आई, साथ में बहुत सी गिलहरियां आ गई, नाश्ता पानी करने लगी। देखते ही देखते हमारे छत पर गिलहरी कबूतर चिड़ियों का मेला सा लग गया। छत पे खूब रौनक हो गई, गिलहरी और पक्षियों के साथ साथ मेरा मन भी खुश हो गया, जैसे पल भर में कई सारे दोस्त मिल गए। तो सच मानिए आज का दिन बन गया, मन आनंदित होकर खुशी से नाचने लगा। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति का संगीत और जीवन संगीत एक दूसरों का पूरक है। जी हाँ, प्रकृति की हर ध्वनि इंसानी जीवन के सुख दुख और धड़कनों के साथ मिलकर एक संपूर्ण राग बन जाती है। जैसे कि सागर में लहरें उठती हैं, आशा का ज्वार है, हवाओं की सरसराहट मन की पुकार है, बिजली की कौंध ऊर्जा और क्षणभंगुरता का एहसास है, तो भोर का शांत मौन कोयल की कूक, पपीहे की तान चैतन्यता का तराना है, नई कलियों का खिलना जीवन का मुस्कुराना है। सृष्टि और जीवन दो ऐसे अनंत स्वर हैं जो विश्वव्यापी एक ही सितार पर बिना रुके एक साथ बज रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने प्रकृति के संगीत को मानव के संगीत के साथ या मानव के जीवन के साथ पिरोया। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गाने जैसे भी इबारत तो अच्छी लगी, पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे सितार के सरगम पर जो रागिनी बज रही है तो मेरा मन डोल रहा है, जैसे मैं बूंदों के घुंघरू बांधकर कहीं दूर वन में पहाड़ी पर नृत्य कर रही हूँ। हाँ, मैंने सुना प्रकृति का गीत हर दिन हर क्षण। हमारे एक और

साथी हैं वो कहते हैं कि पहाड़ों पर घूमने की याद पुरानी है। 1982 में एक बिजनेस टूर में मसूरी जाने और घूमने का कार्यक्रम बना। मॉल रोड पर होटल में रात्रि निवास के बाद काफी मेंबर कैंपटी फॉल देखने निकला। एक साथ कई गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचा। जब झरने में नहाने वालों का कितना लुभावना दृश्य था वर्णन नहीं कर सकते। नहाते लोगों की फोटोग्राफी का शौक चरम पर था, इसमें महिलाओं की कोई हिचकिचाहट नहीं दिखी। हमारे सभी साथियों ने भी नहाने का लुत्फ उठाया, फोटोग्राफी भी हुई और फिर दोपहर बाद जब सब होटल लौटे तो VCR पर फिल्म देखी गई सौतन। ये फिल्म कुछ समय पहले ही रिलीज हुई थी, तब आज की तरह नहीं था कि फिल्में लोग VCR पर देख सकते थे तब, या दूरदर्शन के लाइव प्रसारण पर हफ्ते भर बाद फिल्म आती थी। वहीं हमारे एक साथी ने अपनी नैनीताल की ट्रिप याद की और कहा कि वहां की झील में नाव से सैर करने गए थे, उस पानी में पैर डुबोकर मजा लिया और मगरमच्छ की बातें इन्हीं की हमने पढ़ी थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं अलग अलग बातें, हमारे साथी कह रहे हैं अपने संगीत की, एक और हमारे साथी कह रहे हैं कि मनाली में प्रकृति का अद्भुत नजारा देखा, वहां जो पानी था उसका क्या कहना, इतना मीठा पानी तो कहीं का नहीं हो सकता है, ऐसा लगता था मानो गंगा मैया खुद आकर अपनी खूबसूरती बिखेर रही है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से जब प्रकृति के साथ आप जाते हैं और प्रकृति से आप मिलते हैं तो आपको ऐसा महसूस तो होता ही है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कन्याकुमारी के अंतिम शोर पर तीन समुद्रों का संगम, दुबई के समुद्र किनारे के होटल में रहकर समुद्री सुंदरता का अनुभव करना, अमेरिका में न्यूजर्सी का अंतिम शोर के समुद्र का आनंद, नायग्रा फॉल का सौंदर्य, थाईलैंड का समुद्र और चारधाम यात्रा में सबसे सुंदर उत्तराखंड का आध्यात्मिक वातावरण में आत्मिक शांति का अनुभव जिंदगी भर याद रहेगा। तो आपके साथ प्रकृति से जुड़ी बहुत सी यादें हैं, लेकिन हम यहाँ आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आपको बताना है कि आवाज किसकी है और फिल्म का नाम।

दो दुनी चार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, और आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे साथी कह रहे हैं कि सरगम की बात चली है और हम सब श्रोता संगीत के दीवाने हैं, इसलिए हिंदी फिल्मों के दो बेजोड़ कलाकारों की याद आ रही है। एक तो दिलीप कुमार साहब, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर सितार बजाते हुए सितार पर सही हाथ चले और देखने वालों को वास्तविक रूप में सितार बजा रहे हैं ऐसा दिखे, इसलिए कई माह तक सितार बजाना सीखा। दूसरे कलाकार हैं ऋषि कपूर, जो सरगम फिल्म में डफली बजाते हैं, और इस फिल्म में डफली पर उनकी चलती हुई उंगलियां संगीत और लय के साथ जो चलती हैं वो देखते ही बनता है। दोनों कलाकारों की मेहनत का जवाब नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रकृति में ही सरगम है, इस धरा में संगीत हवाओं में गरजते बरसते बादलों में टपकती बूंदों में रिमझिम बारिशों की फुहारों में कल कल बहते झरने में और चिड़िया की चहचहाहट में हर प्रकार का सुकून भरा संगीत मन मोह लेता है। प्रकृति के संगीत सुनने के लिए बस थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि ये समय समय सुनाई देने वाली धुन है। भोपाल में अच्छी बारिश होने लगी है। होशंगाबाद और भोपाल के बीच बुधनी के जंगलों में इस सीजन में खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हरियाली, बहते झरने और पहाड़ों पर उड़ते हुए बादल, बरसते पानी में मनमोहक दृश्य इस इबारत को बयां कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हमारे साथी कह रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संगीत और प्रकृति दोनों ही जीवन में संयम और शांति लाने में मदद करते हैं, तो आपको कब ऐसा अनुभव हुआ कि आपके जीवन में शांति लाने में प्रकृति का संगीत मदद कर रहा है, ये हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो किस फिल्म का है, किसकी आवाज़ में है, और क्या आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ।

0: बेटा।
1: मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि इन दिनों कश्मीर के अनेकों शीतल जल स्रोतों के दर्शन करने का, शीतल जल को छूने का और डुबकी लगाने का मौका मुझे और मेरी धर्मपत्नी को मिला है। भाई देखिए, जल की बहुत बातें हो गई कि अलग अलग जलाशयों में आप गए, पानी में पैर डाला, पानी की आवाज़ें सुनी, बूंदों की आवाज़ें सुनी, लेकिन क्या कभी घने जंगलों के बीच गए हैं? तो घने जंगलों का भी तो कुछ बताइए, कहीं ऐसी जगह पर गए हों जहाँ आपको जीव जंतु देखने मिले हों, शेर चीते बाघ, ऐसे कुछ दर्शन हुए हों, या आपको दर्शन हुए हों नाग देवता के, क्योंकि सावन का मौसम चल रहा है और सावन बहुत सी जगहों पर आ गया। हमारे बहुत से साथियों ने बताया है कि अब गुजरात और दक्षिण भारत के बहुत से भागों में भी सावन अब आ गया है, तो इसकी शुभकामनाएं भी सब दे रहे हैं। और झूले की बात भी इस गीत में हुई, तो ये बताइए कि झूलों का किस तरह से आप आनंद लेते हैं, और अब आपको कार्यक्रम के अगले गीत का आनंद दिलवाते हैं, और आपको ये बताना है किस फिल्म का गीत है और किसकी आवाज़ में।

लाजवंती फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर और दिल को सुकून देने वाली इबारत है, जब प्रकृति की सुंदर छटाओं के बीच मधुर संगीत गूंजने लगे तो कितना ही बेचैन मन क्यों ना हो, कुछ पलों के लिए तो सुकून मिल ही जाता है। प्रकृति और संगीत दोनों ही हमें गहरी शांति की ओर ले जाते हैं, तो आज के समय में बहुत कम लोगों को जो मिल पाती है ये शांति। सुंदर प्रकृतिक छटा के बीच मधुर संगीत की धुन न केवल मनुष्य को बल्कि पशु पक्षियों को भी भाव कर देती है। बस ही मोर नाचने लगते हैं, चिड़िया चहकने लगती है, ऐसे में भला हमारा मन मयूर क्यों ना नाचेगा। ऐसे में याद आ रहा है इन्हें मेरी सूरत तेरी आंखें का, नाचे मन मोरा मगन तीगदा दीकी दीकी, जो गीत हमने सुनवा दिया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे छत के ऊपर

पर कभी कभी गिलहरी आती है तो आवाज लगाती है, उसकी आवाज सुनकर बचपन याद आ जाता है। मैं चूकता नहीं, गिलहरी के वीडियो जरूर बनाता हूँ। एक और साथी कह रही कि पार्क में अचानक बहुत सारे कौवे बोलने लगे तो ध्यान गया कि बंदर महाशय उनके घोंसलों को कुछ कर रहे थे और कौवे ने चोंच मारकर उसे हटाने लगे, तो किसी ने कुछ खाने के लिए दिया तो बंदर वहां से दूर चला गया, लेकिन कौवे ने फिर भी उन्हें चोंच से मारते रहे और दोनों बंदर वहां से दुम दबाकर भाग गए, क्योंकि कौओं का जो इस तरह से एक साथ होना इन्हें बहुत अच्छा लगा। आजकल लोगों के घूमने का स्वभाव में काफ़ी बदलाव हुआ है। महानगरों कार्य व्यस्तताओं से आजीज होकर अक्सर प्रकृति के गोद में जंगल कैंप, ट्रैकिंग, इको विलेज को प्राथमिकता देते हैं। ज़्यादातर कॉरपोरेट जगत की मीटिंग में इसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। हमारे एक साथी ने बताया कि सपरिवार हिमाचल की सैर की, जिसमें प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से रूबरू कराया। शिमला में आसमान से गिरती बर्फ जो सड़क तक जमी थी और ऊपर से बारिश भी, वहीं मनाली की हरी भरी वादियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के जंगल और तेज ठंडी हवाओं ने मन मोह लिया। हमारे एक और साथी कह रहे, कुछ दिन पहले उदास थी, आंखों में बस आंसू छलकने वाले थे कि रात की बची रोटी लेकर छत पर चले गए। रोज सुबह कबूतर और चिड़ियों को दाना डालते हैं, दूसरी बार गए अपना गम बांटने। सच में एक एक करके पानी पीते देखकर हमारे आंसू नहीं छलके बल्कि होंठों पर मुस्कान आ गई। हमारे एक और साथी कह रहे कि बिहार के बहुत सारे जंगलों में मैं गई हूँ, घने जंगलों में भीतर जाने पर बहुत अच्छा महसूस नहीं हुआ क्योंकि बेहद उमस और गर्मी थी। जंगलों में जीव जंतुओं में मुझे छोटे छोटे ब्राउन वाले खरगोश दिखाई दिए और अजगर के बच्चे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं आजकल बर्लिन अपनी बेटी के यहाँ आई हुई हूँ, घर से ही सुरीला सफर सुन रही हूँ। यहाँ मौसम बहुत सुहावना है, गर्मी तो बिल्कुल नहीं है इस समय, और यहाँ सुबह का 10:15 का समय हुआ है। और हम अपने साथियों से ये कहना चाहते हैं, जो घने जंगलों की बात हो रही थी, ऐसा ही एक ऐसी कविता हमें पढ़ाई जाती थी, अगर आपको भी पढ़ने के लिए मिली हो, उस जगह का हम नाम नहीं बता रहे हैं, और उस किसी एक खास जगह का नाम कहकर उसके घने जंगल, ऐसी वो कविता थी। अगर आपको याद आ रही हो तो हमें बताइए, और ना याद आ रही हो तो हमें ये बताइए कि जो गीत हम सुनवा रहे हैं वो कौन सी फिल्म का है, किसकी आवाज़ में।

कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।

0: मुखड़े होए होए जरा मुखड़े से घुंघटा हटा दे तो फिर मेरी चाल देख ले मोहे लाले जुनर मोहे लाले जुनरिया
1: संघर्ष फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और हमने जिस कविता का जिक्र किया था वो सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी कविता, जिसको भी आपने बिल्कुल सही पहचाना। और इसके साथ ही आज का सुरीला सफ़र कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफ़र जारी रहेगा।

सरमा आका की आवाज़ में सुनिए निकाह फिल्म का ये गीत। हसन कमाल के लिखे गीत की धुन बनाई है रवि ने।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का दृढ़ संकल्प, लगन और साहस रखता है, वह जीवन की चुनौतियों से कभी पराजित नहीं होता। संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है और धैर्य आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। भोपाल स्थित विधानसभा भवन में आज और कल संसद यूथ पार्लियामेंट के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से छात्र, युवा, पेशेवर और उभरते नेता शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में युवाओं को संसदीय माहौल में नीतिगत और विधायी मुद्दों पर बहस का मौका दिया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में भारत के बढ़ते नैरेटिव संकट पर चर्चा हो रही है, वहीं कल यानी दूसरे दिन समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पर बहस और संसदीय प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा,
2: मध्यप्रदेश के अंदर आज 12 से अधिक राज्य, 52 से अधिक युवाओं ने इस पूरे आयोजन में हिस्सा लिया। परसों हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और उसके पहले विधानसभा का यह हाल मिनी इंडिया बन गया। देश के युवाओं को लोकतंत्र, नीति निर्माण से जोड़ने की वास्तव में अनुकरणीय पहल। आमतौर पर सदन के अंदर नीतियां बनाने के समय गंभीर चर्चाएं होती, विचार विमर्श होते हैं, अपने अपने विषय का प्रवर्तन होता है। जिस प्रकार से आपने

0: परिवार की ये उसकी अच्छी झलक है।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज भोपाल के बड़े तालाब में विशाल नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में यात्रा बोट क्लब से शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों नावें तिरंगे के साथ शामिल हुई। यात्रा में हजारों नागरिकों, युवाओं, खिलाड़ियों और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में नावों की विशेष फॉर्मेशन से तालाब के बीच विशाल फ्लोटिंग तिरंगा भी बनाया गया। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत दमोह के तहसील ग्राउंड से निकली तिरंगा यात्रा में राज्य मंत्री लखन पटेल, विधायक जयंत मलैया सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। वहीं मैहर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ और आगरमालवा में आयोजित तिरंगा यात्राओं में हिस्सा लेकर लोगों ने देशभक्ति का संदेश दिया। प्रदेश में 15 अगस्त को लाल परेड मैदान पर होने वाले पदक अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुलिस और होमगार्ड के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक देकर सम्मानित करेंगे। पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति के 9 विशिष्ट सेवा पदक और 33 सराहनीय सेवा पदक दिए जाएंगे। वहीं होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के 3 कर्मचारियों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में 2 सर्वोत्कृष्ट जीवन रक्षा पदक भी दिए जाएंगे, जिसमें स्वर्गीय मनोहर सिंह चौहान को मरणोपरांत और राजेंद्र प्रसाद मिश्रा को पदक मिलेगा। प्रदेश सरकार को कल अहमदाबाद में हुए मेगा निवेश संवाद में 8635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि इन प्रस्तावों से प्रदेश में करीब 6000 से ज्यादा रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर और वडोदरा समेत कई शहरों के 500 से ज्यादा उद्योगपति और निवेशक शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को मध्य प्रदेश में बिजली, पानी, जमीन और बेहतर कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। प्रदेश सरकार ने उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को गति देने के लिए सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का गठन कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उज्जैन विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। इस प्राधिकरण का गठन मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम 1955 के तहत किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और मानकों के विपरीत खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए भोपाल में देर रात से आज तड़के तक जांच अभियान चलाया, जिसके तहत डेयरियों और खाद्य प्रतिष्ठानों से करीब 275 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया गया, जिसकी कीमत 1,10,000 रुपये बताई गई है। टीम ने पनीर के नमूने जाँच के लिए लैब में भेज दिए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ता संपर्क अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें दूरसंचार और प्रसारण में शुल्क निर्धारण तथा बिलिंग व्यवस्था विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। धार जिले में इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर ग्राम उटावत पीपलखेड़ा के पास बच्चों से भरी स्कूल बस और यात्री बस की भिड़ंत में 16 लोग घायल हो गए। और सतना जिले में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक 2 माह का सघन जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित

0: की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions, and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions, and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
1: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
3: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी सदन में सालों से यहाँ हूँ और मिथिला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
1: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
4: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
5: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी, ये लोग नरेंद्र मोदी सरकार को सिखाने का जरूरत नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार 12 साल से देश के हित के लिए हम काम किया है।
1: चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुघ ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाईवी सुब्बारेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को

0: प्रभावित किया।
1: अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
2: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
3: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
4: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पर एफआईआर करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
6: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है, जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो, हस्तो कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
0: गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने

0: आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रियेजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मानसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नक्मे।

मोहम्मद रफी की आवाज में सूरज फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में वैजयंती माला अभिनीत फिल्मों से गीत।

0: गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता।

0: सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
0: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और इस कार्यक्रम में आज वैजंती माला अभिनीत फिल्मों से गीत।

संगम फिल्म का ये गीत मुकेश और साथी की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आम्रपाली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शैलेंद्र के बोल तर्ज शंकर जयकिशन की।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी

0: यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा हुजूर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नक्मे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज़ में आप सुन रहे थे प्रिंस फिल्म का ये गीत, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत, फिल्म मधुमती।

आवाज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: कुभी हमारा नमस्कार।
1: ममता जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार।
0: क्या हाल है?
1: बेहाल तो ठीक है।
0: आज हमने देखा आपको कि एक तो सजीव प्रसारण में आप लगातार बोल रही थी,
1: जी
0: और उसके पहले मैंने देखा कि हाथ में कुछ क्रोशिया का बिनाई भी कर रही थी और साथ में अखबार के बंडल भी लिए हुए थी, पढ़ रही
1: जी
0: थी। तो ये काम के साथ साथ एक साथ इतने सारे शौक निभा लेती हैं?
1: वो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि देखिए, काम तो करना ही है ममता जी, लेकिन साथ में अगर कुछ ऐसे काम कर लिए जाएं जिससे मन बड़ा प्रसन्न रहे तो अच्छा लगता है। शौक
0: बिल्कुल
1: हमारे ये अच्छे रहते हैं ऐसे
0: हाँ,
1: काम
0: और
1: के।
0: ये शौक बचपन से डेवलप होना चाहिए।
1: जी
0: अगर बच्चों में, छोटा बच्चा नहीं जानता कि उसको क्या शौक है, लेकिन माता पिता देखते हैं। मेरा तो ये कहना है कि मेरा जो निजी अनुभव और निजी सोच है, वहाँ
1: जी
0: ये बताना चाहती हूँ कि अभी माता पिता और परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर की ओर उन्मुख करना चाहिए, क्योंकि
1: जी
0: जब वो बड़े हो जाते हैं, नौकरी पेशा करने लगते हैं, और जाहिर सी बात है कि आपके पास दोहरी तेरी जिम्मेदारियां हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर फील होता है आपको
1: जी
0: और कहीं ना कहीं तनाव महसूस होता है। तो ऐसे में अगर आपके काम के साथ कोई अलग भी शौक है, हुनर है, तो आप उसमें अपने को डाइवर्ट करके खुश रह सकते हैं। मान लीजिए हम दफ्तर में, हम या आप सभी दफ्तर में 8 घंटे 9 घंटे काम करते हैं, और अभी
1: जी
0: तो बहुत सारे कंपनियों में, बहुत सारी जगहों पे 12 12 14 14 घंटे काम होते हैं। तो उतना इतना काम करने के बाद एक ऐसा समय होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए खुद के लिए, जहां पर आप अपने मन का करें, अपने शौक पूरे करें।
1: बिल्कुल। और जैसे कि ये कह सकते हैं, इन दिनों तो क्योंकि ज़्यादातर काम तो स्क्रीन के थ्रू ही होते हैं, आप कंप्यूटर देख रहे हैं, आप फ़ोन देख रहे हैं, कुछ भी। अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर और फ़ोन से जुड़े रहना पड़ता है पढ़ाई के लिए भी। तो ऐसे समय में जब हम अपने किसी शौक की तरफ जाते हैं तो कुछ देर उससे भी दूर हो जाते हैं। तो क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन या ऐसा हम जब स्क्रीन देखते रहते हैं तो हमारा दिमाग थोड़े अलग तरह से चलता है, और जब हम अपने शौक की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे शांत भी हो जाते हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी गतिविधियां हमारे मन में होती हैं, भावनाएं अच्छी आती
0: और
1: हैं।
0: कई नकारात्मक बातें जब होती हैं कहीं इर्द गिर्द, तो वो आप भूल जाते हैं।
1: जी
0: तो इसलिए आप अपने कामकाज के साथ साथ कोई ना कोई शौक जरूर पालिए, और वो कहते हैं शौक का नशा होना चाहिए। तो हमने तो इतनी सारी बातें कह दी, लेकिन हमारे श्रोता क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ कहना है, जो एक सेगमेंट है उसके अंतर्गत हमें इंतजार है कि हमारे श्रोता अपने अनुभव साझे कि वो अपने काम के साथ किस तरह के शौक पालते हैं। कि पढ़ाई लिखाई का शौक है उन्हें,
1: जी
0: पिक्चर देखने का, घूमने का, या फिर कुछ बिनाई कढ़ाई का शौक है, पेंटिंग का शौक है, चित्रकारी का शौक है, तो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता।
1: बिल्कुल। और इसके साथ ही आज हम लोग कुछ विषय और भी लिए आए हैं उनके लिए, जैसे आज विश्व अंगदान दिवस है तो इस पर बातें होंगी। और कहानी पद्मश्री की में आज हम लेने वाले हैं पेट्रिशिया मुखीम की बातें, समाज
0: जी
1: सेवा से वो जुड़ी हैं।
0: और कई बार ये तो शौक की बातें हमने की
1: जी
0: जहाँ पर आप खुश हो लेते हैं, लेकिन कई ऐसे दुखद जगह, दुखद घटनाएं होती हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पर भी देखा है लोग कि कहीं शोक मनाने जा रहे हैं और बढ़िया जरी वाली साड़ी पहन के, तैयार
1: जी
0: होकर, लिपस्टिक लगाकर, ये महिलाओं की बात है, पुरुषों के लिए भी कि अच्छे शर्ट वर्ट पहन के बढ़िया तैयार होकर गए और वहाँ पहुँच के बहुत तपाक से किसी से गले मिलना, नमस्ते करना और हाथ मिलाना।
1: जी
0: लेकिन वहां का एक शिष्टाचार होता है, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है,
1: जी
0: क्योंकि आप दुख मनाने गए हैं, पता चला कि आप बड़े खुशहाल नजर आ रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो
1: दुख
0: अब
1: में गए हैं तो उस तरह से, मतलब एक अपनी भावना भी उस तरह की होनी चाहिए, दिखावे के तौर पर नहीं, लेकिन एक अपनी भावना, क्योंकि हम गए तो उसी लिए हैं। और साथ ही साथ आज हम जो एक और विषय लिए आए हैं वो है, बारिश में कीड़ों के काटने पर क्या उपयोगी टिप्स हम अपना सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें।
0: बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं और हमारे श्रोता भी इस बारे में टिप्पणियां करेंगे विविध भारती के
1: जी
0: फेसबुक पेज पर जाकर। अब हम सुनवाते हैं श्रोताओं को एक गाना, ये।

0: तो हम अपने सखियों सहेलियों को बहुत सी बातें करते रहते हैं ममता जी, और आज विश्व अंगदान दिवस है जो कि हर वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ही है कि अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और इससे जुड़ी जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि अंगदान करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करने के लिए आज का दिन मनाया
1: अब
0: जाता है।
1: मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है ना कि ये
0: जी
1: जो भ्रांति है इस बारे में सोचना भी निरर्थक है।
0: जी
1: अब तो अगर आपके एक अंगदान से किसी की जान बचती है, किसी को जीवन मिलता है,
0: जी
1: तो इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है? अगर जो लोग ये मानते हैं कि हमें आध्यात्मिक रूप से कोई नुकसान होना
0: जी
1: है, तो
0: जी
1: उनको यही मानना चाहिए कि ये तो और उपकार एक तरह का
0: पुण्य
1: ईश्वर
0: के
1: की
0: साथ
1: पूजा,
0: जुड़ा।
1: पुण्य की तरह
0: जी
1: पुण्य से जुड़ जाता है, तो इसलिए अंगदान करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए, ना ही ज़्यादा उसमें चिंता करनी चाहिए। डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें।
0: जी
1: और अंगदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को हम याद करते हैं, जैसे गुर्दा, हृदय, अग्नाशय, आंखें, किडनी और फेफड़े जैसे अंगों का दान गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की जान बचा सकता है, ये हमें
0: बिल्कुल
1: ध्यान में रखना चाहिए।
0: हाँ, और ये अंगदान के लिए अगर किसी को करना हो तो इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं भी मौजूद हैं, और अपनी सहमति से ही होता है। अगर आप 18 साल के व्यक्ति हैं तो 18 साल के जो भी हैं उन वो अपने अंगदान को जीवित रहते हुए भी आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्म होता है, वो आप भर देते हैं, और उसके बाद जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद अगर उसने अंगदान करने का ये संकल्प लिया है तो उसके जिन जिन अंगों को वो देना चाहता है वो सभी अंगदान के तहत ले लिया जाता है। और अगर 18 वर्ष से कम की आयु हो और माता पिता चाहते हो, अगर माता पिता ने खुद भी अंगदान किया हो और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी करें, तो वो उसके पहले एक फॉर्म भर सकते हैं और उसको अपनी अनुमति से वो अंगदान के लिए कह सकते हैं। हालांकि बच्चा अगर 18 वर्ष का होता है और वो नहीं चाहता है तो वो इस चीज़ से मना भी कर सकता है। और पहला अंगदान किया गया था 1954 में, रोनाल्ड ली हेरिक ने अंगदान किया था सबसे पहले अपने जुड़वा भाई को, उसने उन्होंने किडनी दी थी और ये सफल एक ऑपरेशन हुआ जिसके तहत दोनों ही स्वस्थ रहे काफी लंबे समय तक। और उसके बाद धीरे धीरे अंगदान का महत्व भी लोगों को समझ में आया और जो

0: तो हमारा साइंस है किस तरह से तरक्की करा, और अब तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें हैंडल की जाती हैं। पहले तो कुछ मुश्किलें भी आती थी, लेकिन अब इतनी तरक्की हो गई है कि तुरंत ही छुट्टी भी मिल जाती है। इन दोनों जो पहले जिन ऑपरेशंस को बहुत बड़ा माना जाता था, वो तो आजकल बिना चीर फाड़ के लेज़र के ज़रिए हो जाते हैं, और अंगदान जैसी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही आम होती जा रही है। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक डोनर लिस्ट होती है, और उसमें आप जिनको भी अंग चाहिए, जिसका जिसे भी कोई गंभीर बीमारी है, वो उस लिस्ट में अपना नाम उसमें रख सकते हैं, और उसके उनके अनुसार उनकी जो अवस्था है, उनकी आयु है, उनकी किस तरह का रहन सहन है, उसे देखकर,
1: क्षमता उनकी कितनी, शारीरिक क्षमता
0: हाँ
1: कितनी है।
0: वो देखकर इस तरह की लिस्ट को देखा जाता है। और जो भी कोई अंगदान करता है और अंग मिलता है, तो उसे इस तरह से तुरंत उन्हें बताया जाता है कि अब
1: हाँ।
0: एक उनके लिए अंग ऐसा मिला है जिसे वो ले सकते हैं।
1: और एक चीज़ और है, कुछ अंग के कुछ हिस्सों के लिए पहले से बताना पड़ता जो मृत्यु के बाद ही हो सकता है, जैसे
0: जी
1: आँख, नेत्रदान।
0: जी
1: तो नेत्रदान के लिए आपको पहले जिस फॉर्म का जिक्र आपने किया वो फॉर्म
0: जी
1: भर लिया जाता है, और आँखों के दान के लिए कुछ समय सीमा होती है,
0: जी
1: उस समय सीमा के अंदर ही आपको नेत्रदान किया जाता है,
0: जी
1: करना पड़ता है। तो ये बात होगी, और किडनी और ये सब चीज़ें तो आप जीवित रहते भी दान करते हैं,
0: जी
1: लेकिन हाँ, इन सब में खतरा बस इतना होता है कि आप अपनी इच्छा से ऐसी मुहिम ना चलाएं, या कहीं डॉक्टर को कन्विंस ना करें, डॉक्टर जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए
0: जी
1: कि आप उसके लिए उपयुक्त हैं या नहीं। बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करने के लिए भी, रक्तदान के लिए भी
0: जी
1: चिंतित हो जाते हैं कि अरे मेरे शरीर से इतना सारा खून निकल जाएगा तो हमें कमजोरी आ जाएगी।
0: जी
1: वो डॉक्टर से पूछते भी हैं कि हमें चक्कर वक्कर तो नहीं आएगा। तो ब्लड डोनेट करना तो बहुत आम बात हो गई है आजकल, इसमें
0: जी
1: कोई भी खतरा नहीं होता है। बस कुछ मिनट के लिए डॉक्टर वहां पे आपको बिठाते हैं रेस्ट करने के लिए, बाकी आप तो रक्तदान कर सकते हैं। तो अंगदान के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके अंगदान से किसी को जीवन मिले तो आपको इस बात से खुश होना चाहिए। और अब
0: एक गीत
1: सुनते हैं।
0: तेरे।

0: नेहा,
1: जी
0: मोबाइल के स्क्रीन पर आप लगातार कुछ देख रही हैं। किसी श्रोता ने कुछ लिखा है अंगदान के विषय में क्या?
1: हाँ, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं हमारे सभी श्रोता, सुधी श्रोता है कह सकते हैं, क्योंकि उनको हर विषय में कुछ ना कुछ पता होता है। तो अंगदान के विषय में भी हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, लोगों को मनन करने और अपने अंगों को दान करने के प्रति जागरूक करता है। मानवीय कार्य किसी के परिवार में खुशियां ला सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है, तो इसलिए जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने एक एक कहानी उन्होंने बता रही है कि उन्होंने सुनी इंस्टाग्राम पर, 25 साल के गौरव की कहानी, जो ब्रायन दर्द के कारण अपनी जान खो दी उन्होंने, लेकिन अपने सारे अंगों को दान कर दिया और करीब 2 से 2.5 घंटे में उसका जो दिल है उसको अहमदाबाद से शायद गुजरात के सूरत पहुंचाया गया। हम सबको इस कहानी से प्रेरणा नहीं चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, और हम सबको अंगदान के विषय में सोचना चाहिए। और उस छोटे से बच्चे को भी बहुत सलाम, जिसने छोटी सी उम्र में इतना कुछ देखा, और जान जाने के बाद भी उनके माता पिता ने अंगदान किया और कम से कम 4-5 जिंदगी बचा कर वो इस दुनिया से गए।
0: क्या बात है, कितनी सजगता की बात है ये। इससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और नेहा, जीवन में सुख दुख का सिलसिला तो लगा ही रहता है।
1: जी
0: कहते हैं कि भले ही आप किसी के सुख में शामिल ना हो, लेकिन दुख में साथ जरूर निभाना चाहिए। हालांकि सामाजिक तौर पर कई बड़े, मतलब ये हमें पता नहीं चलता है बड़े मौकों पर कि किसी के शोक में कैसे शामिल हुआ जाए। कई
1: जी
0: बार तो ये भी आता है, लगता है कि बहुत जो नज़दीकी लोग हैं और अचानक अगर इस दुनिया से चले जाते हैं, तो फिर समझ में नहीं आता कि कैसे ढांढस बंधाएं,
1: जी
0: कैसे हम उनके दुख पर फाहा रखें। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। और जैसे हम शोक के माहौल में जैसे ही पहुंचते, तो आमतौर पर आदत होती कि क्या हुआ था ये हमें जानना है, तो हम पहुंचकर लगातार बार बार पूछताछ करते रहते हैं। हाँ, सामने वाले व्यक्ति भी आमतौर पर वो चीज़ें बताते होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर वो नहीं भी बता रहे हैं तो हम बार बार उनसे पूछते रहते हैं, क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, तो इससे क्या होता है, वो उस पल को लगातार उन्होंने बताया होगा आपके पहुंचते तक भी, और बार बार आप उन्हें याद कराते हैं, तो मानसिक रूप से वो थक चुके होते हैं कई बार, लेकिन बार बार वो चीज़ें पूछते रहने से जो शोक में व्यक्ति है वो उससे निकल ही नहीं पाते, कुछ और ज़्यादा उसमें गहरा जाते हैं, तो ऐसा करना भी थोड़ा उचित नहीं है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कई बार लोग शोक में जाते हैं और कुछ ही समय में हंसी मजाक करने लगते हैं,
1: हाँ
0: भले ही आप कई दिनों बाद किसी परिचित से मिल रहे हो, लेकिन मौके को देखकर व्यवहार करना सही रहता है।
1: जी
0: अब ये जरूरी नहीं कि आप बेवजह रोते रहें, लेकिन शांति से पास में बैठना, चुपचाप बैठना भी एक तरीका होता है, और एक कंधे पर अपनेपन से भरा हाथ रखना भी आपकी भावना को दर्शा सकता है। आजकल यहाँ, मतलब बड़े शहरों में कहें, महानगरों में आजकल ये परंपरा हो गई कि किसी के विदा होने पर लोगों को ये, मतलब एक तरह से बुलाना ही कहते हैं,
1: जी
0: मैसेज डाल देते हैं, लोग आते हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी जाती है,
1: जी
0: चाय नाश्ते की भी व्यवस्था कर दी जाती है, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो लोग वहाँ भी जाकर खाने खाते पीते समय बातें करते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं कि ये पसंद है, वो नहीं पसंद है, अरे ये हम नहीं खाते हैं, फिर वो रेसिपी बताना शुरू हो जाता है कई लोगों
1: जी
0: को हमने देखा। तो ये ठीक नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था लोग इसलिए करते हैं कि बहुत दूर दूर से आप आए हैं और बेचारे खुद नहीं खाते हैं, आपके खाने की व्यवस्था किए,
1: जी
0: तो वहां पर बैठ खड़े होकर मीन मेक निकालना या अपनी पसंद नापसंद जाहिर करना, ये भी ठीक नहीं लगता है।
1: और कई बार ये भी बताने लगते हैं कि भाई वो मेरा जो फलाना दोस्त था, वो जो एक रिश्तेदार था, वो भी ऐसे ही हुआ, उसका ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर विस्तार में उसका बताने लगते। कई बार जो शोक संतप्त परिवार है उसी के सदस्य को बताने लगते, उन्हें भी कई लोगों से मिलना होता है क्योंकि सब उनसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप उन्हें पकड़ कर बैठ जाते हैं और आप उनके दुख को बांटने गए, उनको बढ़ाने तो गए नहीं है, तो ये करने लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि इन दिनों बहुत से लोगों की तबीयत खराब रहती है, उतनी अच्छी नहीं होती, कुछ एक खास डाइट उन्हें फॉलो करनी पड़ती है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप वहां जाके, हो सकता है कि उनकी परेशानी बढ़ा दें, आप
0: बिल्कुल
1: कहेंगे मैं तो ये नहीं खाता, मुझे तो ये चाहिए, या मुझे वो नहीं।

0: चाहिए, या मुझे तो अभी 1 घंटे के अंदर ही खाना चाहिए, मेरे हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो इस तरह से अगर जब आप पहुंचते हैं तो कई बार वो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसी जगह पर फिर आप फोन के जरिए भी उन्हें अपनी भावनाएं बता सकते हैं, और वो यकीन मानिए वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि इतने लोग आते हैं उस बीच में। अगर आप बाद में भी जाते हैं तो ये ठीक लगता है, बजाय कि आप वहां जाकर अपनी जरूरतों की डिमांड करें कि हमको ऐसे ही रहना है या यहाँ ही बैठना है, तो ये थोड़ी मुश्किलें पैदा कर देता है।
1: बिल्कुल सही बात है। और किसी भी शोकाकुल व्यक्ति के सामने बैठकर ये कहते रहना कि उन्होंने जिस अपने को खोया है उसे क्या क्या काम बाकी रह गए थे, जैसे परिवार में किसी का विवाह जन्म जैसी बातों को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि इसकी शादी देख लेते या नाती पोता देख लेते तो फिर जाते, थोड़ा और रुक जाते। ये कहना भी शोक को कम नहीं करता है बल्कि बढ़ा जरूर देता है। अगर आप ऐसा कहने से पहले ध्यान से सोचें तो आपको ये भान होगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ अधूरा छोड़ ही जाता है, पूरा
0: जी
1: नहीं कर पाता है। और मृत्यु किसी के हाथ में तो नहीं होती है ना,
0: हाँ
1: मृत्यु तो लिखा होता है, जिस दिन जिसको जाना है वो चला ही जाता है। तो ऐसे में ये सब कहना कि अरे क्या बताएं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, पैसे भी ज्यादा छोड़ के नहीं गए, तो ये जो सुन रहा है ना उसके ऊपर और दर्द का पहाड़ आप तोड़ते
0: जी
1: हैं।
0: उनको और परेशानियां आप बता रहे हैं, उनकी उनकी क्या क्या परेशानियां आप उन्हें और बता रहे हैं कि क्या क्या जीवन में होना है। और कई बार ऐसा होता है आप गए हैं शोक में शामिल होने के लिए, अपना फोन आप देख रहे हैं या फोन आ रहा है आपको, आप जोर जोर से बातें कर रहे हैं कि भाई इसके यहाँ पर हम आए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आप बताने लगते हैं। तो ज्यादा मत बोलें, बेवजह ना बोलें, जितनी सहायता आप अपने आप कर सकते हैं वो कर दीजिए, या शोक से भरे जो किस्से हैं कहानियां हैं वो मत सुनाइए, अपने रीति रिवाज मत बताइए। बहुत से लोगों को होता है कि देखिए हमारे यहाँ ये होता नहीं, यही करिए ये कीजिए, तो इस तरह से आप बचिए, क्योंकि अगर आपसे पूछ रहे हैं वो तो जरूर बताइए, अगर नहीं पूछ रहे हैं तो आप रहने दीजिए। आप खुद सोचिए कि आप अगर उनकी जगह होंगे तो कौन कौन सा व्यवहार आपको पसंद नहीं आएगा, तो
1: बिल्कुल
0: उसके बाद आप खुद वो व्यवहार नहीं करेंगे उनके साथ।
1: उस समय तो बस शांत भाव से बैठ जाना
0: जी
1: ही, किसी के कंधे पर हाथ रख देना, सिर पर हाथ रख देना ही बहुत होता है। असल में उस समय शब्द कुछ काम नहीं करते हैं।
0: जी
1: जब इंसान दुख में होता है तो शब्दों की कोई अहमियत नहीं रह जाती, बस आपके बर्ताव की अहमियत रहती है कि आप हाथ पकड़ के कह दें कि चलो हम हैं आपके साथ, कोई
0: जी
1: ज़रूरत हो तो बताना, बस इतना ही काफ़ी होता है। और फिलहाल हमें अब चाहिए कि एक गाना सुनवा दें अपने
0: जी
1: श्रोताओं को।

0: ये आकाशदीप फिल्म का गाना था, और इस गाने से पहले नेहा हम लोग बात कर रहे थे कि शोक के मौके पर जब हम किसी से मिलते हैं, किसी के
1: जी
0: घर जाते हैं, तो किस तरह से शिष्टाचार का ख्याल रखना चाहिए। हमारी एक सखी हैं जो लिख रही हैं कि किसी के यहाँ शोक में जाना सबसे ज़्यादा सेंसिटिव विषय है और तमाम सवालों से बचना चाहिए। घर में बच्चे या बूढ़े हों तो उनके खाने पीने के लिए ज़रूर कुछ लेते जाएँ,
1: जी
0: बाकी बातों के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। उस दिन बस मौन रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपका एक सांत्वना भरा हाथ शोकग्रस्त के लिए बहुत बड़ा संबल होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें लिखी, जैसे एक साथी लिखते हैं कि शोक सभा में जाते हैं तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आपस में बातें करते रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं, चुप चुप करके बहुत से लोगों को मैंने, मतलब कहेंगे कि थोड़ा चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जोर से ना करो, लेकिन बातें करते रहते हैं। अगर आप किसी के शोक सभा में गए हैं तो उनके प्रति आपकी संवेदनाएं पूरी हैं, तो वो करें जो परिवार वालों के लिए उस समय होता है, उनके लिए गंभीर मुद्दा है, ये गंभीर बात है, तो ऐसे हंस बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो संवेदना है उसे आप दिखाइए शांति से, उनके पास अगर आप बैठते हैं तो ये ठीक रहेगा, बजाय इस तरह से रहना। और एक साथी कहते हैं कि परिवार में निकट रिश्तेदारों के निधन के कारण बहुत बार शोक सभा में जाना हुआ है। जाने से पहले सोचती कि कोई हल्के कलर की या सिंपल सी साड़ी पहनूं, वही पहनकर जाती, लेकिन वहां जाने पर देखती हूँ कि महिलाएं आजकल फैंसी साड़ियां पहन के आ रही हैं, शोक सभा के दौरान बार बार मोबाइल देख रही हैं, आसपास बैठी महिलाओं से धीरे धीरे बातें कर रही हैं, ऐसा लगता है कि औपचारिकता निभाने के लिए ही वो वहां शामिल हुई हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि रिश्तेदारी या आप अपने मिलने वालों के गम और शोक के समय मैं ज़रूर शामिल होता हूँ शिष्टाचार के साथ। मैं उनकी शादी ब्याह या अन्य फंक्शंस पर शामिल हूँ या ना हो सकूँ किसी भी कारण से, लेकिन किसी भी कारण से मैं शोक में ज़रूर पहुँचता हूँ।
1: ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही बात है कि दुख में आप शामिल हों तो ज़रूरी है। कई बार हम नहीं जा पाते हैं शादी ब्याह में तो वो नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो, जब शोक के समय अगर आप नहीं जाते तो उन्हें ज़रूर याद रहता है कि कौन आया, किसने उनके मतलब ध्यान रखा, किन से बातें हुई, ये सारी बातें याद रह जाती मन में।
0: अब नेहा, ये बातें हम थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं इन
1: जी
0: बातों पर, और एक ब्रेक के बाद हम वापस अपने मुद्दे पर आएंगे और बहुत सारे विषयों पर बातें करेंगे।
1: जी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और

0: कहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
1: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया। उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सखी सहेली और आज ममता जी हम कहानी पद्मश्री की ये सुनाते हैं और इसमें उन महिलाओं की बात करते हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। आज हम बात करने वाले हैं पैट्रिशिया मुखीम की जो समाज सेवा से जुड़ी हैं। मेघालय की पत्रकार, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने उग्रवाद के खिलाफ उस समय आवाज़ उठाई जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और इसलिए पैट्रिशिया मुखीम की पहचान एक ऐसी सशक्त महिला के तौर पर होती है जिन्होंने 1970 से 1990 के दौरान मेघालय में फैली हिंसा और उग्रवाद का निडरता से सामना किया।
3: और ये भी बता दें कि ये वो दौर था जब मेघालय में उग्रवाद अपने चरम पर था। शाम होते ही सड़कें वीरान हो जाती, लोग घरों में बंद हो जाते, पूरे समाज में डर फैला हुआ था और तो और स्कूल बंद, व्यापार ठप और आम जनता कुछ कहने से भी डरती। हत्या, अपहरण, फिरौती, धमकी जैसी घटनाएं तो आम हो गई थी। पैट्रिशिया उन दिनों एक आम युवतियों के जैसे पढ़ना पसंद करती थी। उपन्यास में वो खोई रहती थी और एक खुशहाल भविष्य का सपना देखा करती जबकि माहौल वैसा नहीं था।
2: और आखिरकार पैट्रिशिया ने निर्णय लिया कि कुछ और अपने साथ कुछ 20-25 लोगों को वो लेकर सड़कों पर उन्होंने निकलना शुरू किया। ये डर के खिलाफ लड़ने की मुहिम थी क्योंकि कोई निकलता ही नहीं था, तो उन्होंने ये लोग इससे आगे बढ़े इसलिए ऐसा किया। और बाद में वर्ष 1996 में उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा शिलोंग वी केयर और इस संगठन में वो लोगों को जागरूक करने का काम करने लगी। दुकानदारों से वो कहा करती कि शाम के समय भी दुकानें खुली रखें, लोगों को बाहर निकलने के लिए कहती और जिंदगी जीने की बातें करती उनसे।
3: और उन्होंने शांति मार्च निकाले, नुक्कड़ सभाएं की, नुक्कड़ नाटक किए और एक ही संदेश दिया कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। उनकी इतनी कोशिशों के बाद लोग भी जुड़ने लगे क्योंकि जनता भी परेशान हो चुकी थी कैद रहते हुए। पैट्रिशिया मुखीम के शांति मार्च में बच्चों से लेकर बड़ों तक हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर नारे लगाए कि हमें तो उग्रवाद नहीं चाहिए और ये एक बड़ी बात थी क्योंकि ये सभी चाहते थे लेकिन सामूहिक रूप से इस तरह कहने का साहस पहले किसी में नहीं था।
2: बिल्कुल, और ये हुआ क्योंकि इस मामले में एक घटना ऐसी हुई जिसने मुख्य भूमिका निभाई। उग्रवादियों ने एक टेलीविजन की दुकान में जाकर विवाद किया और कुछ निर्दोषों को मार दिया और इसके बाद पैट्रिशिया के संगठन ने एक सभा बुलाई और उसमें और भी लोग शामिल हुए। सभी उग्रवाद से परेशान हो चुके थे क्योंकि आर्थिक विकास को ठप्प करने में भी उग्रवादियों का बड़ा हाथ था। रोजगार, व्यवसाय, स्कूल, जीवन सब कुछ प्रभावित था। आखिरकार लोगों ने डर के खिलाफ कदम उठाया और इस आंदोलन में सरकार का भी उन्हें साथ मिला। तत्कालीन गृह मंत्री रॉबर्ट गार्नेट लिंगडो ने अपना सहयोग उन्हें दिया और उग्रवादियों की आर्थिक मदद किस तरह से रोकी जाए इसके लिए एक नियम बनाया और जो भी व्यक्ति उग्रवादियों को फिरौती देता तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती, तो लोगों ने फिरौती देना बंद कर दिया और उग्रवादियों को आर्थिक मदद मिलनी बंद हो गई। तो इसका असर ये हुआ कि वो आत्मसमर्पण करने लगे और धीरे धीरे पैट्रिशिया मुखीम की मुहिम को जीत हासिल होने लगी और शांति लौटने लगी।
3: 2015 में अदालत ने निर्देश दिया कि उग्रवादियों के बंद के आह्वान प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित न किया जाए, इससे भी उनकी गतिविधियां प्रभावित हुई, उग्रवाद की घटनाएं कम से कम होने लगी। पैट्रिशिया मुखीम केवल यही नहीं रुकी बल्कि वो समाज के सुधार को लेकर बहुत सारे अन्य कार्य भी करती रही, जैसे कि उन्होंने पीपल्स रैली अगेंस्ट करप्शन के जरिए जमीन से जुड़े विवाद का विरोध किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया फिर भी वो घबराई नहीं जबकि उस समय वो अकेली महिला थी जिन्हें 45 अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया था।
2: जी, और पैट्रिशिया मुखीम ने ऑनलाइन लॉटरी के खिलाफ भी अभियान चलाया। मेघालय इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल में भी राज्य के भविष्य के लिए उन्होंने काम किया। द शिलोंग टाइम्स की संपादक रह चुकी पैट्रिशिया मुखीम को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है लेकिन साल 2000 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मान सम्मानित किया गया।
3: सामाजिक संघर्षों और कार्यों में पूरी तरह समर्पित पैट्रिशिया मुकिम निजी जीवन में अपने बीते को खोने के गहरे दर्द से जूझती, अपने बेटे को खोने के दर्द से जूझती रही। आज भी समाज के लिए सक्रिय हैं। तकरीबन 17 बरस

0: की उम्र में वो आज भी योग करती हैं, पहाड़ी रास्तों पर चलती हैं, पर्यावरण बचाने के लिए अभियान चलाती हैं, आदिवासी अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लगातार अपनी बुलंद आवाज़ आज भी उठाती हैं। उनका मानना है कि अगर बदलाव लाना है तो एकजुट होना होगा, क्योंकि जब सब साथ खड़े होते हैं तभी बदलाव आता है।
1: और तकरीबन 70 वर्ष की पेट्रिशिया मुखीम हमें सिखाती हैं कि कभी कभी एक निडर आवाज़ भी लोगों को एकजुट करने में सहायता करती है। किसी एक का साहस हो तो सभी लोगों में वो साहस हो जाता है, उन्हें देखकर सब साहस करते हैं और समाज डर, हिंसा और अन्याय से आगे बढ़कर शांति और लोकतंत्र कायम कर सकता है।
0: तो इस बात से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि बूंद बूंद से सागर बनता है। एक पेट्रिशिया का हाथ आगे बढ़ा और कारवां बढ़ता गया और उन्होंने विजय पाई, पद्मश्री सम्मान से उन्हें नवाजा गया। अब गाना सुनते हैं ये।

0: हाँ तो नेहा, हमने शुरुआत में बताया था कि श्रोताओं से हमने ये शौक के बारे में पूछा था, लेकिन बहुत
1: जी
0: सारे श्रोता तो अभी लिख नहीं रहे। हमें लगता है हमारे श्रोताओं को विविध भारती सुनने के अलावा और कोई शौक नहीं, क्योंकि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि शौक तो बहुत से थे, अब सिर्फ विविध भारती प्रोग्राम के ही सुन पा रहे हैं। उनमें से कोई प्रोग्राम मिस कर जाता हूँ, अब से 8 बजे तक अनवरत मोबाइल पर VVS के प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, ऑफिस का काम भी चलता रहेगा। भाई, विविध भारती सुनने का शौक तो सबसे उम्दा शौक है, इस शौक को आप कायम रखिए। लेकिन इसके अलावा जब भी वक्त मिले, इसके साथ साथ और भी शौक कर सकते हैं। विविध भारती सुनते हुए आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं,
1: जी
0: पेंटिंग कर सकते हैं, निटिंग कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, क्या
1: कुछ
0: क्या
1: भी
0: नहीं
1: कर
0: कर
1: सकते हैं, सब कर सकते हैं। रेडियो के साथ सब चीजें की जा सकती है, ऐसा ही तो, मतलब हमने शुरुआत से ऐसा ही तो सब
0: बिल्कुल
1: बड़े हुए हम सब,
0: सही बात
1: रेडियो
0: है।
1: सुनते सुनते सारे काम करते करते।
0: और रेडियो सुनते सुनते अगर हम काम करते हैं तो कल्पनाशीलता का विस्तार भी होता है,
1: हाँ
0: क्योंकि हम सोच रहे होते हैं, विविध भारती सुन रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से एक दृश्य खींच रहे होते हैं उस समय।
1: और एक मेडिटेशन जैसा हो जाता है, एक समय के बाद में हमें सब सुनाई दे रहा होता है, फिर हम अपने काम में भी डूबे रहते हैं, लेकिन किसी ने रेडियो बंद कर दिया तो पता चलता है कि अरे हम सुन रहे थे, ऐसा लगता है ना कि आप अपने काम में डूबे हुए हैं तो बंद कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहता है। हमारे एक साथी ने जरूर लिखा है कि उन्हें बागवानी का बहुत शौक है, इसके लिए मैं शनिवार रविवार को जरूर समय निकालती हूँ, पेड़ पौधों की गुड़ाई करना, कटाई छटाई करना या नए पौधे लगाना, और ये छुट्टी वाले दिन जरूर करती हूँ। मुझे गमलों में पेंटिंग करना, तरह तरह से क्यारियों को सजाना भी बहुत पसंद है, इसके लिए भी समय निकल ही जाता है, और रेडियो सुनना और विविध भारती पेज पर कमेंट करने के लिए काम से थोड़ा समय चुरा ही लेती हूँ। तो कितनी अच्छी तरह से वो अपना पूरा समय मैनेज कर रही है ना।
0: और बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बातें लिखी। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें कुकिंग का शौक है, खाना बनाने का शौक है, रेडियो सुनते सुनते हम खाना बना लिया करते हैं। और विविध भारती के शौक के बारे में और भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमें तो विविध भारती सुनने का बहुत शौक है। और एक श्रोता ने कुछ अलग सी बात लिखी है, वो ये लिख रहे हैं कि आपने शोक के बारे में बात की थी और गाना सुनवाया था जुल्मे संग आंख लड़ी रे, तो क्या गाना सुना दिए जुल्मे संग आंख लड़ी? 1% चैनल पर आने वाले ऐसे लोग हैं जो किसी के दुख दर्द में जाते हैं और बढ़िया बढ़िया साड़ी भी पहनते होंगे, अपने घर की पुण्यतिथि कभी नहीं मनाते मगर दूसरों की उस दिन जन्मदिन जरूर मनाते हैं, एक प्रतिष्ठित चैनल पर होता है जो गाना सुनाते हैं। तो इनके लिए शायद ये विविध भारती के लिए इनकी बात है, तो
1: जी
0: इनको स्पष्ट कर दें कि आज कोई शोक का दिन नहीं है। ये
1: जी
0: तो हम एक शिष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि सखी सहेली ऐसा प्रोग्राम है नेहा जिसमें हम हर मुद्दे पर बात करते
1: जी
0: हैं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं, जहां महिलाओं के आगे बढ़ने की बात हो, जहां उनके शिक्षा की बात होती है, उनकी कामयाबी की बात होती है, उनके करियर की बात होती है, और तमाम मुद्दे हैं, खेल है, पढ़ाई लिखाई,
1: जी
0: कुकिंग से लेकर हर मुद्दे पर हम बात करते हैं। तो इसी के तहत ये मुद्दा उठाया, तो जहां पर शिष्टाचार की बात है
1: जी
0: तो
1: लेकिन ममता जी, एक बात तो ये भी हम कहना चाहेंगे इनसे कि शायद ये बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जुल्मी संग आंख लड़ी गीत से तो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, और
0: बिल्कुल
1: जब हमने शोक से संबंधित बातें की तो उसके अनुरूप ही गीत हमने सुनवाया, जिसे हमारे सभी श्रोताओं ने सुना है और उन्हें पता है कि असलियत क्या है। और
0: बिल्कुल
1: जिन्होंने नहीं सुना, हम तो कहेंगे इन श्रोता को कि 3 बजे रात में भी इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है, तो वो ज़रूर उसे सुने और उसके बाद ही कोई निर्णय लें, है ना।
0: और अब एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, इसके लिए मेरा रविवार फिक्स होता है, बहुत कुछ सीखा भी, जैसे कि धैर्य का गुण हमने सीखा। और एक श्रोता ने और लिखा है कि मुझे बागवानी का शौक है, मतलब
1: जी
0: बागवानी का शौक बहुत सारे लोगों
1: और
0: को है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा कि हमको तो खाली समय में एडिटिंग का शौक है, मैं हमेशा 4 से 5 घंटे एडिटिंग करता हूँ, तो ये भी एक अच्छा शौक है, कुछ उससे कुछ उन्हें मिल रहा होगा, कुछ चीजें सीख रहे होंगे, क्योंकि एडिटिंग करना भी एक अपने आप में गुण है, और वो शौक के साथ साथ कभी कभी काम में भी बदल जाता है, अगर काम ही उनका शौक है तो बहुत अच्छी बात है।
0: बिल्कुल, कुछ लोगों को दिन भर मोबाइल देखने का भी शौक होता है,
1: जी
0: तो
1: इस शौक से
0: इस
1: मुक्ति पाना
0: मुक्ति
1: जरूरी
0: पाए
1: है।
0: बच्चे,
1: जी
0: क्योंकि ये शौक बहुत खतरनाक होता है, इससे आपका वक्त बहुत सारा खा जाता है मोबाइल,
1: जी
0: और आप अपने जो शौक है उन्हें जान ही नहीं पाते। सबसे बड़ी बात तो ये है नेहा कि आपके शौक क्या है उन्हें पहचानिए,
1: जी
0: खास तौर से छोटे बच्चों के भीतर कई बार बार हम बहुत सारे हुनर देखते हैं लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिलती है, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो वो जान नहीं पाते कि उनके शौक क्या है और विपरीत दिशा में अपने आगे बढ़ते हैं, करियर का चुनाव कर लेते हैं, जिसके लिए उन्हें परेशान भी होना पड़ता है।
1: और कई बार ऐसा होता है कि माता पिता कुछ बनना चाहते हैं और उनके बहुत सारे शौक होते हैं जो किसी वजह से पूरे नहीं हुए, तो उन्हें लगता है कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें ये सिखाऊंगी, तो वो भी एक है, उसकी बजाय माता पिता को चाहिए कि खुद ही अपने शौक पूरे कर लें और बच्चों को उनके शौक पूरे करने दें, है ना।
0: और शौक पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती है। कई बार लोग ये कहते रहते हैं कि भाई हमें तो दफ्तर जाने के साथ हमें टाइम नहीं मिलता है, हम ये नहीं कर पाते, तो भाई उसके साथ एडजस्टमेंट हो जाता है, आप सामंजस्य बिठा सकते हैं, और नहीं होता तो जब आप रिटायर हो जाते हैं 60 साल के बाद, वो सारे शौक जो अधूरे रह गए उन्हें पूरे कर लेने चाहिए।
1: एक बड़ी मजेदार बात इससे हमें याद आई कि संगीत से जुड़े हुए हमारी एक पहचान के हैं, वो अभी भी एग्जाम्स देते हैं संगीत के, तो वो उनकी उम्र वो 60 से सीनियर सिटीजन है, तो वो जब एग्जाम देने जा रही थी एक बार, तो गार्ड ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अरे बच्चों के साथ पेरेंट्स नहीं जा सकते ऊपर एग्जाम देने, तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो फिर उन्होंने अपना जो वो एग्जामिनेशन हॉल का टिकट होता है वो दिखाया, कहा कि भाई मैं तो स्टूडेंट ही हूँ। तब वो बड़े मजे से वो बात बताई थी कि मुझे रोक दिया मैं क्या करूँ, और बाद में उन्होंने अपनी बेटियों को और हम सभी को ये बातें सुनाई।
0: और एक बात और बताएं नेहा आपको, जो जानी मानी गायिका है छाया गांगुली, विविध भारती में जिनका सानिध्य हमें मिला, हम गौरव का एहसास करते हैं जब छाया जी का नाम लेते हैं, और उनकी जो गजल है रात भर आपकी याद आती रहे, गमन फिल्म की गजल जिसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। छाया जी बताती हैं कि वो रिटायरमेंट के कई साल बाद उर्दू सीखना शुरू किया, उनको उर्दू सीखने का शौक था, तलफ्फुज का बड़ा ख्याल रखती है वो कि कहीं कोई उच्चारण गलत ना हो, तो इसके लिए उन्होंने उर्दू सीखना शुरू किया और एक साल नहीं कई साल उन्होंने उर्दू सीखा, और जब भी कहीं किसी शब्द पर अटकती तो वो फोन करके पूछती थी हम सबसे, तो ये बड़ी बात है। हमने उनका नाम इसलिए यहाँ पर लिया कि वो एक मार्गदर्शक है हम सबके लिए, लेकिन वो एक उम्र के इस खास जगह पर आकर सीख रही है, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और गाना सुनवाने के लिए भी
1: कोई समय नहीं,
0: सुनते हैं
2: जब सदा संग रहे।

0: नेहा, ये बरसात का मौसम जितना लुभाता है उतना ही सताता भी है, क्योंकि बारिश के मौसम में अलग अलग तरह के कीड़े आसपास होते हैं, नमी बहुत ज़्यादा होती है और उसके कारण पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ किसकी किस तरह के कीड़े ने अपनी जगह बना ली है। और छोटे छोटे बारीक मच्छर जैसे कुछ कीड़े होते हैं,
1: जी
0: आप नॉर्मल कहीं बैठे हों जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं भी हैं और पता चलता है, आप दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, एकदम कण एक कण की तरह होते हैं और काट के चले जाते हैं, बहुत देर तक बदन खुजलाता रहता है
1: बिल्कुल।
0: ना?
1: और पानी भी भर जाता है बरसात के मौसम में कई जगह, तो कई हल्के जहरीले कीड़े भी अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और उनके काटने की संभावना भी बढ़ती है। अगर इस तरह के कोई कीड़े आपको काटते हैं, जहाँ भी मतलब अगर सूजन दिख रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना तो उचित है सबसे ज़्यादा। और जहाँ कीड़े ने काटा हो वहाँ पर बार बार आप खुजलाएं नहीं, क्योंकि खुजली तो होती है पर खुजलाएं नहीं, या तेल चूना या कोई भी दवाई ऐसी हम लगा लेते हैं जो सामने दिखती है, कभी कभी मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन होता है, वो लगा लेते हैं। तो ये सब ना करके पानी और एंटीसेप्टिक साबुन से पहले साफ कर लीजिए। और अगर काटने के बाद आपको सूजन आ रही है या चक्कर जैसा लग रहा है, तेज जलन हो रही है, सांस लेने में कभी कभी तकलीफ भी होती है, ऐसा कुछ हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, नहीं तो डॉक्टर को फोन करके आप सलाह ले सकते हैं बाकी मामलों में।
0: बिल्कुल सही कह रही। हालांकि कई बार कुछ छोटे कीड़ों के काटने पर लालिमा जैसी होती है, हल्की जलन भी महसूस होती है, तो इसे पानी से साफ करें और कुछ देर खुजलाने से बचने पर भी वो ठीक हो जाता है। उसे खुजलाएं नहीं बल्कि उसको रब करें, हल्के
1: जी
0: हाथ से रब करें तो भी आराम मिलता है। ऐसे में बेकिंग सोडा के पानी से धोना ठीक रहता है या फिर डिटॉल वगैरह उस पर
1: जी
0: लगा देना धोने के बाद ठीक रहता है। और नीम का तेल लगाने की सलाह दी जाती है। हल्की सूजन के लिए बर्फ की सिकाई भी कारगर होती है, लेकिन इस बात के लिए भी डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है,
1: जी
0: क्योंकि कीड़े काटते हैं आपको पता नहीं चलता है कि वो कोई जहरीला कीड़ा तो नहीं है।
1: जी और बारिश में कीड़ों से बचाव के लिए आप नीम के तेल या कपूर जैसे सुगंधित चीज़ों को घर के किनारों में उपयोग कर सकते हैं, तो कीड़े ही कम पनपेंगे। या घर की साफ सफाई करते रहने से भी, नमी को दूर करते रहने से भी कीड़े नहीं बसेंगे। बिस्तर को झाड़ के सोइए, जो कपड़े हमने कहीं लगा दिए हैं या अलमारी में रखें तो भी एक बार झाड़ के पहने, जूते चप्पल भी झाड़ कर पहनिए, कभी कभी छोटे छोटे कीड़े उसमें छुपे होते हैं, तो इससे भी हम बच सकते हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि अगर कहीं काटता है, कीड़ा वगैरह काटता है, तो उस जगह को खुजलाएं नहीं। अगर अगर आपको कहीं डंक वगैरह अगर दिखता है तो भी आप उसे बिल्कुल भी ना दिखलाएं, मतलब कुछ करें ना उसे।
0: बिल्कुल। और अब सुनिए गाना, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या
1: जी
0: गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और नेहा शर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जी हां, अपने देश की पावन भूमि को हम नमन करते हैं। 15 अगस्त 2026 को हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम में हमने देश प्रेम पर कुछ बातचीत की और देश प्रेम की कुछ गीत आपके लिए पेश किए हैं अपने श्रोताओं की पसंद पर। तो चलिए सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हमारे पहले कॉलर कौन है, सुनते हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम, कौन बोल रहे हैं?
1: मैडम नमस्कार। मैडम
0: नमस्कार,
1: मैं बजरंग चौक गांधवा से संतोष पटेल किरोली बोल रहा हूँ।
0: संतोष बोल रहे हैं, बताइए क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करता हूँ मैडम मैं।
0: अच्छा,
1: दो बच्चे हारे हूँ मैं और कल्याणी है, दो बच्चे मेरे और 3 एकड़ जमीन है। 10 क्लास तक पढ़ा हूँ मैं भी।
0: अच्छा, फिर उसके बाद पढ़ाई क्यों छोड़ी?
1: वो क्या है कि आप पिताजी से काम नहीं बनता था तो बोले कि आप क्या करोगे करके लग गया हम फिर।
0: अच्छा चलो,
1: रेडियो बचपन से सुन रहे हैं हम।
0: बिल्कुल सुन रहे होंगे, तभी तो हमें आपने फोन किया है अपने खेती बाड़ी से समय निकाल के।
1: जी जी, बहुत साल बाद फोन लगा मेरा, 6 साल हो गए।
0: अरे क्या बात है।
1: जी जी, ये मेरी पत्नी से बात कर लीजिए।
0: कराइए।
2: हेलो मैडम।
0: हेलो, क्या नाम है आपका?
2: मीरा भाई है मेरा नाम।
0: अरे मीरा भाई, क्या बात है। हम तो भजन बजाते हैं संत मीरा भाई के, तब बहुत बोलते हैं कि संत मीरा भाई के ये भजन सुनिए। अच्छा, आप क्या करती हैं? घर संभालती हैं?
2: हाँ, घर संभालते हैं, खेती में भी काम करते हैं।
0: अच्छा, बराबर हाथ बटाती हैं अपने पति देव का, है ना?
2: हाँ।
0: अच्छा तो बताइए, महिला किसान होने का एक अनुभव क्या है? कितना काम करती है महिला किसान?
2: महिला किसान का अनुभव यह है कि भाई भाई आदमी दोनों साथ में अच्छा खेती में काम करो तो धड़किया मजदूर कम लगते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, घर का काम भी करती है और खेती बाड़ी भी करती है ना, तो पशुधन भी होगा आपके पास।
2: हाँ, एक भैंस है, दो बैल है,
0: तो उनकी भी तो सेवा करनी पड़ती होगी आपको।
2: हाँ, करें ने, भैंसी दूते, चार पीते।
0: सही कहा आपने, रोज वही जीवन, कितना मुश्किल होता है लेकिन इतने हंसकर आप अपने जीवन को जला रही हैं, ये बड़ी बात है ना।
2: लड़का 11वीं में जाता, लड़की 10वीं में जाती है, तो फिर काम तो करना पड़ता है ना।
0: बिल्कुल करना पड़ता है, और अपने बच्चों को पढ़ाना है आपको, उनकी पढ़ाई मत छुड़वाना।
2: नहीं नहीं, पढ़ा रहे बच्चे को तो अभी।
0: चलिए बताइए, आप दोनों मिलकर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: हाँ मैडम, नगीना पिक्चर गाना सुना दीजिए, बाबला मेहता की आवाज है, श्रीदेव और ऋषि कपूर है कलाकार, उसमें भजन भी गाते हैं हम, नेपाली में गाते हैं, हिंदी में गाते हैं, हम तो पुराना क्लासिकल भजन अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है, तो एक भजन सुना दीजिए, फिर आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं हम।
1: जी।

0: से संगीता देवनाथ बोल रही हूँ
1: जी। बताइए कैसी हैं आप।
0: मैं अच्छी हूँ मैम, आज पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला मैम।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। त्रिपुरा में कहाँ रहती हैं आप।
0: मैं त्रिपुरा कैलाशहर में रहती हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट है ऊनकोटी त्रिपुरा।
1: अरे वाह, कैसा है आपका शहर बताइए इसके बारे में। हमें हमारे सुनने वाले जानना चाहते हैं कि त्रिपुरा शहर की क्या विशेषता है।
0: त्रिपुरा तो पहाड़ी इलाका है मैम, बहुत ही छोटा सा शहर है, तो यहाँ देखने के लिए ऊनकोटी टेम्पल भी है।
1: हाँ।
0: और बहुत सारे लोग भी देखने के लिए आती है यहाँ, और त्रिपुरेश्वरी टेम्पल है।
1: अरे वाह, फिर तो खूब पर्यटक आते होंगे ना।
0: जी बहुत सारा।
1: तो वहाँ के भोजन की कोई विशेषता, जब इतने पर्यटक आते हैं तो कुछ खास मिलता होगा खाने के लिए पहनने के लिए, बता सकती हैं आप।
0: जी यहाँ खाने के लिए तो मशहूर है रसगुल्ला।
1: रसगुल्ला।
0: जी
1: अरे वाह, चलिए कौन सा गाना
0: तो
1: सुनेंगे
0: मैम
1: आप।
0: मुझे गाना सुना दीजिए, लता दीदी की आवाज़ में, जुर्माना फिल्म है और गाने का बोल है सावन के झूले पर।
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: जी मैडम, हम कश्मीर से बोल रहा हूँ, हिलाल अहमद।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस बहुत बढ़िया, आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं। ये बताइए, वहाँ का प्रकृति का वर्णन कीजिए।
1: जी मैडम।

0: यहाँ तो बहुत बढ़िया मौसम है आज। इस मौसम में तो बहुत मजा है यहाँ। आगे भी जो मौसम आने वाला है तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है, मगर थोड़ा सर्दी फिर आते हैं उस मौसम में।
1: हाँ, ठंड तेज हो जाती है ना,
0: हाँ, ठंडक तेज हो जाते हैं तो बहुत मुश्किलात भी होती है उस वक्त।
1: तो जो कश्मीर है उसको तो हम उसकी अद्भुत जो प्राकृतिक सुंदरता के कारण जानते हैं, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आपके वहाँ बहुत खास पारंपरिक व्यंजन भी बनाते होंगे, वो व्यंजन क्या-क्या होते हैं? क्योंकि दुनिया भर में उन व्यंजनों के बारे में चर्चा तो होती है, लेकिन वो कैसे बनते हैं, क्या स्वाद होता है, थोड़ा सा एक व्यंजन के बारे में बताइए ना।
0: वो है ना वाजवान है।
1: वाजवान बनता है ना?
0: हाँ वाजवान, उसमें तो बहुत वैरायटी बनते हैं, तकरीबन 10-12 वैरायटी बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं वो।
1: अच्छा, तो फिर कावा कैसे बनता होगा? वो तो बादाम और केसर और इलायची से बनता है।
0: हाँ उसमें इलायची भी डालते हैं, वो है ना मतलब रोंग, कश्मीरी रोंग कहते हैं उसको, वो भी उससे बहुत बढ़िया वो बनते हैं।
1: तो अभी आप
0: वो
1: कावा
0: मक्का
1: पीते हैं?
0: कभी कभी पीते हैं तो वही तफ वगैरह बुखार उस पे भी हम वो यूज करते हैं तो उससे थोड़ा राहत मिलते हैं।
1: अच्छा, तो रूटीन का खाना क्या है आपका?
0: रूटीन का खाना है चावल 2 टाइम, और दिन में 2 चाय हम बनाते हैं, लिप्टन चाय और वो है ना नमक चाय।
1: अच्छा, जिसे नून चाय कहते हैं,
0: हाँ नून चाय।
1: नून चाय,
0: हाँ
1: ये क्या गुलाबी से रंग की कोई चाय होती है?
0: हाँ ये गुलाबी बनते हैं, इससे आज बहुत पुराने वक्त में ये मतलब आज से पहले कुछ साल पहले ये हम समावार में बनाते हैं, कश्मीरी समावार है ना उसमें बनाते हैं, तो ये बहुत बड़ा मजा होता है इसको। तो वह इंडक्शन हीटर है बिजली पे जो चलने वाले उन पे बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होते ये भी।
1: पहले जैसा स्वाद नहीं आता है जो स्वाद आया करता
0: हाँ
1: था ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कश्मीर के पारंपरिक व्यंजन कैसे होते हैं या वहाँ का रहन-सहन कैसा है?
0: हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए, तो आपके प्रोग्राम भी हम सुनते हैं सुबह से शाम तक,
1: बिल्कुल
0: बढ़िया
1: सुनते
0: मजा
1: हैं,
0: आता है।
1: बिल्कुल। बताइए,
0: हाँ
1: गाना बताइए।
0: मैडम, हम आज सिर्फ तुम फिल्म का गाना है, 5-6 सुर में गाते हैं।
1: चलिए सुनते हैं।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से, अपना नाम बताइए।
1: मैं गजानन नादरे बोल रहा हूँ, गिरगांव तहसील बसमत, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से।
0: स्वागत है आपका गजानन जी, कैसे हैं?
1: बस बिल्कुल ठीक ठाक है, ऊपर वाले की दुआ है।
0: बिल्कुल, तो बताइए ना अपने गांव के बारे में कुछ खास जो हम लोगों को नहीं पता है। कैसा है आपका गांव, कितनी आबादी है, क्या खासियत है?
1: कैसा है, खेती किसानी होती है दीदी? यहाँ
0: सभी लोग खेती किसानी करते हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा, तो पानी की व्यवस्था वगैरह, बिजली वगैरह सब तरीके से आती है आपके यहाँ अच्छे से?
1: सभी सभी व्यवस्था है।
0: और मौसम कैसा रहता है, बदलता है या ये गर्मी का ही मौसम रहता है?
1: मौसम बदलता रहता है ना, अभी तो कैसा है बारिश का मौसम है, मगर बारिश उतनी हुई नहीं अभी तक, मगर फसल के लायक है।
0: अच्छा, फसल के लायक तो हो गई है ना, फसल जो आपकी खराब नहीं होगी ना?
1: नहीं नहीं
0: क्या फसल बोई आपने अभी खेत में?
1: अभी तो कैसा है, इन दिनों सोयाबीन और हल्दी की फसल रहती है,
0: फिर
1: और साल भर रहने की फसल तो गन्ने की है, केले की है।
0: अच्छा अच्छा, मतलब सोयाबीन और हल्दी की फसल कब तक रहेगी, कब इसकी हो जाएगी छटाई?
1: वो जून से लगभग नवंबर तक चलती है,
0: ठीक है,
1: 4 महीने की रहती है दीदी, 4 महीने में उसकी कटाई होती है सोयाबीन, और सोयाबीन निकलने के बाद गेहूँ और चने की भी कर सकते हैं उस जगह पर।
0: अच्छा,
1: कई कई किसान करते हैं वैसी खेती।
0: अच्छा, यानी बारह मासी कुछ न कुछ खेत में डाला ही जाता है।
1: पानी की व्यवस्था है तो हर महीने में मौसम में आता है।
0: हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब खेत जो है खाली नहीं रहते हैं ना कोई फसल रहती ही है।
1: गेहूँ की निकलने के बाद थोड़ी जमीन की अच्छी तरह की अगले साल के लिए मरम्मत करने के लिए 4 महीने ठीक रहती है ना।
0: अच्छा, चलिए, तो आप अकेले कर रहे हैं, आपके साथ कौन कौन करते हैं, घर के अन्य सदस्य कौन कौन है जो आपकी खेती बाड़ी में सहायता करते हैं?
1: घर में है ना, मैं भी हूँ, भाई है और मेरी पत्नी भी है।
0: हाँ, सब मिलकर करते हैं। और बाहर से भी कुछ लोग रखे हैं आपने या आप ही पर्याप्त होते हैं?
1: मजदूर भी रहते हैं दीदी, उतना बैठा है घर के आदमी को संभालने में ज्यादा तकलीफ होती है।
0: सही कह रहे हो, मजदूरों को रखना ही पड़ता होगा ना, कुछ काम ऐसे हैं जो वो ही कर पाते हैं।
1: हाँ, कैसा है, जल्दी से जल्दी कई कई बार उनकी निगरानी करनी पड़ती है।
0: हाँ बिल्कुल, हम सबकी शुभकामनाएं हमारे किसान भाइयों के प्रति है जो अपने खेत में रात दिन लगे रहते हैं हम लोगों को अन्न दाना देने के लिए। कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म है उपहार और गाने के बोले मैं एक राजा,
0: तो एक रानी है, चलिए सुनते हैं गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: अनिल नाइक पोरली मुंबई से बात कर रहा हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: अरे नमस्कार नमस्कार मेरी बहन, क्या बात है भाई? आपको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: अरे क्या बात है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और उस दिन 1947 में भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से पूरी तरह आजादी मिली थी।
1: और 9 अगस्त क्रांति दिन का छोड़ो भारत आंदोलन।
0: बताइए आप कैसे लेते हैं इस बात को, क्या महसूस करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर?
1: स्वतंत्रता दिवस पर में मेरे बहुत से प्रोग्राम होते हैं हमारे सोसाइटी में, झंडा वंदन किया जाता है, इधर गान होते हैं,
0: देश प्रेम के गान होते हैं ना?
1: हाँ हाँ, और मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ।
0: आप भी गाते हैं देश गान?
1: जी जी।
0: कौन सा गाना गाते हैं वहाँ पर?
1: मराठी गाना।
0: बताइए गा के।
1: जय स्तुते जय स्तुते श्री महान मंगले निवास पदे शुभ दे स्वतंत्र से भगवती स्वाम हम यशोयुता मंदे।
0: बहुत सुंदर।
1: और एक गाना है, ने मजसी ने परतमातु भूमि ला सागरा प्राण तरमला तरमला सागरा सागरा।
0: बहुत अच्छा।
1: मुझे जो गाना सुनने की इच्छा है वो है, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। कविता कृष्णमूर्ति, शंकर महादेवन और बाल कलाकारों ने गाया है
0: जी।
1: उनका नाम है परदेश। ये गाना राग बैरागी पर आधारित है।
0: अच्छा, राग बैरागी पर आधारित ये गाना है। बहुत अच्छा लगा आपने इसको शास्त्रीय संगीत की जो राग है उस पर भी बताया कि किस राग पर आधारित गीत है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये देश प्रेम गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: जी। हेलो फरमाइश,
0: नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सोनितपुर असम रंगापरा से अमल बसुमतारी बोल रहा हूँ मैम।
0: अच्छा ये बताइए, अभी असम में जब हम देख रहे थे काफी अतिवृष्टि हुई है।
1: जी बारिश हुई थी, ये शिव सागर में हुई थी, जोरहाट में हुई थी, और ये नाजिरा गोलाघाट चराईदेव असम में हुआ था। ऐसे बार बहुत लोगों की जान भी चली गई और बहुत नागालैंड में बादल फटने की वजह से हुआ ये।
0: जी
1: इसके वजह से हुआ था ये। और हमारी सोनितपुर में ऐसा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमारा थोड़ा ऊंचा जगह है इसलिए।
0: अच्छा।
1: आज भी बहुत काफी धूप दे रहे हैं।
0: हाँ।
1: हमारे यहाँ तो बारिश इतनी जोर से नहीं देता है, बारिश आते है तो ऐसे हल्की से बारिश आते है।
0: हाँ। और अब कैसा है वहाँ माहौल?
1: यहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी गर्मी ज्यादा चल रहा है, लगभग इससे 40 डिग्री तक जाता है हमारे यहाँ गर्मी।
0: बहुत सही कहा
1: और
0: आपने।
1: कभी कभी रात को बारिश भी होता है, रात पे थोड़ा राहत मिलते ठंडा होता है, और दिन भर ज्यादा गर्मी होता है।
0: जी तो एक बात बताइए, आप क्या करते हैं वहाँ पर असम में अमल जी?
1: असम में तो हम खेत के साथ जुड़ते हो और चाय का बागान के साथ जुड़ते हो और धान का खेती है हमारा, धान का खेती से जुड़ते हो।
0: अरे वाह, असम की चाय तो सबसे प्रसिद्ध है ना, कितनी स्वादिष्ट चाय होती है। आप वहाँ काम करते हैं है ना, आपके खेत में चाय की खेती होती है?
1: असम की सबसे ज्यादा सोनितपुर में ज्यादा फेमस है, जैसे का मोहन टी बागान, इसको ही ज्यादा जानते हैं, ज्यादा फेमस है ये। और हमारे इस ग्राम क्षेत्र में भी है, सबके घर घर में चाय का बागान देखने के लिए मिल जाता है।
0: बहुत अच्छा लगता है जब हम इसकी पिक्चर्स देखते हैं तो चाय के बागान इतने अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं हम लोगों को, तो वाकई धन्यवाद देते हैं वहाँ के किसानों को।
1: जी।
0: तो देखिए स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और आप भी शायद देशभक्ति गीत सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में।
1: जी वीर जरा फिल्म का है, ऐसा देश है मेरा गाना को सुनना है और इतना रहा इनकी आवाज में।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हेलो मैम, राधे राधे। परिधि राजपूत बोल रही हूँ, बैरची जिला भोपाल से। हाँ
0: ये आपका गांव है?
1: नो मैम, शहर ही है।
0: अच्छा, आपका
1: हाँ
0: नाम बड़ा प्यारा है, परिधि।
1: थैंक यू मैम।
0: किसने रखा ये नाम?
1: मैम मेरी मम्मी ने और पापा ने रखा है। मैम
0: क्या सोच के रखा होगा?
1: पता नहीं है वो उन्होंने क्या सोच के रखा है, पता नहीं। मेरे को तो बस यही पता है कि मेरी मम्मी पापा ने रखा है।
0: अच्छा, क्या मतलब होता है परिधि का?
1: मैम गोल चक्र होता है।
0: अच्छा, उसे परिधि कहते हैं। तो क्या करती हैं आप परिधि?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ, 8th क्लास में हूँ।
0: 8th क्लास में हैं आप?
1: हाँ
0: अभी
1: मैम।
0: तो बहुत छोटी हैं। आप क्या हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनती हैं विविध भारती के?
1: हाँ मैम, मैं बिल्कुल सुनती हूँ। होमवर्क करते हैं ना, जब भी सुन लेती हूँ, टाइम निकाल के सुनती हूँ।
0: आपके घर में और कौन सुनता है ये कार्यक्रम?
1: मैम मेरे पापा जी भी सुनते हैं और मैं भी सुनती हूँ उनके साथ साथ।
0: क्या बात है, बचपन से आप रेडियो सुनना चाहती हैं। तो आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? क्या इसी लाइन में आना चाहती हैं?
1: हाँ मैम बिल्कुल, मैं आना चाहती हूँ।
0: कैसे आएंगी बताइए, क्या लगता है आपको रेडियो की दुनिया में कैसे पहुंचा जा सकता है?
1: मैम अभी तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं आगे बड़ी हो गई जरूर समझूंगी क्या क्या क्या करना पड़ता है इसको आने में।
0: तो मुझे
1: हाँ
0: एक बात
1: मैम,
0: बताइए, आपने गाना कौन सा पसंद किया है? दी है
1: देशभक्ति सॉन्ग सुना दीजिएगा मैम आप तो,
0: कौन
1: कर्मा
0: सा?
1: फिल्म का।
0: हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, आप इतनी छोटी सी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि देश प्रेम का मतलब क्या होता है तो क्या कहेंगे आप? कैसे मनाएंगे स्कूल में? आपने किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है?
1: मैंने एक मोबाइल में एक स्पीच निकाली तो मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ। देश का ही मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं।
0: तो हमारे भीतर देश प्रेम ऐसे होना चाहिए कि हम अपने देश को साफ सुथरा रखें। जब हम
1: हाँ
0: जहाँ
1: मैम।
0: रहते हैं वहाँ हम अपने देश के प्रति ईमानदार हों, प्रकृति के प्रति ईमानदार हों। हमारा जो व्यक्तित्व है वो ईमानदारी होनी चाहिए
1: हाँ मैम
0: हमारा।
1: बिल्कुल, ईमानदारी रहना चाहिए और सब लोगों
0: हाँ,
1: को।
0: सबसे बड़ी बात ये है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी प्यारी सी छोटी सी उम्र में आप विविध भारती सुनती हैं अपने पिता के साथ। हमें भी अपना
1: हाँ
0: बचपन
1: मैम।
0: याद हो आया जब हम रेडियो सुना करते थे अपने पिता के साथ।
1: हाँ मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से, नाम बताइए अपना।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागपुर, जिला उज्जैन से।
0: कैसे हैं प्रेम जी आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करते हुए मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अभी
0: कोई इंटरव्यू थोड़ी दे रहे हैं जो आपको घबराहट हो रही है?
1: विविध भारती में जब कॉल लगता है ना तो ऐसा ही हाल होता है, ऐसा भी होता होगा।
0: मुझे तो लगा आप कहेंगे कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने एक नई बात कह दी कि मुझे घबराहट हो
1: जी
0: रही है।
1: अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या होता है जब कॉल कनेक्ट होता है ना एकदम से, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है।
0: धड़कन तेज हो गई, अब कुछ थमी?
1: हाँ बिल्कुल नॉर्मल अब हो गया हूँ मैं। और आपको बताऊँ, काफी अच्छा मौसम है यहाँ पर, अभी रुक रुक के तेज बारिश हो रही है।
0: अच्छा चलिए, मौसम अच्छा हो गया और क्या चाहिए ना,
1: जी
0: बारिश होना
1: हाँ।
0: बहुत जरूरी है।
1: और
0: चलिए
1: अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो बाबा महाकालेश्वर बाबा के यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
0: सबसे बड़ी बात है, तो जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है आपके वहाँ, उसके लिए तो लोग बड़ी तादाद में आते होंगे, है ना?
1: जी बिल्कुल, कांवड़ यात्री आ रहे हैं और सभी के लिए मतलब काफी अच्छी सुविधा की हुई है यहाँ पर। जी आने जाने के लिए रास्ते काफी चौड़े हैं, भंडारे जगह जगह लगाए हुए हैं, और रहने के लिए निःशुल्क जगह उपलब्ध कराई है सभी यात्रियों को।
0: क्या बात है, क्या शानदार माहौल हो रहा होगा। तो ये जो
1: जी
0: महाकाल
1: हाँ
0: मंदिर है आपके वहाँ, इसकी विशेषता क्या है?
1: जी, महाकालेश्वर बाबा के मंदिर में जब एक बार किसी की अर्जी लग जाती है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है।
0: अच्छा, और कहते भी है ना कि ये यहाँ पर उत्तर या दक्षिण मुखी शिवलिंग है,
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: ये इसकी खास विशेषता बताई गई है जैसा
1: हाँ जी
0: हमने।
1: खास विशेषता है
0: तो
1: जी।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा कि आपके उज्जैन में जो है अभी बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं और सावन मना रहे हैं।
1: जी
0: तो 15 अगस्त भी करीब आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल करीब है। आप युवा
1: जी
0: हैं, क्या सोचते हैं आज के दौर में युवाओं के लिए देश प्रेम को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
1: सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक दूसरे से सद्भाव से रहे, प्रेम से रहे, और कहीं पर भी मतलब ऐसे कचरा कूटा ना फेंके और एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना रखे।
0: क्या बात है, आपने तो इंटरव्यू का बिल्कुल सही जवाब दे दिया है जो आपसे सवाल पूछा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही।
1: जी
0: कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: फिल्म का नाम है हेलो ब्रदर, और गाने के बोले हटा सावन की घटा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम,
0: नमस्कार
1: आप मंदाकिनी जी बोल रही है?
0: जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: पीयूष मेहता सूरत से।
0: स्वागत है आपका पीयूष जी, कैसे हैं आप?
1: बस बस मजे में।
0: आप तो विविध भारती के बहुत पुराने और पक्के श्रोता हैं हमारे,
1: स्थापना के समय से।
0: तब से आप सुनते हैं?
1: तो पहले शुरू से 2-4 साल वो बड़े लोग बजाते थे और सुनता था, बाद में 12 साल की उम्र से मैं ही ट्यून करने लगा था।
0: क्या बात है, तो बताइए मुझे पीयूष जी, 12 साल की उम्र में जब आप विविध भारती सुना करते थे, फिर आप युवा हुए, फिर आपने धीरे धीरे इस कार्यक्रम को सुना, और आज जब आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, तब और अब के कार्यक्रमों में क्या फर्क नजर आता है आपको?
1: प्रसारण की प्रक्रिया में फर्क है। पहले 2 स्टेशन से लाइव होते थे, एक ही स्क्रिप्ट अलग अलग अनाउंसर पढ़ते थे, गाने बजते थे, मुंबई और मद्रास जो आज चेन्नई है वो, बाद में वो टेप जाने शुरू हुए।
0: हाँ, वो तो आंतरिक प्रक्रिया है। आप एज ए लिसनर, एक श्रोता के रूप में क्या अंतर महसूस करते हैं? मतलब उस वक्त जिस तरह से प्रोग्राम पेश किए जाते थे, आज जिस तरह से पेश किए जाते हैं, क्या अंतर लगता है आपको?
1: जमाने के साथ विविध भारती कदम मिला के चल रही है,
0: मतलब दौड़ रही है एक तरह से। और आप मुझे ये भी बताइए, जब हम अपने कार्यक्रम देते हैं और बीच में जब हम वाद्य धुन बजाते हैं, तो आप उसका भी जिक्र करते हैं फेसबुक पेज पर कि भाई ये वाद्य धुन बजाई जा रही है, ये गुण आप में कैसे है, क्या क्या सीखा है आपने, कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं आप?
1: मैं थोड़ा बहुत मांसर्जन बजा लेता हूँ।
0: आप बजाइए, अगर सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए। अच्छा चलिए,
1: रास्ता गाने का फिल्म का सावरे सलोने के
0: बिल्कुल सुनाइए।

0: मेरी 77 अभी पूरे होने वाले हैं
1: सेवेंटी
0: सितंबर में।
1: सेवन इस उम्र में भी आप ये माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं ना?
0: कुछ हद तक बजा लेता हूँ,
1: बहुत
0: मैं ऐसा
1: अच्छा,
0: नहीं बोलता कि मैं संपूर्ण कलाकार हूँ
1: लेकिन
0: इसका।
1: इतने लंबे समय तक इस शौक को बनाए रखना और आज भी बजाना, हमें सुनाना, ये बहुत बड़ी बात है। कौन सा गाना सुनेंगे बताइए?
0: प्रेम पत्र का गाना, ये मेरे अंधेरे उजाले तो होते, सरोज
1: अरे बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप तो, आपकी पसंद का गीत सुनते हैं
0: चौधरी का संगीत है और
1: सलील
0: विमल
1: साहब
0: रॉय की फिल्म और शशि कपूर और साधना की अदाकारी है।
1: जी, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी, मैं जोधपुर से गिरधारी लाल विश्वकर्मा बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार गिरधारी जी। नमस्कार, जोधपुर राजस्थान से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, बरसात का मौसम चल रहा है।
0: अच्छा, बरसात हो रही है राजस्थान में, खासतौर से जोधपुर में?
1: थोड़ी थोड़ी हो रही है, कल भी थी, आज भी थोड़ा सा मौसम बना हुआ है। अच्छा,
0: चलिए, तो स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल ही नजदीक है और ऐसे में अगर मौसम अच्छा होगा तो हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल तैयार हो जाएगा।
1: हाँ,
0: क्योंकि वो स्टेडियम जाते हैं, परेड करते हैं, देशगान गाते हैं। आप क्या करते
1: जी,
0: हैं
1: जी,
0: गिरधारी जी?
1: जी मैं वैसे पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ और म्यूजिक का शौक है। मेरा काम के साथ साथ रेडियो चलता रहता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे रेडियो के बिना तो हम लोग काम ही नहीं कर सकते, तो हमारे साथ पास में जब हम काम करते हैं तो पास में रेडियो चलना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे को काम करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है और उसमें मन लगता है काम करने में।
0: तो रेडियो में कौन सा स्टेशन ट्यून करते हैं?

0: रेडियो सलून। सर हमारे स्थानीय जोधपुर।
1: संगीत का भी शौक है, बताइए किस तरह का संगीत सुनते हैं?
0: संगीत से मैं पुराने फिल्म के गाने पसंद करता हूँ और मैं जो है रिकॉर्ड्स कलेक्शन करने का मेरा शौक है।
1: अच्छा,
0: मैंने अपने घर पे ही एक आर्काइव बना रखा है, पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को स्टे करता हूँ और उनको डिजिटलाइज़ करता हूँ और सारा उनका कंप्यूटराइजेशन के ऊपर काफी रिकॉर्डिंग्सों को मैं शोध कार्य भी कर रहा हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स थे पुराने, जो नॉन फिल्मी फिल्मी, उन सब के ऊपर मेरा फोकस रहता है। मैं उनके संबंधित डाटा इकट्ठे करता हूँ। इस तरह का शौक मुझे बचपन से था, मुझे कम से कम 40 साल से मैं ये रिकॉर्ड कलेक्शन कर रहा हूँ।
1: क्या बात है, तो आपके पास कितने सारे रिकॉर्ड है फिर, ग्रामोफोन रिकॉर्ड जिन्हें अब हम देखना ही भूल गए हैं?
0: हाँ जी, मेरे पास काफी बड़ा कलेक्शन है।
1: तो घर में आपके पास वो ग्रामोफोन वाली मशीनें भी हैं जिन पर रखकर सुना जा सकता है निडिल लगा के?
0: म्यूजिक सिस्टम है सारा, वो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, मैं उनको रिकॉर्डिंग करता हूँ सारा।
1: क्या बात है, चलिए
0: का काम चल रहा है सारा।
1: बहुत अच्छा लगा ऐसे संगीत प्रेमी से बात करना। कौन सा गाना सुनेंगे आज गिरधारी जी आप?
0: फिल्म शोकिया 1951 की है, कुमार सेन का म्यूजिक है, लता मंगेशकर जी की आवाज है, सपना बन साजन आए।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लग गई है उनसे हमारा हमेशा की तरह करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य

0: श्रोताओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867 0288, दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सामिन, कहते हैं प्रेम एक ऐसी आग है जो अदृश्य रूप से जलती है, एक घाव जो दर्द करता है पर महसूस नहीं होता। यूं तो प्रेम करने का दावा हम सभी करते हैं, लेकिन अपने देश की माटी से, अपनी मातृभूमि से जिसने प्रेम किया, उन्हें आज हर कोई सैल्यूट कर रहा है। गीतकार की कलम में इतनी ताकत होती है कि उनकी कलम से निकले गीतों से वतन परस्ती का सोया हुआ जज्बा जाग उठता है। आजादी के परवानों की जिंदगी में मकसद को बयां करता ये गीत आज भी सर चढ़कर बोलता है। गीतकार रामप्रसाद और प्रेम धवन ने इसे कलमबद्ध किया। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला।

0: पसंद।
1: नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, बच्चे की सरल और देश के प्रति अटूट प्रेम को दिखाता ये गीत हम सभी ने सुना है। मेरा जूता है जापानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, देश की संस्कृति और पहचान को दर्शाता ये प्यारा सा गीत। जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं, देश के गौरव और संस्कृति की महानता को दर्शाता ये गीत। ये आह्वान करते हैं सभी गीत कि हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, इसकी माटी को नमन करते हैं। गीतकार शैलेंद्र की कलम से निकली रचनाओं ने देश प्रेम को दर्शाया और कहा, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो उतार ला जमीन पर।

इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। सचमुच शकील बदायूनी का लिखा ये गीत केवल एक गीत नहीं था, बल्कि एक आंदोलन था। आंदोलन, उनकी कलम में हर वो रंग शामिल था जिसकी समाज को दरकार है। इन गीतों को सुनकर ही देश के जाबाज सैनिकों के खून में एक उबाल सा आ जाता था। शकील साहब द्वारा रचित ये गीत नए आशावाद को प्रस्तुत करने वाला जैसे देशभक्ति गीत ही बन गया था।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अपनी मिट्टी और अपने देश के प्रति अथाह मोहब्बत ही हमें देशभक्त बनाती है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती जैसे कालजयी गीत रचने वाले गीतकार गुलशन बावरा कितने गहरे देशभक्त होंगे, ये गीत सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है। माँ धरती के गौरवगान से जुड़े गीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। गीतकार इंदिवर की कलम से निकला ये गीत भारत की संस्कृति और मूल्यों पर आधारित है। प्रेम सत्य और एकता की बात करता गीत, भारतीयों का अपनी जड़ों पर गर्व करता ये गीत, अपनी मातृभूमि से प्रेम करने का आग्रह करता गीत। इंदिवर साहब के गीतों की तासीर आज भी मोहब्बत बिखेरे हुए है, लेकिन जब उन गीतों से मिट्टी की खुशबू आने लगी तो जिंदगी और मौत का फर्क वो यूं समझा गए हमें। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम।

कलाकार साहिर लुधियानवी ने भी मातृभूमि को माँ की तरह प्यार किया। उनकी कलम ने भी देशभक्ति की भावना के बीज बोए। घनघोर अंधेरे के बीच भविष्य की चमकीली किरणें बिखेरते रहे उनके कालजयी गीत। साहिर ने दुनिया को बहुत कुछ कह दिया। वे लिखते हैं, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। कहते हैं, सच्चा देशभक्त अंजाम की परवाह किए बिना सच बोलता है। वही साहिर गीतकार ने कहा, इश्क आजाद है हिंदू न मुसलमान है इश्क, इश्क आजाद है हिंदू न मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क।

देश प्रेम और माटी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा कोई इन रणबांकुरों से सीखे। अपनी मोहब्बत का इजहार एक शहीद ये कहकर करता है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। जंग के मोर्चे पर तैनात एक फौजी के जज्बातों को गीतकार कैफी आजमी ने बहुत खूबसूरती से कागज पे उकेरा। अगर ये गीतकार ये शायर केवल इश्कबाजी पर ही अटके रह जाते तो शायद उनकी कलम ये विद्रोह कभी ना कर पाती, ये गीत कभी ना उकेर पाती।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को सलमा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, शुभ संध्या। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं शिवहरी, फिल्म का नाम है चांदनी।

0: मुझे ये काम किया? तुमने मुझे बदनाम किया।
1: बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।

आवाज की दुनिया के दोस्तों, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। नगमा निगार है हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार।

मारता हूँ तुझ पे ही अपनी कसम। हरे वादा निभाने देखो आए है सनम, लब पे दुआएं लाए तेरे लिए हम, दिल जो दिया है तुझे फिर क्या है गम, मारता हूँ तुझ पे ही अपनी कसम। तू मेरी जल परी, दुनिया जले तो जले।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है चालबाज।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये

0: सबसे बढ़िया रोल नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जय
1: साथियों, आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। तर्ज है शंकर जय किशन की, गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, फिल्म का नाम है सूरज।

साथियों, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप ये जो गीत सुन रहे हैं, इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है प्रिंस।

साथियों, अभी आपने सुना लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी को। गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीत था शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम था प्रिंस। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। तर्ज है शंकर जयकिशन की, गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, फिल्म का नाम है सूरज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मानसून सत्र
1: जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं। सोफा साफ कर दिया?
2: हाँ।
1: टेबल सेट कर दी?
2: बिल्कुल।
1: घर के बाहर?
2: बाहर वहाँ तो कचरा पड़ा है।
3: अक्सर हम घर के अंदर की सफाई पर ध्यान देते हैं लेकिन घर के बाहर की सफाई को भूल जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि घर का दरवाजा खुलते ही हमारा मोहल्ला और हमारा शहर ही हमारी पहचान बन जाता है।
4: इसलिए घर के साथ शहर की सफाई पर भी ध्यान दें और कचरा केवल डस्टबिन में ही फेंके, वो भी गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में, ताकि गीले कचरे से कंपोस्ट बन सके और सूखे कचरे और प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सके।
3: साफ घर के साथ साथ साफ मोहल्ला और साफ शहर भी बनाइए। वेस्ट मैनेजमेंट में अपना योगदान दीजिए। एक बात रखो याद कि आज की सफाई बनेगी कल की बुनियाद।
1: जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं। सोफा साफ कर दिया?
2: हाँ।
1: टेबल सेट कर दी?
2: बिल्कुल।
1: घर के बाहर?
2: बाहर वहाँ तो कचरा पड़ा है।
3: अक्सर हम घर के अंदर की सफाई पर ध्यान देते हैं लेकिन घर के बाहर की सफाई को भूल जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि घर का दरवाजा खुलते ही हमारा मोहल्ला और हमारा शहर ही हमारी पहचान बन जाता है।
4: इसलिए घर के साथ शहर की सफाई पर भी ध्यान दें और कचरा केवल डस्टबिन में ही फेंके, वो भी गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में, ताकि गीले कचरे से कंपोस्ट बन सके और सूखे कचरे और प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सके।
3: साफ घर के साथ साथ साफ मोहल्ला और साफ शहर भी बनाइए। वेस्ट मैनेजमेंट में अपना योगदान दीजिए। एक बात रखो याद कि आज की सफाई बनेगी कल की बुनियाद।
0: पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्र के प्रति एकता और समर्पण का संदेश दिया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। श्री बादल की हालत खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरोमणि हमले की जांच के आदेश दिए हैं। ये पिछले 2 वर्षों में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। इससे पहले दिसंबर 2024 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अल कायदा ए कायदा ए हिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन सीनियर भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम का अगला गीत है सुरेश वाडकर की आवाज में। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं इलैया राजा और फिल्म का नाम है सदमा।

अनजान का लिखा गीत सुनिए। आवाजें हैं शब्बीर कुमार और आशा भोसले की, धुन है कल्याण जी आनंद जी की, फिल्म का नाम है सल्तनत।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है महासटेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें,
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: आवाज की दुनिया के दोस्तों के लिए कार्यक्रम में अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। फिल्म का नाम है नगीना।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और अलीशा चिनॉय की आवाजों में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया।

0: कार्यक्रम तराने नए पुराने अब समाप्त होता है।
1: तराने

0: राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से लीजिए सुनिए झरोखा के अंतर्गत हमारे आज के शेष कार्यक्रम और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से बस कुछ ही देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनिए संगीत सरिता। शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिए इनसे मिलिए में साउंड इंजीनियर और वॉइस आर्टिस्ट।
1: एक मिनट में आप क्या कर सकते हैं, एक मैसेज भेज सकते हैं, एक कॉल कर सकते हैं, एक रील देख सकते हैं,
2: यही नहीं अभी और सुनिए।
1: लेकिन क्या आपको पता है कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने में भी एक मिनट या उससे भी कम वक्त लगता है, 60 सेकंड से भी कम, और इसका असर सालों तक रह सकता है। कम कचरा लैंडफिल में जाएगा, ज्यादा वेस्ट रिसाइकल होगा, गीले कचरे से कंपोस्ट बनेगा, हवा पानी और जमीन का प्रदूषण कम होगा।
3: बड़े बदलाव अक्सर छोटी आदतों से ही शुरू होते हैं, तो आज एक मिनट निकालिए और एक नई आदत डालिए। गीला और सूखा कचरा अलग अलग कीजिए, शहर साफ रखिए। रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट से अपने आज के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी एक बेहतर भविष्य दें।
1: एक मिनट में आप क्या कर सकते हैं, एक मैसेज भेज सकते हैं, एक कॉल कर सकते हैं, एक रील देख सकते हैं,
2: यही नहीं अभी और सुनिए।
1: लेकिन क्या आपको पता है कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने में भी एक मिनट या उससे भी कम वक्त लगता है, 60 सेकंड से भी कम, और इसका असर सालों तक रह सकता है। कम कचरा लैंडफिल में जाएगा, ज्यादा वेस्ट रिसाइकल होगा, गीले कचरे से कंपोस्ट बनेगा, हवा पानी और जमीन का प्रदूषण कम होगा।
3: बड़े बदलाव अक्सर छोटी आदतों से ही शुरू होते हैं, तो आज एक मिनट निकालिए और एक नई आदत डालिए। गीला और सूखा कचरा अलग अलग कीजिए, शहर साफ रखिए। रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट से अपने आज के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी एक बेहतर भविष्य दें।
0: ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता शमी कपूर पर, प्रस्तुत करता है रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं 9:30 पर। कल दिन में 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश में सुनिए श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी गीत मंदाकिनी जोशी के साथ, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। दिन में 11 बजे मिश्रित संगीत का कार्यक्रम प्रसारित करेंगे रंग तरंग। 12:05 पर सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। आज की तरह कल भी 1 बजे हमारे साथ तय कीजिए संगीत का सफर, कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। 2:30 पर होंगे सदाबहार नखमे। दिन में 3 बजे सखियों के फरमाइशी गीत सुनिए आरती श्रीवास्तव के साथ, कार्यक्रम हेलो सहेली में, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। दोपहर बाद 4 बजे पटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी में सुनिए अलका अग्रवाल सिकतिया की लिखी कहानी अब गम नहीं, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। शाम 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण होगा और 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने।

बजे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। कल रात्रि 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे झलकी संदेश। लेखिका है निर्मला अग्रवाल, निर्देशक हैं कमल दत्त। रात 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। कल रात 10 बजे छाया गीत में सुनिए नेहा शर्मा को, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। कल रात 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे कार्यक्रम होगा रंग तरंग। तो ये थी जानकारी आज के शेष और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। संध्या रंजन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए सुने लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी की रचना, संगीत है शिव हरी का, फिल्म का नाम है लम्हे।

अगला भक्ति गीत है मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। गीत रचना है राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना रवि की। फिल्म का नाम है खानदान।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जय कहा हुजूर।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संध्या रंजन विविध भारती से।

0: श्रोताओं नमस्कार। वर्षा चौमासा श्रृंखला में आज की कड़ी है 13वीं कड़ी। कल मैंने कहा था कि कजरी को लेके मन में एक सवाल है। आइए शुभा जी से पूछती हूँ, आप भी सुने और क्या कहती हैं मैं भी सुनूं। शुभा जी, कजरी कहने से जो कुछ अर्थ का बोध होता है
1: जी,
0: तो क्या क्या है इसका जो भावार्थ?
1: अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कजरी जो शब्द है उसका सीधा संबंध कजरा या काजल से है, और जिस प्रकार वर्षा ऋतु में उमड़ने वाले बादल कजरे के समान काले होते हैं, वैसे ही उसी प्रकार का साहित्य कजरी में आपको मिलता है, इसलिए कजरी या कजली भी कहा जाता है इसे। और कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि मिर्ज़ापुरी कजरी बहुत प्रचलित है, लोकप्रिय है, तो मिर्ज़ापुर जिले में विंध्यवासिनी देवी का स्थान है, जिनको कजली देवी भी कहा जाता है
0: जी।
1: और श्याम रंग श्याम वर्ण की देवी हैं वो, उनके लिए ये चीज़ें गाई जाती हैं, इस कारण
0: कजली देवी
1: जी, कजली देवी।
0: हाँ, हाँ।
1: तो उसका भी एक संबंध
0: जी
1: इसके नामकरण से है। तो ये अनेक ऐसी चीज़ें मिलती हैं, कुछ कथा कुछ किंवदंती कि कैसे इसका नाम कजरी पड़ा।
0: काले बादल जब आकाश में छा जाते हैं तो पूरा वातावरण ही कैसा स्याह स्याह सा, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है ना
1: जी।
0: और वाकई मन में फिर हुक उठने लगती है, फिर वो संयोग श्रृंगार हो वियोग श्रृंगार हो, उसकी जो मिठास है
1: जी बिल्कुल,
0: वो मिठास मुझे लगता है कि इस कजरी में
1: जी जरूर
0: खुल जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आज आप क्या फिर से एक आध कजरी और सुनाएंगी?
1: एक कजरी का चयन किया है मैंने, भोजपुरी की कजरी है ये, और इससे मुझे जो एक बात याद में आई वो ये कि हर ऋतु के लिए अलग जो परिधान है वो भी बदलता है। अब अगर ग्रीष्म ऋतु में हम रेशमी कपड़ा पहन लें तो बहुत गर्मी लगेगी, या बहुत मोटा कुछ कपड़ा पहन लें, शॉल इत्यादि पहन लें तो गर्मी लगेगी। उसी प्रकार जब वर्षा ऋतु है तो किस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, ये भी इन गीतों में, हमारे भारतीय संगीत में ये भी आपको पता चलता है।
0: कितनी अनूठी बात है
1: जी। हाँ। पूरी एक संस्कृति का चित्रण होता है, तो कौन सा पकवान, कौन सी चीज किस ऋतु में खाई जानी चाहिए, ये कैसी चीजें बननी चाहिए, क्या रीति रिवाज हैं, वो सब इनसे पता चलता है। तो इस कजरी में ये कहा गया है कि रंग दे गुलाबी मोरी साड़ी रंगरेजवा,
0: मतलब ये परिधान का संबंध प्रकृति से जुड़ा गया है इसमें, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: तो वो कहती है कि रंग दे गुलाबी मोरी साड़ी रंगरेजवा, बीचे बीचे रंगी है गुलाबी रंगरेजवा, मतलब साड़ी का जो जो बीच का जो हिस्सा है उसे तो गुलाबी रंगिएगा, लेकिन धानी रंग रंगी है किनारी रंगरेजवा।
0: वाह,
1: धानी किनारी होनी चाहिए, बॉर्डर जो है वो धानी रंग का होना चाहिए। सरिया पहर हम बगिया में गईली, जब साड़ी पहन के बाग में बगीचे में गए, पड़े लागल सावन के फुहारी रंगरेजवा, भीग गई चुनरी वर्षा में, रिमझिम रिमझिम बरसे बदरवा, लागेला हिंडोला डारी डारी रंगरेजवा।

0: झूले भी पड़े हैं,
1: वो भी डाली डाली,
0: हाँ हर डाली पे, झूल झूल झूलवा पर गावे कजरिया, उस पे झूले पे बैठ के कजरी गाई जाती है, झूल झूल झूलवा पर गावे कजरिया, पिया संग सुंदर नारी रंग रिजवा।
1: वाह,
0: तो ये चीज आपको सुनाना चाहिए।
1: वो नारी तभी सुंदर होती है जब वो पिया के संग होती है। शुभा जी, आप मुझे ये तो कजरी हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मिर्जापुरी और बनारसी कजरी के बीच जो भेद है, कुछ गाने का भेद है?
0: भाषा का ज्यादा भेद है, जैसे कि आप जानती हैं कि हर कुछ किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, तो बनारसी बोली और मिर्जापुरी बोली, और उसी तरह भोजपुरी की भी कजरा, इनमें भाषा का ज्यादा,
1: चार कोस पे पानी बदला, हाँ, कोस पे पानी
0: बदली, इस तरह से। और धुन भी जो है वो पारंपरिक जो धुन है
1: जी,
0: वो अलग अलग बदलती जाती
1: तो
0: है।
1: तो अभी ये जो कजरी आपने सुनाई है जी, जो शब्द बताए हैं, वो मिर्जापुरी,
0: ये भोजपुरी कजरी है
1: जी।

0: शुभा जी, मैं श्रोताओं के साथ कल के लिए इंतजार करूंगी। आज यहीं रुकते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: मिनट में आप क्या कर सकते हैं, एक मैसेज भेज सकते हैं, एक कॉल कर सकते हैं, एक रील देख सकते हैं।
1: यही नहीं, अभी और सुनिए।
0: लेकिन क्या आपको पता है कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने में भी एक मिनट या उससे भी कम वक्त लगता है, 60 सेकंड से भी कम, और इसका असर सालों तक रह सकता है। कम कचरा लैंडफिल में जाएगा, ज्यादा वेस्ट रिसाइकल होगा, गीले कचरे से कंपोस्ट बनेगा, हवा पानी और जमीन का प्रदूषण कम होगा।
2: बड़े बदलाव अक्सर छोटी आदतों से ही शुरू होते हैं, तो आज एक मिनट निकालिए और एक नई आदत डालिए। गीला और सूखा कचरा अलग अलग कीजिए, शहर साफ रखिए। रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट से अपने आज के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी एक बेहतर भविष्य दें।
0: एक मिनट में आप क्या कर सकते हैं, एक मैसेज भेज सकते हैं, एक कॉल कर सकते हैं, एक रील देख सकते हैं।
1: यही नहीं, अभी और सुनिए।
0: लेकिन क्या आपको पता है कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने में भी एक मिनट या उससे भी कम वक्त लगता है, 60 सेकंड से भी कम, और इसका असर सालों तक रह सकता है। कम कचरा लैंडफिल में जाएगा, ज्यादा वेस्ट रिसाइकल होगा, गीले कचरे से कंपोस्ट बनेगा, हवा पानी और जमीन का प्रदूषण कम होगा।
2: बड़े बदलाव अक्सर छोटी आदतों से ही शुरू होते हैं, तो आज एक मिनट निकालिए और एक नई आदत डालिए। गीला और सूखा कचरा अलग अलग कीजिए, शहर साफ रखिए। रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट से अपने आज के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी एक बेहतर भविष्य दें।
3: सो योर प्लेस और माइन, उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डोम है?
4: कॉन्डोम? लेकिन हम तो
3: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
4: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
5: आप भी ये बात याद रखें, संयम वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत, गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल

थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: भारतीय सेना।
1: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
3: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
3: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
3: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
3: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: संगम, इस फिल्म का गीत सुनिए मुकेश और वैजयंती माला की आवाजों में। नगमा निगार है हसरत जयपुरी, संगीत है

0: हर मौसम है प्यार का मौसम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, हर बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं
1: नहीं नहीं, नहीं।

सूरज। इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है हसरत जयपुरी, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक फॉरगिव गिविंग बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को। वैसे मेरे अंदर बहुत वो वाली क्वालिटी नहीं है, ये मुझे ये पसंद नहीं है कि ये वही वही कुर्ते पहन के आ जाते हैं। यशपाल तुमको कौन सा रंग पसंद है?
2: जो कुर्ता हमेशा पहनता हूँ।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: साथी इस फिल्म का नगमा सुनिए मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। गीत के बोलों को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, तर्ज है नौशाद की।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत है और फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। भोपाल के बोट क्लब पर 350 से अधिक तिरंगा सजी नावों के साथ भव्य नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। माता अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्य स्मृति पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और भोपाल में संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन। मुख्यमंत्री ने युवाओं से राजनीति में सक्रिय भागीदारी का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। भारी हंगामे और गतिरोध के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही संसद का मानसून सत्र औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और कई विधेयक पारित किए गए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आज संसद के मानसून सत्र के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये सम्मान संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं सहित विभिन्न प्रदर्शन कलाओं में योगदान के लिए दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को बचाने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज भोपाल, ओंकारेश्वर, उज्जैन, मंडला, बैतूल, मैहर और बालाघाट समेत कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। भोपाल में बड़ा तालाब पर 350 से ज्यादा तिरंगा सजी नावों के साथ नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी भोपाल तिरंगामय होती हुई नजर आ रही है। उसी क्रम में गुरुवार को शहर के ऐतिहासिक बोट क्लब पर विशाल नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। देशभक्ति गीतों से पूरा माहौल इस दौरान राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। युवा खिलाड़ियों ने काइकिंग, केनोइंग और केनो सलालम शो के जरिए शानदार प्रदर्शन करते हुए तिरंगे को सलाम किया। इस दौरान तालाब के बीच देश में पहली बार फ्लोटिंग तिरंगा भी बनाया गया, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वयं नौका सवार होकर देश सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे।
0: जबकि ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 151 नावों से यात्रा निकाली गई। उज्जैन में अधिकारियों ने घोड़ों पर सवार होकर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं मंडला में सीआरपीएफ ने बाइक रैली निकाली। बैतूल, गुना, खंडवा, शहडोल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के रविन्द्र भवन में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्य स्मृति पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने जनसेवा, सुशासन और समाज के लिए उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय गड़रिया महासभा की ओर से किया गया। कार्यक्रम में डॉ. यादव ने पाल गड़रिया बोर्ड के गठन की घोषणा भी की।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम सबके साथ मिलकर के सनातन के प्रत्येक धारा को समृद्ध करने के लिए आगे बढ़े हैं। इसलिए गोपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। बड़ी जल्दी पाल गड़रिया बोर्ड का गठन भी होगा।
0: भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आज स्वतंत्रता दिवस के राज्यस्तरीय मुख्य समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान 15 अगस्त को होने वाले समारोह की पूरी प्रक्रिया को तय प्रोटोकॉल के अनुसार दोहराया गया। परेड, मार्च पास्ट और ध्वजारोहण के साथ सुरक्षा और प्रवेश व्यवस्था का भी परीक्षण किया गया। 15 अगस्त को लाल परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov

0: newsonair.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल स्थित विधानसभा भवन में संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन आज किया गया, जिसमें 12 राज्यों और 58 शहरों के युवा शामिल हुए। इस कार्यक्रम में युवाओं ने संसदीय माहौल में नीतिगत और विधायी मुद्दों पर चर्चा की। पहले दिन भारत के बढ़ते नैरेटिव संकट पर बहस हुई, वहीं कल समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा और संसदीय प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश के युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देना चाहिए। रायसेन जिले में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़कर किसानों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों से आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के साथ प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण को अपनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को समय पर अच्छे बीज, खाद और पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व अंगदान दिवस के मौके पर कहा कि अंगदान जरूरतमंदों के लिए नई आशा और नया जीवन देने का महान संकल्प है। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में अंगदान के लिए आगे आने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंगदान के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने और इसे जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का अंगदान कई जरूरतमंद लोगों के जीवन में नई उम्मीद ला सकता है। भोपाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से आज क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स परिसर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, स्वतंत्रता संग्राम और हर घर तिरंगा अभियान पर आधारित दो दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। महापौर मालती राय ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को विभाजन की त्रासदी से सबक लेते हुए देश प्रेम और धर्म संस्कृति के संरक्षण के जज्बे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन विभीषिका से जुड़ी तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। ये प्रदर्शनी कल शाम 5 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के 71वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने पूर्व छात्रों के सहयोग से बने आधुनिक फुटसल स्पोर्ट्स एरिना का लोकार्पण किया और मल्टीडिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने विश्व अंगदान दिवस पर लोगों से अंगदान का संकल्प लेने की भी अपील की। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में 18 अगस्त से समरसता संकल्प अभियान और यात्रा शुरू की जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश, जिले और गांव स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसंपर्क से जुड़े कार्यक्रम होंगे, जहां जिलों के लिए पावन कलश रवाना किए जाएंगे। 20 अगस्त से 10 सितंबर तक सभी जिलों में कलश रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके अलावा 18 से 31 अगस्त तक संत संपर्क अभियान और 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा आयोजित की जाएगी। प्रदेश में एनालॉग पनीर के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले दिन प्रदेश भर में करीब 8,135 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई। भोपाल में कई डेयरियों और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच कर पनीर के नमूने लैब भेजे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने तक इसे एनालॉग पनीर नहीं कहा जा सकता। इंदौर में भी करीब 800 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया गया है। सरकार ने एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और जांच में गड़बड़ी मिलने पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के बाद अब मानसून का स्ट्रांग सिस्टम पूर्वी हिस्से में एक्टिव होने जा रहा है। मौसम विभाग ने कल के लिए जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा 15 अगस्त को रविन्द्र भवन में आयोजित आजादी के महापर्व में प्रख्यात गायिका कविता कृष्णमूर्ति देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देंगी। देवास में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सघन HIV जागरूकता अभियान के तहत एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। शहडोल में स्थानीय उद्यमियों और समूहों के लिए लघु उद्योग भारती के सहयोग से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अनूपपुर में स्वतंत्रता दिवस पर जिले की सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में PM पोषण योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए विशेष भोज का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनजाति बाहुल्य गांवों में आदि सेवा केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। श्योपुर में 14 अगस्त को विकासखंड कराहल के ग्राम बरगवा में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और आगरमालवा में श्रावण माह के उपलक्ष्य में विधायक मधु गहलोत के नेतृत्व में पुरानी कृषि उपज मंडी से 51,000 कलशों के साथ विशाल कलश यात्रा की शुरुआत की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र हंगामे के बीच अनिश्चित काल के लिए स्थगित। भोपाल के बोट क्लब पर 350 से अधिक तिरंगा सजी नावों के साथ भव्य नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। माता अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्य स्मृति पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की और भोपाल में संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन। मुख्यमंत्री ने युवाओं से राजनीति में सक्रिय भागीदारी का किया आह्वान। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: बहुत क्रिएटिव जॉब है, करियर करने के लिए बहुत अच्छा है, बट ये भूल जाइए कि इट इज नॉट 10-6 वाला जॉब। बस एक बार चालू किया काम, ये घंटों तक चलता जाएगा, पूरा टेक्निकल है।
6: और चूंकि साउंड इंजीनियरिंग की बात होती है तो साउंड रिकॉर्डिस्ट जब आप कहलाती हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत बतौर एक फीमेल होने के आपने कैसे की, या अचानक कोई ऐसी घटना घटी, या आपने कोई खास ट्रेनिंग लेने का सोचा था पढ़ाई के बाद, तो क्या हुआ विस्तार से हमारे सुनने वालों को बताइए।
5: एक्चुअली हमारा स्टूडियो 97 से था और मेरे डैडी इस इंडस्ट्री में है, बहुत फेमस है वो, विस्लिंग विजार्ड।
6: अच्छा, क्या नाम है उनका?
5: नागेश सुर्वे।
6: जी,
5: जितने फिल्मों में सीटिया है विसल्स, वो सब उन्होंने बजाई है। 1600 के ऊपर फिल्मों में उन्होंने सीटिया बजाई है।
6: तो दोस्तों, सुना आपने, रूपाली जी ने बताया कि इनके पिताजी श्री नागेश सुर्वे जी विस्लर आर्टिस्ट हैं। इन्होंने अपने मुंह से बजाने वाली सीटी से धुनों को सजाया है कई गीतों की, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप बताइए, जो मैंने प्रश्न किया था कि ये दिमाग में कैसे आया कि साउंड रिकॉर्डिस्ट बनना है?
5: बिकॉज ये मेरा बैकग्राउंड था फिल्म का और स्टूडियो था, तो पहले से पता था ये इंडस्ट्री कैसी है। सेकेंडली, हम लोग 2 सिस्टर्स ही है। एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था, हमारे स्टूडियो में श्वास पिक्चर का रिकॉर्डिंग होने वाला था,
6: मराठी
5: फिल्म श्वास, राइट। और तभी तो डैडी ने रिकॉर्डिस्ट रखे थे जॉब के लिए
6: जी।
5: 2 दिन पहले वो रिकॉर्डिस्ट ने फोन करके कहा कि मुझे कहीं और काम मिला है, कहीं और जा रहा हूँ। और ये पुराने लोगों का कैसे, दे आर वेरी डेडिकेटेड, एक बार जबान दी तो दिया,
6: कमिटमेंट,
5: राइट। तो डैडी ने उस चीज का बहुत टेंशन लिया। तभी तो मैं खैर बहुत छोटी थी, शायद से 9th में रहूंगी मैं, 9th-10th में। एंड बड़ी सिस्टर जो मेरी है, उसका इस लाइन से कोई कनेक्शन नहीं, शी इज इनटू एनिमेशन, आर्टिस्ट है वो। तो तभी डैडी को एक हल्का सा स्ट्रोक आ गया था, जिससे भगवान की दया से फिर से वो आ गए नीचे,
6: झटका लगा,
5: पूरा पैरालिसिस का स्ट्रोक आया था बकायदा, पर वो उसमें से फिर से रिकवर हो गए। पर वो टाइम बहुत क्रूशियल था कि एक तो वो सिंगल अर्नर थे, हम लोग 3 फीमेल्स घर पे। तो तभी मैंने सोचा कि जिस चीज के वजह से, और कोई तो स्टूडियो आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, तो हमेशा इन लोग के ऊपर क्यों डिपेंड रहना चाहिए, कुछ तो खुद से क्यों नहीं हम स्टार्ट कर सकते। मैंने इंस्टीट्यूट्स में जाकर पूछा तो वहां पर 18+ था फॉर दिस कोर्स, जो मैं नहीं थी। मैं जस्ट 10th पास हुई थी, आई वॉज 16। तो मैंने रिकॉर्डिस्ट से पूछा कि आप मुझे सिखाइए जो भी है। तो उनके टेंट्रम्स कि नहीं, आपसे नहीं जमेगा, लड़कियों का काम ही नहीं है ये।
6: ओहो,
5: मैंने ठीक है, चलो आप ऐसा बोलते तो भी ठीक है, पर मैंने ये जिद पकड़ के रखा था कि मैं बस रिकॉर्ड साउंड इंजीनियर ही बनूंगी। और मैं दिन रात खुद से ही स्टडी करने लगी कि ये ऐसा हुआ, फॉल्स निकलते थे, बहुत सारे एरर्स आते थे, ये वो करके, पर मैंने सीख लिया। अभी मुझे इतना डीपली पता है कि जो बच्चा जाके सीख के नहीं आ सकता है, उतना डीपली पता है कि ये सिस्टम कैसा है। एंड वैसे करके अभी तो खैर बहुत सालों से साउंड इंजीनियरिंग का चल रहा है मेरा अच्छे से।
6: ये शुरुआत आपकी अच्छी हुई कि देखिए कहीं ना कहीं किसी का कमिटमेंट ना टूटे अपने पिता का, और इसके लिए आपने प्रण किया कि मैं सीख कर रहूंगी, और आपने सीखा। तो इसमें कई तरह के जो काम होते हैं, जैसे आपने कहा कि टाइम का कोई बंधन नहीं होता, रात में भी काम होता है।
5: हाँ जी।
6: क्योंकि जैसी जरूरत होती है क्लाइंट की, वैसा काम आपको करना पड़ता है।
5: बिकॉज़ ये क्या पता है, हम ये सब प्रोग्राम जो रहते हैं वो ऑन एयर जाते हैं, डेट्स ऑलरेडी निकली होती है, तो हम नहीं बोल सकते कि अरे आज मुझे नहीं जमेगा, या आज मेरा फेस्टिवल है, या नहीं, देना ही पड़ता है।

0: उससे लिंक्ड बहुत सारी चीजें होती है, तो ये मेरा लेट हुआ तो आगे सब लेट होगा।
1: अच्छा ये बताइए रूपाली, आपकी साउंड इंजीनियरिंग का जो कोर्स भी किया आपने, बाद में सब कुछ सीखा साउंड रिकॉर्डिस्ट बतौर, एक जम गई आप, तो कई कलाकार आपके समक्ष ऐसे माइक्रोफोन पर आते होंगे डबिंग करने या वॉइस आर्टिस्ट के रूप में जो वॉइसिंग करते हैं, कि जहां जरूरत पड़ी और कमिटमेंट टूट गया और कहीं कोई ना कोई नहीं आया और आपको भी वो काम करना पड़ा हो।
0: हाँ जरूर। मैंने डबिंग बहुत पहले सीखा एक्चुअली,
1: अच्छा
0: रिकॉर्डिंग से पहले।
1: ओके
0: जब मैं 7th में थी, मेरे स्टूडियो में हैरी पॉटर का ऑडिशन चल रहा था।
1: बहुत ही फेमस सीरीज
0: हाँ
1: है।
0: हाँ सबसे पहला वाला सीजन था ये, फर्स्ट फिल्म, सबसे पहली
1: जी
0: वाली। एंड मैं तभी वैसे ही बाहर पैंट्री था, वहां पर ऐसे ही खुद का स्टूडियो है तो बैठ के पढ़ाई करो, कुछ भी घर का ही है सब मामला। सबसे लास्ट ऑडिशन मैंने दी थी, रॉन वीजली एक कैरेक्टर है उसमें, वो
1: अच्छा
0: तीनों में से एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। और मैं ली चलो ट्राई करती हूँ, ऐसी देख देख के तो पता था कि कैसे करते हैं, मैं ली ट्राई भी कर लेती हूँ। तो ऑडिशन दे दिया एंड वो अप्रूव हो गया। डबिंग का तो तभी बिल्कुल भी पता नहीं था कैसे करते हैं।
1: और उस दौर में तो सिंकिंग करना पड़ता था।
0: हाँ सिंक में ही, बिकॉज ये सब अलग दूसरे लैंग्वेज से हिंदी में डब होती है,
1: जी जी जी
0: तो सिंक बकायदा करना पड़ता है। और फाइनल करने के लिए फेमस स्टूडियो में इसका डब हुआ था फाइनल।
1: ओके
0: एंड तभी बहुत सारी चीजें सीखी कि डबिंग कैसे होता है। तो उसके बाद डबिंग का जो जर्नी मेरा स्टार्ट ही हो गया था। बहुत सारी फिल्मों में, सीरीज, काफी कैरेक्टर्स डब हुए और अभी भी करती हूँ।
1: जी, हम ये आपसे और भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये जानेंगे कि साउंड रिकॉर्डिस्ट का जो काम होता है उसमें प्रमुख रूप से आपको क्या ध्यान रखना होता है और आर्टिस्ट को किस तरह संभालती हैं आप।
0: अभी खुद आर्टिस्ट होने की वजह से ये एक प्लस पॉइंट होता है कि मैं आर्टिस्ट को समझ सकती हूँ। टेक्निकली जब हम डब करने जाते हैं या वॉइस या कोई भी रिकॉर्डिंग, तो 10 बार रिकॉर्डिंग लो या 10 बार वही चीज लो नहीं मतलब बनता है। वो चीज मिली तो पहले टेक में भी मिल सकती है।
1: इम्पैक्ट
0: एग्जैक्टली जो चाहिए वो पहले चीज में भी मिल सकती है। तो वो कान इतने तैयार हुए हैं अभी कि मुझे लगा तो सेकेंड टेक या थर्ड टेक तो पहले में ही हो जाता है। सेकेंडली कंफर्ट लेवल एक अलग सा है, मैं समझ सकती हूँ उसको कि हर एक पूरी लाइन रिपीट करना बार बार ये बहुत डिफिकल्ट रहता है।
1: जी
0: जब हम सुनते हैं तो दिमाग में बैठती है कि अरे ये इमोशंस थे, ये एक्सप्रेशंस थे, पहले बार निकल जाती है, फिर से ये 10 बार लेने से अलग अलग अलग फिर चेंज हो जाता है। तो टेक्निकली ये इजी हो जाता है, एक ये बन जाता है कि साउंड इंजीनियर होने के बावजूद एक आर्टिस्ट होने की वजह से रिकॉर्डिंग अच्छा होता है और जल्दी हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, और अभी तो जमाना डिजिटल है तो सारी
0: यस
1: प्रक्रियाएं भी आसान हैं,
0: एब्सोल्युटली
1: है ना। पहले के दौर से आप काम करती आ रही हैं, इक्विपमेंट बदले हैं,
0: राइट
1: नए दौर पे आप काम कर रही हैं,
0: राइट
1: तो बदलाव तो आपने महसूस किया होगा। वैसे आपने अभी जिक्र किया था कि आपकी जो दीदी है वो एनिमेशन से जुड़ी
0: हाँ
1: हैं
0: जी
1: और फादर जो हैं वो भी कलाकार हैं, वायोलिन वादक भी रहे हैं
0: हाँ,
1: नागेश जी तो,
0: वॉयलिन भी
1: है
0: बजाते
1: ना,
0: थे।
1: और विस्लर आर्टिस्ट तो ही हैं, तो कहीं ना कहीं एनिमेशन से भी आपका वास्ता पड़ा होगा, कहीं एनिमेशन कैरेक्टर भी आपने किए हैं वॉइस
0: काफी सारे किए,
1: जैसे।
0: डेनिस द मेनेस का डेनिस था, फिर एक डोरा द एक्सप्लोरर नाम की सीरीज थी उसमें एक छोटा सा मंकी था उसका किया हुआ है, फिर परमैन नाम की एक सीरीज था उसमें साबू किया हुआ है।
1: अच्छा, तो हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को क्रम से आप पहले कैरेक्टर का नाम बताइए और उसकी नकल बताइए।
0: अभी जैसे लड़की होकर मेरे वॉइस में काफी बेस है, मैं मैक्सिमम कैरेक्टर्स लड़कों का ही डब करती हूँ। जैसे नॉर्मली अभी मैं बताती हूँ, साबू का जो है परमैन में, वो ऐसा बोलता है, ये आपका विविध भारती बहुत अच्छा है, यहाँ पर आके कुछ अलग ही महसूस होता है, ऐसा है। फिर जो रॉन वीजली, ये एनिमेटेड कैरेक्टर नहीं है, ये रियल
1: जी
0: लाइफ कैरेक्टर है,
1: जी जी
0: तो वो ऐसा बोलता है कि हैरी वहां पर खतरा महसूस हो रहा है, मुझे लगता है हमें जाना चाहिए, ये वैसा बोलता है।
1: साउंड वेरिएशन
0: हाँ तो
1: जी।
0: कोई बच्चा रहता है, जैसे डेनिस द मेनेस का जो बच्चा किया था मैंने, एकदम छोटा बेबी था, वो ऐसा बोलता है, डेनिस मुझे मुझे ना भूख लगी है, मुझे खाने दो ना तो मैं बहुत रोऊंगा।
1: बहुत अच्छे।
0: आजकल
1: अच्छा
0: एक और चीज काफी वॉइसिंग की होती है, IVRs,
1: वो क्या है।
0: जो हम मोबाइल में फोन करते हैं, तो जैसे नमस्कार, ये कॉल उपलब्ध नहीं है, कृपया दोबारा कॉल कीजिए,
1: जी जी जी
0: ये आजकल काफी वॉइसिंग में होता है, तो वो काफी लैंग्वेजेस में हम करते हैं।
1: अच्छा एक बार मान लीजिए करके बताइए, जैसे मैंने डायल किया है।
0: ओके, तो मैं आपका नाम लेके ही बोल देती हूँ, राजेंद्र जी इस वक्त व्यस्त है, कृपया दोबारा कॉल कीजिए।
1: हमने ये भी सुना है कि

0: आपके पिताजी की तरह आप भी विसलिंग करती हैं?
1: हाँ, एक्चुअली डैडी ने तो बहुत 1600 के ऊपर फिल्मों ने विसल्स की हैं, तो जब भी उनको सेकंड ट्रैक लगता है,
0: जी,
1: नॉर्मली तो कैसे उस टाइम तो वन ट्रैक होता था, तो कैसे बार बार ट्रैक्स रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती थी, विसल तो बहुत लोग बजाते, पर
0: जी।
1: ये विसल बजाना अलग पड़ता है।
0: तो एग्जाम्पल के तौर पर हम
1: जैसे डैडी
0: चाहेंगे,
1: ने, मैंने पिक्चर में बजाया था, धूम पिक्चर में,
0: बताइए।
1: उसमें ये विसल ऐसा था,
0: उसमें ये विसल ऐसा था। वाह, क्या बात है।
1: थैंक यू। सबसे मेरी फर्स्ट फिल्म जो थी वो थी हम दिल दे चुके सनम। डैडी मेरे हाइटेड है, मेरा हाइट बहुत कम है, तो हमें एक ही माइक पर विसल बजाना था, तो
0: ओहो,
1: मुझे स्टूल दिया था
0: ओ,
1: और बहुत छोटी थी मैं, मेरे ख्याल से 7th 8th में रहूंगी तभी। तब अचानक से मुझे ये विसल पता नहीं था मेरे में है, बिकॉज विसल सिखा नहीं सकते, मैं
0: जी
1: आपको
0: जी
1: नहीं बोल सकती हूँ कि आप बजाओ, अचानक से आ गया था, तो डैडी की वजह से बाय डिफॉल्ट मेरे में ये आ गया, तो तभी ये हम दिल दे चुके सनम का बजवाया था। फिर ग्रहण में मनीषा कोइराला के लिए उनको फीमेल विसल चाहिए थी।
0: जैकी श्रॉफ की फिल्म थी।
1: हाँ, अभी फीमेल विसल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, विसल एक स्टैंडर्ड है।
0: विसल तो विसल है।
1: हाँ, तो उसके लिए फिर उन्होंने मुझे बुलाया था।
0: अगर कोई युवा साउंड रिकॉर्डिस्ट बनना चाहे तो बतौर करियर वो कितना सजगता से अपनी इस पारी को लंबी अवधि तक खेल सकता है और इसी में रम सकता है आपकी तरह, उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है?
1: एक तो थोड़ा टेक्निकली आप स्ट्रांग हो तो अच्छा है, क्योंकि ये पूरा टेक्निकली है पूरा। सेकेंडली, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो तो अच्छा है, बिकॉज जैसे मैंने लंदन के एग्जाम्स दिए पियानो के, तो बाय डिफॉल्ट मुझे उसका पता है कि म्यूजिक क्या है, पता रहना चाहिए। आप कहाँ पर पंच इन करोगे, आप कहाँ पंच आउट करोगे, जब आपके कान में रिदम नहीं है तो आप कहीं पर भी छोड़ दोगे, ये सब पता होना जरूरी है। सेकेंडली, प्रॉपर इंस्टीट्यूट से सीखिए, कोई भी 2 महीने का कोर्स से नहीं बनता है, बिकॉज वहां पर आपको थियरी मिलती है, पर प्रैक्टिकली फाइनली आपको जाके स्टूडियो में ही सीखना पड़ता है।
0: तो वो मिल जाता है काम।
1: आप उसमें एक्सेल हो, आपका नॉलेज अच्छा हो, तो जरूर मिलेगा, एंड ऐसा नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिलेगा, बहुत टाइम तक आपको पीछे खड़ा रह के देखना पड़ता है कि कैसा करते हैं, क्या पैटर्न है, उसके बाद ग्रेजुअली आपका नंबर आएगा।
0: हमारे सुनने वाले भी ये जानना चाहेंगे कि रूपाली के शौक क्या-क्या हैं।
1: मुझे बचपन से गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, उसके बाद बाहर घूमना बहुत पसंद है, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, पूरी रात रात भर मैं पढ़ सकती हूँ।
0: बहुत अच्छी मजेदार बातचीत रही आपसे और हम चाहेंगे कि चलते चलते हमारे जो और भी युवा हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वॉइस करना चाहते हैं, वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, डबिंग करना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
1: इसके लिए ना सबसे जरूरी है फैमिली का सपोर्ट। मेरे डैडी ने, जब मैं छोटी थी तभी मुझे उन्होंने बोला था तुझे क्या पसंद है, तो मैंने तभी बोला था मुझे ये लाइन बहुत अच्छा लगता है, मुझे साउंड, मैं जब भी 6th या 5th में रहूंगी तब मैंने बुक में लिखा था कि मुझे क्या बनना है,
0: ओहो,
1: तभी मैंने लिखा था कि मुझे साउंड इंजीनियर बनना है,
0: क्या बात।
1: बहुत फोकस थी, मुझे बनना ही था और सपोर्ट भी था, पर ये कंपल्शन नहीं था कि डैडी इस इंडस्ट्री में है इसीलिए उसी चीज में करना है, तुझे जो करना है कर, पर उनका एक ही था वो ही 100% कर फिर। तो उसके वजह से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए करियर का, पर उसको 100% दीजिए। आपको मे बी लगेगा 2-3 साल बाद मुझे सक्सेस नहीं मिला तो आप स्विच करोगे, डोंट डू दैट, टाइम लगता है हर एक चीज के लिए।
0: सबसे पहली बात जो आपने कही है और वह अंत तक जारी रही है कि जुनून होना चाहिए और वो
1: राइट,
0: कायम रहना चाहिए।
1: एब्सोल्युटली,
0: तो आपसे बहुत ही अच्छी बातचीत रही, उम्मीद है हमारे सुनने वाले युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। तो आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और अपने करियर के बारे में इतनी बातें बताई आपने और अपनी कला की बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: दानों मेहरबानों, आपने बहुत बड़े बड़े तमाशे देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े तमाशे वाले जादूगर देखे होंगे। बच्चा लोग, अरे बच्चा लोग सब बैठ जाओ, भीड़ होने पर बड़े लोग तुम्हें तमाशा नहीं देखने देंगे। हाँ ऐसे। अच्छा बच्चा लोग अब ताली बजा दो। हाँ तो मेहरबानों कदरदानों अब ठीक है। अरे भाई जेंटलमैन, अरे तुम कहाँ चल दिए, क्या तमाशा अच्छा नहीं लगता है तुमको?
1: तमाशा हो कहाँ रहा है जो देखने के लिए रुक जाऊं? तुम तो बातें ही बनाते जा रहे हो, अगर कुछ जादू वादू दिखाना है तो जल्दी दिखाओ।
0: अरे कदरदान, मजमा जमाए बिना जादू देखने दिखाने का मजा कहाँ आता है?
1: जादू वो जो सिर चढ़कर बोले, समझे? तुम्हारा जादू अच्छा होगा तो लोग अपने आप रुकेंगे, बोर करोगे तो कौन रुकेगा तुम्हारे पास?
0: लगता है तुम्हें जादू देखने की काफी जल्दी है।
1: अगर दिखा रहे हो तो जादू देखना ही पड़ता है, इसमें जल्दी वल्दी की कोई बात नहीं।
0: अरे भाई माफ करना, अरे तुम जानते ही हो सबको रोटी का चक्कर होता है, सो मुझे भी है। कुछ लोग और जुट जाएंगे तो रात को बच्चों के लिए खाने का जुगाड़ हो जाएगा। जमुरे जमुरे, अरे ओ जमुरे, अरे क्या बात है, लगता जमुरा अभी सो गया है। जमुरे ओ जमुरे, अरे भाई क्या वाकई सो गया है?
2: नहीं उस्ताद, भला मैं क्यों सोने लगा?
0: तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहा है?
2: उस्ताद भूख के मारे बोला नहीं जा रहा।
0: बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े मूर्ख, पहले कुछ कमा तो लो, बिना कमाए भला रोटी कहाँ से खाएगा?
2: तो फिर उस्ताद जल्दी कमाओ ना।
0: अरे इन साहिबान को तो जल्दी जाने की पड़ी है, तू कमाने की बात कह रहा है? खैर हो सकता है इन्होंने किसी को टाइम दे रखा हो।
2: उस्ताद तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इन्होंने वाकई किसी को मिलने का टाइम दे रखा है।
0: तो फिर ये जाएं?
2: जाने से इन्हें कौन रोक सकता है उस्ताद, पर ये जाएं कैसे?
0: अरे भाई अपने पांव से चलकर जाएंगे।
2: चलकर ये नहीं जा सकते उस्ताद।
0: ये मिलने वाला दूर होगा तो ये बस गाड़ी टैक्सी अरे किसी भी सवारी से जा सकते हैं।
2: पर ये नहीं जा सकते ना उस्ताद।
0: जमुरे तू तो बड़ा जोशी रखता है भाई।
2: उस्ताद अगर जोशी नहीं तो लोगों को ठगने वाले गुरु का चेला तो हूँ ही ना।
0: बेवकूफ, पता है तू ये क्या कह रहा है? कहने से पहले अपनी समझदारी से भी कुछ काम तो ले लिया कर।
2: उस्ताद खूब सोच समझ लिया।
0: इस तरह तो तूने अपने उस्ताद यानी के मुझे ही ठग कह दिया।
2: पहले इन साहिबान से पूछ लो उस्ताद, क्या ये किसी से मिलने गाड़ी टैक्सी या बस से जा सकते हैं?
0: हाँ तो भाई साहब, क्या तुम गाड़ी बस या टैक्सी से जा सकते हो?
1: हाँ क्यों नहीं जा सकता?
0: जमुरे ये तो किसी भी तरह जा सकते हैं,
2: पर इनके पास तो पैसे ही नहीं है।
0: जमुरे ये तूने कैसे कह दिया कि इनके पास पैसे ही नहीं है?
1: क्यों मेरे पास पैसे नहीं क्या? ये देखो मेरे पास, अरे पेंट की पीछे की जेब में, पर जेब में भी नहीं, अरे है ये किसी जेब में भी नहीं। अरे अरे मेरा बटुआ कहाँ गया?
0: अरे मेहरबान दूसरी जेब में देख लो। अरे भाई कमीज की जेबों में देख लो।
1: अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पेंट की पीछे की जेब में बटुआ रखा था, मैंने सारी जेब देख ली, किसी भी जेब में नहीं है।
0: लगता है तुम्हारी जेब कट गई है।
1: ये तुम्हारे तमाशे की वजह से हुआ है, मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ। यहाँ से कोई मत हिले, मैं सबकी तलाशी दिलवाऊंगा पुलिस को।
0: अरे जमुरे जमुरे, अरे हमारा तमाशा तो बीच में ही रह गया, या तो तमाशे में तमाशा हो गया। इन साहिबान की जेब कट गई जमुरे।
2: उस्ताद
0: हाँ, या पुलिस लेने जा रहे हैं।
2: उस्ताद इन्हें कहो कि पहले हमें दो रोटी कमाने दे। उस्ताद अगर पुलिस आ गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा? उस्ताद
1: हार में जाए तुम्हारी रोटी, मेरा बटुआ खो गया है, किसी पगड़मार ने पगड़ मार दिया लगता है।
0: जमुरे अब क्या किया जाए?
2: उस्ताद इन्हें कह दो कि चिंता मत करें, इनका बटुआ यहीं कहीं होगा, अगर नहीं मिला तो
0: क्या जमुरे
2: तो क्या होना है कहीं

0: लेकिन बटुआ ना मिला तो 200 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे।
1: जम रे, तू भी कैसा चेला है रे, हर बात में गुरु को ही चूना लगाना चाहता है।
2: अरे मैं कहता हूँ यहाँ कोई खेल तमाशा नहीं होगा, पहले मेरे 200 रुपए ढूंढ कर दो, समझे?
1: जमुरे, हमारे पास तो 2 पैसे भी नहीं है। ये 200 रुपए की बात करते हैं, अब भला हम 200 कहाँ से लाएंगे? हाँ, तमाशा दिखाकर लोगों के सामने झोली फैलाएंगे तो मुश्किल से 10-20 रुपए बनेंगे।
0: लगता है उस्ताद तुम भी डर गए।
1: क्यों ना डरूं भाई, 200 रुपए का सवाल है।
0: 200 रुपए के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता उस्ताद, हाँ मैं इनका बटुआ जरूर दिला सकता हूँ।
1: अरे जमुरे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले सोच भी लिया?
0: खूब सोच लिया उस्ताद, पहले इनसे पूछो कि इनके बटुए का रंग क्या है।
1: हाँ साहब, तो ये बताओ कि तुम्हारे बटुए का रंग क्या है?
2: मेरे बटुए का रंग लाल है, उसके ऊपर की छोटी जेब में मेरा फोटो भी लगा हुआ है, समझे?
1: फोटो भी लगा है जमुरे।
0: उस्ताद इनसे ये भी पूछो कि इनकी फोटो के नीचे किस लड़की का फोटो है।
1: हाँ तो कदरदान मेहरबान, जमुरा जानना चाहता है कि तुम्हारी फोटो के नीचे किसका फोटो है।
2: और कोई फोटो नहीं है, सिर्फ मेरा फोटो है मेरा।
1: जमुरे,
0: उस्ताद।
1: अरे जमुरे, ये साहिबान तो इनकार करते हैं किसी दूसरे का फोटो होने से। हाँ,
0: इतने अच्छे आदमी होते हुए ये बताना नहीं चाहते उस्ताद कि दूसरा फोटो किस लड़की का है। मैं तो इनको यही सलाह दूंगा उस्ताद कि अगर बटुए में फोटो ही रखना है तो उस लड़की का रखें जिसे ये हासिल कर सके। लो, देख कर इन्हें ये बटुआ लौटा दो उस्ताद।
2: अजीब बात है, मेरी जेब में से निकलकर बटुआ जमुरे के पास कैसे चला गया?
1: तो मेहरबान कदरदान, यही तो जादू है जो तुम देखना चाहते थे। ये देखो दूसरा जादू, तुम्हारी फोटो के नीचे देवी का फोटो है।
2: पर इसमें तो 200 रुपए कहाँ गए?
1: बटुए में होंगे
2: इसमें तो नहीं है।
1: रे जमुरे, हम पर तो चोरी का इल्जाम आ रहा है भाई।
0: उस्ताद तुमने और भी कई जादू दिखाने होंगे, जल्दी से इनके 200 रुपए दे दो।
1: जमुरे, क्या हर बार तू मुझको ही चूना लगाएगा? बटुआ तुम्हारे पास से निकला है और 200 रुपए मैं दूंगा।
0: तो फिर 200 रुपए इनकी जेब में ही होंगे, और कहाँ जाएंगे उस्ताद?
1: भाई साहब, हम गरीबों को काहे को मारते हो, हम पर शक करने से पहले अपनी जेबें तो टटोल लीजिए।
2: अरे मेरी जेब में पैसे कहाँ से आएंगे, रुपए बटुए के अंदर थे, बटुए के, समझे?
1: फिर भी सभी सभी जेबें टटोलने में हर्जी क्या है कदरदान?
2: अरे तुम्हारे सामने ही तो मैं सभी जेबों में हाथ डालकर देख रहा हूँ।
1: अब वो कमीज की आगे की जेब भी देख लो कदरदान।
2: कमीज की, ये लो, ये अभी,
1: ये
2: अरे 200 रुपए, अरे ये इसमें, इस जेब में थे।
1: साहेबान कदरदान, आपने ये पहला जादू देखा, क्योंकि ये सांप देखने के लिए बहुत जल्दी मचा रहे थे, इसलिए सबसे पहले इनको ही तमाशा बनना पड़ा। मैं आपको बहुत बड़े बड़े जादू दिखाऊंगा, मैं ऐसे जादू दिखाऊंगा कि जिन्हें देखकर आप सब दांतों तले उंगली दबाने लगे होंगे। तो जमुरे, तमाशे के आखिर में आज कौन सा जादू दिखाया जाए?
0: उस्ताद जो तुम्हें अच्छा लगे।
1: हमारे जादू तो सब अच्छे हैं बच्चा, भला अपना बच्चा किसे बुरा लगता है?
0: तो फिर वो दिखाओ उस्ताद जो देखने वालों को अच्छा लगे।
1: पहले जादू की तरह दूसरे जादू भी बहुत अच्छे हैं बेटा। बच्चा लोग एक बार फिर ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ। तमाशे के आखिर जादू इस टोपी का होगा, सब लोग टोपी को देख लो, बिल्कुल खाली है। अरे साहिब कदरदान, जरा अच्छी तरह से टटोल कर देखो, टोपी खाली है ना?
3: बिल्कुल।
1: लो हाथ में पकड़ कर देख लो, ये आप भी देखिए, ये आप भी देखिए, खाली है ना? मैं इसे बीचों बीच यहाँ रख देता हूँ, जब मैं इसे उठाऊंगा तो नीचे से एक ऐसी चीज निकलेगी जिसे देखकर आप सब हैरान हो जाएंगे।
0: उस्ताद बातें बंद करो और दूसरे जादू जल्दी से दिखाओ।
1: जल्दी से दिखाता हूँ, ठीक है ठीक है।
2: जादू तो देखा ही नहीं।
1: जमुरे,
0: आओ उस्ताद।
1: अरे अब क्या लेटा ही रहेगा?
0: उस्ताद मैं तो हुकुम का गुलाम हूँ, उस्ताद जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा।
1: जमुरे, इस दुनिया में कोई किसी का गुलाम नहीं है, सब अपने पेट के गुलाम है।
2: मदारी भाई, इस समय

0: तो तुमने हमें अपना गुलाम बना रखा है, बल्कि तुम्हारी टोपी के गुलाम बन रहे हैं। जानने की बड़ी बेचैनी हो रही है, टोपी के नीचे क्या है?
1: जमुरे, अब तू भी उठ जा।
2: अच्छा
1: और उठकर टोपी का जादू देख ले।
2: उस्ताद, भूखे पेट भक्ति नहीं होती उस्ताद, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं।
1: पर बच्चा, चूहों को खिलाने के लिए अभी कोई पैसा भी तो नहीं मिला है।
2: क्या, अभी तक किसी ने कोई पैसा नहीं दिया
1: उस्ताद? देंगे देंगे जमुरे, देंगे, सब लोग देंगे। तू अपनी चादर बिछा दे, फिर देखना किस तरह बारिश की तरह पैसे बरसते हैं।
2: मुझे तो ऐसा लगता है उस्ताद कि जब तक तुम टोपी का जादू नहीं दिखाओगे, देखने वाले एक पैसा नहीं देंगे।
1: बच्चा, किसी से कोई पैसा नहीं मांगते हैं, ये तो हमारे जादू के काम पर खुश होकर हमें इनाम देंगे।
2: हमने इतने अच्छे अच्छे जादू दिखाए हैं उस्ताद, क्या ये अभी तक भी नहीं हुए खुश? साहब लोग अभी भी जेब में हाथ डालने से झिझकते हैं उस्ताद।
1: तो बहुत जल्दी बेसब्र हो जाता है जमूरे, देखने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने हमें इनाम जरूर देना है।
2: अब क्या अपना कलेजा निकाल कर इन्हें खुश करना पड़ेगा उस्ताद?
1: हमारा काम है तमाशा दिखाना, तुमने टिकट तो लगा नहीं रखा। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। टोपी का जादू तभी दिखाया जाएगा जब सब लोग इनाम देंगे। बस 2 मिनट का वक्त और लूंगा।

0: उस्ताद वाह कमाल हो गया, लगता है सबको हमारा तमाशा अच्छा लगा है उस्ताद।
1: तो जनाब मेहरबान कदरदान, आप लोगों ने हम गरीबन पर बहुत तरस खाया है, माया से हमारी झोली भर दी है। ये पापी पेट इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। पापी पेट तो राजा को भी भीख मांगने के लिए मजबूर कर देता है, इसलिए इस टोपी के नीचे भी पेट का ही जादू है। तो कदरदान मेहरबान, अब मैं ये टोपी उठा रहा हूं, तो देखिए, लीजिए देखिए।
2: अरे रोटी का
3: टुकड़ा
2: निकला। अरे
4: रोटी
2: का
4: रोटी का टुकड़ा,
5: अरे इससे बढ़कर और क्या जादू होगा। दुनिया में हर कोई रोटी के जादू से वशीभूत होकर इधर उधर भाग रहा है। वाह उस्ताद वाह, भाई कमाल कर दिया तुमने। वाकई
6: आज के हवा महल कार्यक्रम में आप सुन रहे थे झलकी तमाशा। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे गुरुमीत रामलमीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन हर लम्हा हर पल आपके साथ कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में

प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं शिव हरी, फिल्म का नाम है लम्हे।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहासे हुजूर।
4: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं शिल्पा राव की आवाज में। गीत लिखा है स्वानंद किरकिरे ने, संगीत है अमित त्रिवेदी का, फिल्म का नाम है इंग्लिश विंग्लिश।

0: खड़ी हो जा,
1: खड़ी हो गई।
2: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
3: अब कहां जाएं हम?
4: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
4: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
2: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सेहतनामा।
6: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है शिव हरी का, फिल्म का नाम है चांदनी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक, सपना मुखर्जी और अभिजीत की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का, फिल्म का नाम है जुदाई।

इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। सुनिए, सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला

0: विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
4: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
5: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल से स्पीड अप करा रहे, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है, उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसे ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष

0: जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
1: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 120 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
2: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1,500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति

0: श्रीकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए शमशाद बेगम की आवाज में। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार है सचिन देव बर्मन, फिल्म का नाम है बहार।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है शैलेंद्र ने। तर्ज है शंकर जयकिशन की, फिल्म का नाम है रंगोली।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमान में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है देवदास।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी। गीत को सुरों में ढाला है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है सूरज।

0: तेरी हो जाए।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
3: आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम है नया दौर।

लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में। नगमा निगार है शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद अली का, फिल्म का नाम है लीडर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन

नाई के साहब एक आवाज है, कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।

भारतीय सिनेमा की नामचीन अदाकारा वैजयंतीमाला बहुआयामी प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं। अभिनय के अलावा भरतनाट्यम, कर्नाटक संगीत गायन और नृत्य निर्देशन में अपनी कामयाबी साबित करने के बाद जन प्रतिनिधि के रूप में भी अपनी एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने शानदार अभिनय और नृत्य में अपनी दक्षता के रहते वैजयंतीमाला ने फिल्म जगत में बनाई अपनी विशिष्ट पहचान।

सिने जगत में वैजयंती माला ने 16 बरस की आयु में अभिनय की शुरुआत जिस फिल्म से की वो थी 1949 में आई तमिल फिल्म वजकई। अगले ही बरस 1950 में उन्होंने तेलुगु फिल्म जीवितम में काम किया। अपनी प्रतिभा से वैजयंती माला ने

13 अगस्त सन 1933 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी के ट्रिप्लिकेन में जन्मी वैजयंतीमाला की शुरुआती फिल्म मंगामा सबाथम बहुत सफल रही। सन 1951 में रिलीज हुई वैजयंतीमाला की पहली हिंदी फिल्म बहार।

फिल्म बहार के 3 बरस बाद वैजयंतीमाला की यादगार फिल्म आई नागिन। राजेंद्र कृष्ण के गीतों और हेमंत कुमार के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

0: सन 1955 में आई शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की अमर कृति देवदास पर इसी नाम से बनी बिमल रॉय द्वारा निर्देशित फिल्म, जिसमें वैजयंतीमाला ने निभाई चंद्रमुखी की भूमिका।
1: इतने कपड़े लगते पेटी बिस्तर की जरूरत तो नहीं थी मुझे।
2: जरूरत थी या नहीं ये मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ।

0: परदेश में एक दासी की तो जरूरत होगी, मुझे भी साथ ले चलो।
1: रो ही नहीं सकता चंदू की, दुनिया तुम पर उंगलियां उठाएगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा।
0: मगर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, परदेश में अकेले कैसे जाओगे, कैसे रहोगे?
1: मैंने धर्मदास को खत लिख दिया है, वो स्टेशन पर मुझे मिल जाएगा।
0: मुझे एक वरदान दोगे?

0: अब कभी शराब नहीं पियोगे।
1: वादा तो नहीं करता चंद्रमुखी, लेकिन तुम्हारी बात याद जरूर रखूंगा।
0: सुनो, जहां भी रहो, अगर तुम्हारा शरीर जरा भी खराब हो तो इस दासी को जरूर खबर दे देना।
1: अच्छा चंद्रमुखी, देखो ये रख लो अपने पास। जरूरत है या नहीं ये तो मैं जानता हूँ। देखो चंद्रमुखी, जीने का तो कोई भरोसा नहीं, तुम क्या मझदार में डूबोगी? ये अपने पास रख लो और कुछ मत कहो।
0: अब फिर कब मिलना होगा
1: कौन जाने, पर जब तक मैं जिंदा हूँ चंद्रमुखी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम्हें देखने की प्यास कभी नहीं बुझेगी। न जाने पाप और पुण्य के विचार करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करें, लेकिन अगर मरने के बाद मेल होता है तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह पाऊंगा।
0: उसी जन्म के इंतजार में जिंदगी गुजार दूंगी।
2: शरद बाबू की जैसी कालजयी कृति है देवदास, उस पर बनी फिल्म भी उतनी ही खूबसूरत है।
0: वरना

देवदास के लिए वैजयंतीमाला को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार देने की घोषणा हुई, लेकिन वैजयंतीमाला ने यह कहकर पुरस्कार अस्वीकार कर दिया कि उनकी भूमिका सह अभिनेत्री की नहीं बल्कि मुख्य भूमिका जैसी ही थी। फिल्म फेयर पुरस्कार अस्वीकार कर देने वाली वो पहली कलाकार थीं। इसके बाद वैजयंतीमाला की कई कामयाब फिल्में आईं। ये थीं न्यू दिल्ली, नया दौर और

1958 में वैजयंतीमाला की दो चर्चित फिल्में आईं, जिन्हें दर्शकों और फिल्म समीक्षकों की भरपूर सराहना मिली। इनमें से एक थी फिल्म साधना।

पुनर्जन्म की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में वैजयंतीमाला के नायक थे दिलीप कुमार। मधुमती अपनी कहानी, कलाकारों के अभिनय के अलावा अपने सुमधुर संगीत के लिए भी

0: लगभग इसी दौर में वैजयंतीमाला तमिल सिनेमा में वापस लौटी और उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। सन 1961 में मूल रूप से दक्षिण भारतीय सिने कलाकार वैजयंतीमाला ने गंगा जमुना में काम किया, जिसमें उनके संवादों में भोजपुरी का रंग था। उन्होंने इस फिल्म में बहुत समर्पित होकर काम किया। गंगा जमुना को फिल्म समीक्षक उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनते हैं। फिल्म गंगा जमुना में अपने शानदार अभिनय के लिए वैजयंतीमाला को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार।
1: बीच रस्ते में हुड़दंग मचा रहे गुंडे के लिंके।
2: अरे देख रही धन्नो, हम अपने मुन्ना के लिए फाउंटेन लावा है।
1: फाउंटेन लावा है, चल ना ही सारे सेकी निकाल दे हो एक मिनट में।
2: अरे वाह रे महारानी वाह, फोकट का माल लूट के लाई रही बजरिया से का?
1: फोकट का नहीं, इकन्नी दिए हूँ, इकन्नी चार पैसे खून पसीना एक करके। हाँ
2: अरे इकन्नी देखी है कौनो दिन?
1: हाय हाय, तेली का तेल जले मसालची की छाती फटे। तोरी छाती काहे फटे रे? एक मिनट इको समझाए दियो,
2: नहीं तो का तोप दम कर देगी।
1: ये हाथन में कांच की चूड़ियां नहीं, लोहे के कड़े हैं, कड़े दिखा।
2: तो ये हाथन में भी मेहंदी नहीं लागी है दिखा।
3: अरे ज्यादा चिपड़ चिपड़ लग कर
2: हट रे, हट।

1964 में भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर लेकर आए अपनी फिल्म संगम। इस फिल्म में राज कपूर और वैजयंती माला के अलावा राजेंद्र कुमार ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेम त्रिकोण पर आधारित इस फिल्म में वैजयंती माला जी को किस तरह अभिनय के लिए राजी किया गया, इस बारे में एक दिलचस्प प्रसंग का जिक्र करते हुए अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर के

0: अभिनेता पुत्र ऋषि कपूर।
1: संगम में मुझे एक किस्सा बताया गया था कि जब विजयंती महाराज जी को साइन करने की इच्छा थी उन्हें, तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा विजयंती महाराज जी को कि बोल राधा संगम होगा कि नहीं, यानी कि ही वांटेड हर टू प्ले द लीड इन संगम। उन्होंने टेलीग्राम वापस भेजा होगा होगा होगा।

फिल्म संगम में अपने अविस्मरणीय अभिनय के लिए वैजयंतीमाला ने तीसरी बार पाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार।

0: फिल्म संगम के बाद वैजयंतीमाला की एक और महत्वपूर्ण फिल्म आई आम्रपाली। आम्रपाली में वैजयंतीमाला के नायक बने सुनील दत्त। इस फिल्म के गीतों को यादगार धुनों से सजाया शंकर जयकिशन ने।
1: जाप

गीत संगीत अभिनय हर तरह से बेहतरीन होने के बावजूद फिल्म आम्रपाली को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म आम्रपाली का संगीत आज भी कालजयी है।

अपने करियर के ढलान में भी वैजयंतीमाला ने कई खूबसूरत फिल्मों में काम किया। ये थी सूरज, ज्वेल थीफ, प्रिंस और संघर्ष।

सन 1968 में वैजयंतीमाला ने चमनलाल बाली से विवाह किया। विवाह के बाद 1968 से 1970 के बीच उन्होंने अपनी कुछ फिल्मों की शूटिंग कर उन्हें पूरा किया। इन फिल्मों के नाम हैं प्यार ही प्यार, गंवार और प्रिंस।

वैजयंती माला जी का एक बेटा है जिसका नाम है सुचेंद्र बाली। स्थायी रूप से चेन्नई में बस चुकी वैजयंती माला ने सहयोगी लेखिका ज्योति सबरवाल के साथ मिलकर लिखी अपनी जीवनी बॉन्डिंग। वैजयंती माला जी की फिल्मों से, उनके अभिनय से दर्शकों की जो बॉन्डिंग है वो अटूट है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला पर। कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ

0: आप सुन रहे हैं।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
2: वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती, वीको पाउडर वीको पेस्ट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी।
3: याद रखिए, मसूड़ों में जान तो

गीत छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। ये बरखा की बूंदें, ये सावन की अंगड़ाइयां, यादों की पुरवाइयां, ये मिलन की रात, शाखों पर झूमते फूलों की बहार, प्यास बनकर छलकती है ये रात। डर लगता है इन हवाओं से, न दामन से लिपट जाएं, एहसास की पहने चुनर दिल के अंजुमन में वो आए हैं। उस पर उनका ये फरमाना कि दीवाने को क्या कहिए, बड़े करिश्माए कातिल हो, कहूं तो किससे कहूं, दरमियां हमारा ही दिल है,

की फुलवारियां चमन में बहार लाई है, चांद की नजीर किरणों से धुले शबनम के ये मोती हैं, आंचल में सिमटते बूंदों के खजाने, खनक बहारों की पाजेब तारों की, मेहरबान मौसम के शरारे भर देते हैं गीतों मितान मोहब्बत की, पत्थरों में भी तड़प जगा देते हैं, और ये मौसम किसे न अपना शैदाई बना

0: वही मौसम है, वही मोहब्बतों के निशान, जो अक्सर तन्हा बारिशों में भीग जाते हैं। खबर होती नहीं, दिल बज़्म में आपकी बारहा चला आता है। सागर में लहरों की तरह, तूफान में किनारों की तरह, हर घड़ी मेरे सब्र को आजमाते क्यों हो। ऐसी बरसात फिर फूलों से प्यार किसे न होगा, बारहा मुझ पे ही इल्जाम लगाते क्यों हो।
1: न झटको जुल्फ से

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। आप आए तो हवाओं को गुनगुनाना आ गया, आप आए तो कलियों को मुस्कुराना आ गया। ये बरसती फुहारें

प्यास जगाती हैं, कई फूल खिलाती हैं। रखा है हमने भी दिल को संभाले कि ये एहसास से खता हो न जाए, रंग मोहब्बत का फसाना मशहूर हो न जाए।

सब खताएं बारिशों की हैं, मानो कि न मानो, ये बदली का खिलखिलाना, ये आसमां का गुरूर, आंखों में रात का कजरा लगा लाए हो, बूंदियां बरसेंगी, भीगेगी बहार, धीरे धीरे से आरज़ू का महताब चमकेगा, करार खो के भी करार आता नहीं, इश्क कहते हैं जिसे, शायद ये वही शय है।

भीगी रात में आज खामोशियों को बयां होने दो, पास बैठो कि नजरों को यकीन आ जाए। दिल आपका शैदाई है, जाए तो कहाँ जाए। आज कुछ कहने की रात आई है, बड़ी मुद्दत के बाद ये सावन की घटा छाई है। रंग फूलों का इस तरह सजाया है आपने, जैसे जमीन पर आसमां बिछाया है आपने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
2: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए, कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर

0: बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। डॉ जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री नियांती को बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament has concluded with both houses being adjourned sine die today. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the House managed to fulfil its core legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
3: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up.
2: Earlier, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 was passed by the Parliament, with the Rajya Sabha approving it today. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has accused the opposition of running away from discussions in Parliament when the government was ready for it. He said the conduct of opposition MPs is not good for democracy, especially for parliamentary democracy. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Rijiju said that Parliament is meant for debate, discussion and legislative business. But continuous sloganeering and protests had affected the functioning of the House in the monsoon session. Mr. Rijiju said that 12 bills were passed.